एफएम बैंड 100.2 MHz पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 मई सन 2026। प्रातः के 5:57 होने को है। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा।

एफएमबैंड 100.2 MHz पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को है। अब अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। दिल्ली से आप सुनेंगे समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जाँच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूर इज्जुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: एफएम बैंड 100.2 MHz पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना में सबसे पहले जननी जन्मभूमि मातृभूमि को नमन।

वंदना के बाद आइए करते हैं प्रभु चरणों में नमन इस भक्ति रचना के साथ, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर ने। संत मीराबाई की ये रचना है, आइए सुनते हैं ये भक्ति रचना।

श्रोताओं, भी आपने जगजीत सिंह और साथियों के स्वर में ये भक्ति रचना सुनी। ये भक्ति रचना संत सूरदास जी की थी। आइए इन्हीं स्वर में एक और भक्ति रचना आपको

श्रोताओं, अभी आप जगजीत सिंह और साथियों के समय में ये भक्ति रचना सुन रहे थे। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी से भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं नीलम कटारिया के स्वर में उन्हीं के संगीत से सजा ये भक्ति गीत।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे नीलम कटारिया के स्वर में ये भक्ति गीत। उन्होंने ही इसी भक्ति गीत को संगीत से सजाया था। इसी के साथ कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 100.2 MHz पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चिंतन। आज का चिंतन केंद्रित है विषय सहभागिता पर। चिंतक हैं डॉक्टर अरविंद सोनी।
1: सहभागिता यानी किसी भी कार्य को करने में एक से अधिक लोगों की अपनी अपनी भूमिका। देखा जाए तो किसी भी कार्य को सही प्रकार से संपन्न करने में किसी एक व्यक्ति की नहीं वरन कई लोगों अथवा लोगों के समूहों की भागीदारी होती है। शुरुआत घर से करें तो पाएंगे, क्योंकि पति पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, वे एक दूसरे के जीवन के सुख दुख के भागीदार होते हैं। प्राकृतिक रूप से जहाँ कुछ विशिष्ट कार्य पुरुष संपन्न करते हैं, वहीं कुछ कार्य स्त्रियां, और इस तरह दोनों अपनी अपनी भूमिकाओं को निभाते हुए गृहस्थी की गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। बॉलीवुड के रंगीन चलचित्र 3 घंटे दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हैं, पर क्या हम 3 घंटे के चलचित्र को देखने के बाद इसको बनाने में महीनों सालों तक दिन रात एक करने वाले स्क्रिप्ट राइटर, लाइटमैन, कैमरामैन, स्पॉट बॉय, मेकअप मैन, ड्रेस डिजाइनर आदि के बारे में सोचते हैं? संगीत को रचने वाले संगीतकार, मन को अंतस तक विविध भावों से भर देने वाले गीतों को बनाने वाले गीतकार आदि निस्संदेह एक फिल्म बनाने में अपनी सहभागिता दर्ज करते हैं, और सबके सम्मिलित प्रयासों से ही एक भाव प्रवण चलचित्र बनता और दर्शकों के मन मस्तिष्क पर अपनी याद छोड़ जाता है। बड़े बड़े शहरों में आसमान की ऊंचाइयों को छूती इमारतों, बड़े बड़े मॉल आदि देख मन में यही विचार आता है कि इसको बनाने में कितना पैसा लगा होगा। पर क्या हम ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर इनके निर्माण में प्रतिदिन कम से कम 8-10 घंटे अथक पसीना बहाने वाले उन मजदूरों के बारे में सोचते हैं, या फिर उन रेजा या महिला मजदूरों के बारे में सोचते हैं जो अपने दुधमुहे बच्चे को तपती धूप में, सर्द जाड़ों में जमीन पर फटे कपड़ों पर लिटाकर, तसलों में मसाला भर भर कर सिर पर रख कर अगिनत बार बांसों की बल्लियों पर से होती हुई भागती दौड़ती रहती है? जी हाँ, इन इमारतों को बनाने में उन मजदूरों की भी सराहनीय भागीदारी होती है। उनकी मेहनत के बल पर आर्किटेक्ट द्वारा कागज पर बनाया गया नक्शा धरा पर साकार रूप ले पाता है। आज कई नामी ब्रांडेड उत्पाद हमारे लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। वे हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गए हैं। जब हम ये वस्तुएं उपयोग में लाते हैं तो मात्र कंपनी का लेबल देखते हैं, उसकी पैकिंग आदि की बातें करते हैं, पर क्या कभी इन वस्तुओं का उपयोग करते समय फैक्ट्री में प्रतिदिन अथक मेहनत करने वालों के बारे में सोचते हैं? कई बार फैक्ट्री में उपयोग में आने वाली मशीनों से मजदूरों को शारीरिक क्षति हो जाती है, वे विकलांग भी हो जाते हैं। यकीनन विभिन्न उत्पादों को बनाने में उच्च कार्यकर्ता की ही तरह मेहनतकश मजदूरों की भागीदारी भी प्रशंसनीय होती है। वैसे तो सहभागिता हमारे दैनंदिन का अभिन्न अंग है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे सहभागिता दृष्टिगत होती है, पर यदि हम अपनी शारीरिक कार्य प्रणाली पर नजर डालें तो पाएंगे कि हमारा कोई भी कार्य हमारे विभिन्न अंगों यानी मस्तिष्क, आंखें, हाथ पैरों आदि संयोजन या भागीदारी के बिना संभव नहीं है। मानव मात्र की प्रवृत्ति होती है कि हम सदैव देश समाज में व्याप्त अव्यवस्थाओं, कुरीतियों या असुविधाओं के लिए हम उच्च प्रबंधन या प्रशासन को दोषी ठहराते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि देश के नागरिक होने के नाते क्या समाज में व्याप्त अव्यवस्थाओं, कुप्रथाओं एवं देश की शासन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में देश के नागरिकों यानी हमारी सहभागिता को नजरअंदाज किया जा सकता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कि आपस में मिलजुल कर सामंजस्य पूर्ण भाव के साथ किसी भी कार्य को पूर्ण करने में अपनी अपनी भूमिका का सफल निर्वहन करना ही सहभागिता है।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आज का चिंतन केंद्रित था विषय सहभागिता पर। चिंतक थे डॉक्टर अरविंद।

FM बैंड 100.2 MHz पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन पाठ। गायक स्वर अनुराधा पौडवाल और ए

देवाधिदेव महादेव से राम अवतार की पूरी कथा सुनकर पार्वती के मन का संशय सर्वथा मिट गया, किंतु शिव की इस उक्ति ने कि यह अनुपम कथा काकभुशुंडी ने गरुड़ को सुनाई, उनके मन में सहज जिज्ञासा जगा दी। एक कौवा ऐसी भक्ति कैसे पा गया? देवाधिदेव ने तब वो कथा सुनाई कि पवित्र और पुण्य आत्मा काकभुशुंडी को यह सदगति और ऐसा दुर्लभ सुयोग और सुअवसर कैसे प्राप्त हुआ।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस का गायन पाठ। गायक स्वर अनुराधा पौडवाल और ए हरिहरन के थे। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी का प्रसारण। समय हुआ है कार्यक्रम कृषि सामयिकी का। आज इसमें हम आपको जानकारी दे रहे हैं टमाटर में संतुलित उर्वरक उपयोग। आप तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा रहे हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह।
1: नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं हमारे शिवपुरी जिले में टमाटर एक प्रमुख सब्जी वाली फसल है जो खरीफ सीजन में लगाई जाती है और ये लगभग 7 से 8 महीने तक चल जाती है यहाँ। तो इस एक लंबी अवधि वाली फसल होने के नाते इसमें जो उर्वरक प्रबंधन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अन्य विषयों के साथ जैसे आपको कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन या जल प्रबंधन करना रहता है, उसी तरह उर्वरक प्रबंधन भी बहुत आवश्यक विषय है। और इसके लिए किसान भाई एक तो अपनी मिट्टी का नियमित जांच करवाते रहें, उसमें जो पोषक तत्व की उपलब्धता है और उसका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का मतलब है कि उसमें कार्बन की उपलब्धता है, जैसे पीएच मान है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता है, वो इन सब चीज़ों को भी समय समय पर जानकारी लेते रहें किसान भाई, जो मृदा परीक्षण के माध्यम से जाना जा सकता है या उसकी जानकारी रखी जा सकती है। लेकिन सामान्य एक जो रिकमेंडेशन है टमाटर में 100-50-50 का एक रिकमेंडेशन आता है जो एनपीके का होता है। इसके अलावा एनपीके के अलावा उसमें और कई महत्वपूर्ण जो दूसरे तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी भी आवश्यकता होती है, जिनके अभाव में फल में विकृतियाँ या कई तरह की समस्याएँ आ सकती हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि किसान भाई मृदा परीक्षण करवा के अपनी मृदा की जाँच जो रिपोर्ट है उसको रखें और जानकारी रखें कि उसमें किन पोषक तत्वों की उपलब्धता है, किन की कमी है और कैसा है, उसी के अनुसार जो हम पोषक तत्वों का जो प्रबंधन करें। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर आप एक संतुलित प्रयास करते हैं या समन्वित उर्वरक प्रबंधन का प्रयास करते हैं तो उसमें जो जैविक खाद है उसका भी प्रयोग करें जो मृदा के स्वास्थ्य को सुधारता है और कार्बन के तत्व को बढ़ाता है मिट्टी में। उसके कारण जो है ना बहुत सारे जो सूक्ष्मजीवी गतिविधियां हैं वो बढ़ जाती हैं और जो अन्य पोषक तत्व हैं उनका उपलब्धता को भी बढ़ाते हैं। तो जो कार्बन तत्व है उसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है और ये टमाटर की बात कर रहा हूँ, लेकिन टमाटर के अलावा जो भी फसल है सभी फसलों के लिए आवश्यक होता है कि हमारी ज़मीन में कार्बन तत्व पर्याप्त मात्रा में हो, यानी 0.5 से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और ये समस्या देखी जा रही है कि वर्तमान में कई जमीनों में कई खेतों में जो कार्बन की मात्रा है 0.5% से कम हो रही है, तो एक समस्या है। तो टमाटर में भी इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा देखना पड़ेगा कि जैसे टमाटर की फसल होती है वो उसकी 2-3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। जैसे सबसे पहले टमाटर को हम नर्सरी तैयार करते हैं या नर्सरी क्रय करते हैं, मान लीजिए कि हम नर्सरी खुद स्वयं अपनी तैयार कर रहे हैं तो एक पहली अवस्था हो गई। यहाँ जो है लगभग अगर हम फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, जो कम ग्रेड के फर्टिलाइजर होते हैं जैसे 10-10-10 या 5-5-5 जिसमें नाइट्रोजन

0: फास्फोरस पोटास की कम मात्रा होती है उनका उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसे जो प्रारंभिक अवस्था में पोषक तत्वों की बहुत कम आवश्यकता होती है, तो इस तरह से कम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी अवस्था आती है वो वृद्धि अवस्था आती है। वृद्धि अवस्था का मतलब होता है ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद जो फ्लावरिंग अवस्था आने तक की जो अवस्था होती है, ये इसमें सबसे ज्यादा जो ऊपर का विकास होता है वैसे ही जमीन के अंदर जड़ों का विकास होता है। तो जड़ों के विकास के अवस्था में जो फास्फोरस तत्व होता है उसका पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक होता है। तो किसान भाई जिस भी तरीके से हम फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, मुख्य रूप से जिसे केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, तो जो बेसल उपयोग करते हैं जब फसल लगाते हैं उस समय देते हैं, या टॉप ड्रेसिंग करते हैं, या कि आप जैसे हाईटेक एग्रीकल्चर में जा रहे हो, जैसे आपने ड्रिप करवा रखी है, मल्चिंग करवा रखी है, तो ड्रिप के माध्यम बेंचुरी के माध्यम से भी हम फर्टिलाइजर देते हैं। तो देखें इस अवस्था में जो है ना फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा जानी चाहिए जिससे जड़ों का अच्छा विकास हो, और जब जड़ों का विकास अच्छा होता है तो पौधे का विकास भी अच्छा होता है। उसमें उसके बाद की जो गतिविधियां हैं फसल की, जैसे फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और ये सब चीज़ें, तो अच्छा होता है। लेकिन इसके बाद जब तीसरी अवस्था आती है कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मैच्योरिटी, जब फल की वृद्धि होती है, उस अवस्था में पोटास की आवश्यकता ज़्यादा होती है। देखें जैसे मिट्टी में जितना पोटास है उसके हिसाब से टमाटर को पोटास ज़्यादा लगता है, तो पोटास की कमी नहीं होनी चाहिए। इससे जो है ना आपके फल ज़्यादा बनेंगे, अच्छे बनेंगे, और उसमें चमक शाइनिंग रहेगी, उससे आपको बाजार में कीमत भी अच्छी मिलेगी। इसके अलावा जो अन्य मुख्य पोषक तत्वों के अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरान, ये तीन तत्व भी होते हैं जो टमाटर के लिए आवश्यक होते हैं। और अगर ये आपकी मिट्टी परीक्षण में जानकारी है इन पोषक तत्वों की कमी है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो मिक्सचर आते हैं बाजार में मिल जाते हैं, उनका उपयोग भी आप ड्रिप के माध्यम से कर सकते हैं, या स्प्रे भी किया जा सकता है इनका। जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनका फोलियर एप्लीकेशन भी किया जा सकता है, इससे आपकी फसल जो है ना स्वस्थ बनी रहेगी और उसमें फल भी अच्छे लगेंगे जिसकी मार्केट में कीमत अच्छी मिल सकती है।
1: श्रोता अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि सामयिकी में टमाटर में संतुलित उर्वरक उपयोग। आप तक इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह ने। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। समय हुआ है कार्यक्रम विवरण का, जानिए आज की सभा यानी 17 मई 2026 की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त सी

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:05 पर होगी राष्ट्रीय एकता पर लघु वार्ता हिंदुस्तान हमारा। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 7:20 पर, सुबह 8:30 पर और सुबह 10:30 पर। फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुनेंगे सुबह 9:20 पर। सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी का समय है सुबह 7:45। हमारे नन्हे मुन्ने श्रोता अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा सुनेंगे सुबह 9:00। कुछ जरूरी चर्चा के विषय रहेंगे, एक सैर शिवपुरी के संग्रहालय के, संदर्भ है अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस 18 मई, ये दौर वो दौर, विश्व दूर संचार दिवस 17 मई, गर्मी से बचें, घर पर रहें और स्वस्थ रहें, पानी की बचत एक अच्छी आदत।

0: श्रोताओं, आप जानकारी दे रहे हैं आपको भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रमों के बारे में। सुबह 10 बजे जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा। सुबह 11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम आप सुनेंगे भोपाल केंद्र से। इनमें कुछ प्रमुख कार्यक्रम है। दिन में 1 बजे महिला कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी श्रीमती वंदना अग्रवाल। जरूरी चर्चा के विषय रहेंगे दूर संचार क्षेत्र में बढ़ते कदम और आसान होती जिंदगी। संदर्भ है विश्व दूर संचार एवं सूचना समाज दिवस। थोड़ा समय खुद को दीजिए और बीमारियों से बचिए। रक्तचाप दिवस 17 मई और अपनी धरोहर को जाने और गर्व महसूस करें। संदर्भ अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस 18 मई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 7 बातें और गर्मी की लपट से खुद को कैसे बचाएं। दिन में 1:30 पर लोक संगीत सुनेंगे आप। आज के कलाकार रहेंगे रामाधीन आर्य और सुगम संगीत का समय है 1:45। शाम 5 बजे शिवानी राठौर युवाणी लेकर उपस्थित होंगी। जरूरी चर्चा के विषय रहेंगे विश्व दूर संचार एवं सूचना समाज, विश्व रक्तचाप दिवस, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 7 बातें। साथ ही आपको इसमें गीत संगीत का भी आप लुत्फ ले सकते हैं। आपको बता दें कि आज शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति रहेगी। शाम 7:21 पर ग्रामीण भाइयों के लिए चौपाल का भी आप कार्यक्रम सुन सकते हैं। तो ये थी जानकारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित कार्यक्रम की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी का प्रसारण। समय हुआ है कार्यक्रम समाचारों का, जिसके लिए हम ले चलते हैं
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम। प्रवाचक दिव्यानंद झा। पञ्चदेशानां यात्रायाः द्वितीये दिने ह्यः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नीदरलैण्ड्स देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह अनेकेषु कार्यक्रमेषु सहभागम् अकरोत्। अत्र सामुदायिक सम्पर्कः, डच राजपरिवारेण सह मेलनं च अन्यतमे आस्ताम्। हेगनगरे भारतीय समुदायं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रवर्तमानं दशकम् आपद्दशकत्वेन वर्णितवान्, यद्धि बहुविधैः सङ्कटैः ग्रस्तमस्ति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत नीदरलैंड्स देशो वैश्विक समाह्वानानि सम्मुखीकर्तुं विश्वस्तायाः पारदर्शिन्याः च भविष्यापूर्ति व्यवस्थायाः निर्माणार्थं सम्भूय कार्यरतौ स्तः। सः अवदत् यत् विश्वं सर्वादौ कोविड-19 महामारीं तदनन्तरं च युद्धं सम्मुखीकृतवत्। साम्प्रतम् एतत् ऊर्जा संकटसमं विकट समाह्वानं सम्मुखीकरोति। सः सावहितम् अकरोत् यत् एतेषां समाह्वानानां द्रुतगत्या यदि निराकरणं न भवति चेत् वैश्विकविकासलाभः प्रपादितः भविष्यति, जनसङ्ख्यायाः विशालः भागः च निर्धनताग्रस्तः भविष्यति। आर्थिकस्थितिव्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय वैश्विकान् प्रयासान् प्रकाशयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत नीदरलैण्ड्स देशो संयुक्तरूपेण सुदृढापूर्तिशृङ्खलायाः निर्माणाय कटिबद्धौ स्तः। ध्यानास्पदमस्ति यत् एषा यात्रा द्विपक्षीय सम्बद्धेभ्यः अधिका महत्वपूर्णा वर्तत। नीदरलैण्ड्स देशस्य यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्री अद्य स्वयात्रायाः तृतीयचरणे स्वीडन देशस्य यात्रां करिष्यति। सः अद्य गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्नोति। स्वीडन देशस्य एकदिवसीया यात्रा नवदिल्ली स्टॉकहोमयोः वर्धमान पारस्परिक सम्बन्धेषु ऐतिहासिकः पदक्रमः अस्ति। श्रीमोदी स्वीडन समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धपरकं सम्भाषणं करिष्यति। CBSE इत्यनेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा नवमकक्षायाः छात्रेभ्यः भाषात्रयस्य अध्ययनं जुलाई मासस्य प्रथमदिवसात् अनिवार्यं कृतम्। परिषदा विज्ञप्तौ उक्तं यत् 20-2000 राष्ट्रिय शिक्षानीतेः 23-2000 राष्ट्रिय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रमस्य अनुसारि एतासु 33 भाषासु न्यूनातिन्यूनं भाषाद्वयं भारतीयमूलकं भवेत्। भारतीयार्थविभागेन अद्य अण्डमान निकोबारद्वीपसमूहाय पश्चिमबङ्गाले हिमालयस्य अधोवर्तिक्षेत्रेभ्यः सिक्किमाय च अतिवृष्टिपरा नारङ्गवार्णकी सञ्चेतना प्रसारिता। केरलं माहे लक्षद्वीप दक्षिणाभ्यन्तरीण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईक्कलेषु उत्तरपूर्वीय क्षेत्रस्य कतिपय भागेषु च समाना एव स्थितिः भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, बैंकॉक नगरे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडामालिकायाः पुरुषयुगलवर्गीये निर्णायकद्वन्द्वे अद्य भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी च इंडोनेशियादेशस्य लियो रॉली कार्नांडो डेनियल मार्थिनाभ्यां स्पर्धिष्येते। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे आयोजिते द्वन्द्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन गुजरात टाइटन्स दलं 39 धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं धर्मशालायाम् अपराह्णे 3:30 पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यति। ततः सायं 7:30 दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो ज़ीफेई और नूरुज़्ज़ीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरला माहे लक्षद्वीप दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए राष्ट्रीय एकता पर लघु वार्ता हिंदुस्तान हमारा।

श्रोताओं, हमारा भारत देश विश्व के मानचित्र पर एक विशाल देश के रूप में चित्रित है। प्राकृतिक रचना के आधार पर तो भारत के कई अलग अलग रूप और भाग हैं। उत्तरी का पर्वतीय भाग, गंगा यमुना सहित अन्य नदियों का समतलीय भाग, दक्षिण का पठारी भाग और समुद्र तटीय मैदान। नदियों और पर्वतों के कारण ये भाग एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। इसी प्रकार से जलवायु की विभिन्नता और अलग अलग क्षेत्र के निवासियों के जीवन आचरण के कारण देश का स्वरूप एक दूसरे से विभिन्न और पृथक दिखाई देता है। इन विभिन्नताओं के होते हुए भी भारत एक है। ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के महान शासकों ने भारत को एक करने की कोशिश की और उन्होंने इस कार्य में सफलता भी मिली। साथ ही हमारे देश का साहित्य भी सभी प्रकार की विभिन्नताओं और असमानताओं को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये साहित्य कोई एक भाषा में नहीं लिखा गया, अपितु ये देश की विभिन्न भाषाओं में लिखा होने के कारण मेल मिलाप का संदेश देता है, ताकि हर व्यक्ति तक, हर भाषा बोले जाने वाले व्यक्ति तक ये भावना पहुंचे और वो भावना प्रबल रूप से देश की एकता के लिए ही काम करे। श्रोताओं, विचारों की एकता सबसे बड़ी एकता होती है और इसीलिए ये साहित्य अलग अलग भाषा में होने के बाद भी सबके विचारों को एक करते हैं। यद्यपि हमारे देश की भाषाएं अनेक हैं, लेकिन सभी भाषाओं को एक जैसा सम्मान मिला है। आज हम सब अलग अलग त्यौहार अलग अलग तरीके से अलग अलग मान्यताओं के साथ मनाते हैं, फिर भी सबका भाव एक ही है, प्यार भाईचारे का। प्राचीन काल से ही भारतीय धर्म और संस्कृति ने समग्र राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखने का अनुपम प्रयास किया है। समस्त भारतीय धार्मिक संपदाओं का भारी रूप अलग अलग होते हुए भी उनकी आत्मा भारतीयता से परिपूर्ण है और यही कारण है कि देश में राष्ट्रीय एकता का स्वरूप आज भी कायम है। भाषाई अनेकता की बात करें तो यूं भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन भाषाई भेद होते हुए भी प्रत्येक भाषा में बहने वाली चिंतन धारा एक है, भारत की राष्ट्रीय एकता बनी हुई है। भारत देश लोकतांत्रिक देश है, जहाँ प्रत्येक धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, प्रदेश के व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार है अपने स्वयं के निर्णय लेने का। राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति हमारा प्यार ही हमें देश से और समाज से जोड़े हुए है और यही वो देश प्रेम है जो हमारे वीरों में कूट कूट के भरा था। उन्हें न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई।

0: देश में एकता और भाईचारे का वातावरण बना रहता है तो देश प्रगति करता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय एकता पर लघु वार्ता हिंदुस्तान हमारा, FM बैंड 100.2 MHz पर। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 होने को है। अगला प्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स की यात्रा रणनीतिक क्षेत्र में 17 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ संपन्न हुई। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि डिजिटल बदलावों के दौर में आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना भी जरूरी। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया और देवास जिले में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना के सिलसिले में पुलिस एवं राजस्व विभाग के 4 अधिकारी निलंबित किए गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स की यात्रा रणनीतिक क्षेत्र में 17 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ संपन्न हुई। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा पर संयुक्त कार्यदल और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को गति देने के लिए हरित हाइड्रोजन की कार्ययोजना, आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण खनिज सहयोग, गुजरात की कल्पासर परियोजना के माध्यम से जल प्रबंधन पर नीदरलैंड्स का सहयोग शामिल है। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री ने कल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में चोल युग के ताम्र प्लेटों को भारत वापस लाने के संबंधित ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लिया। ताम्र प्लेट की वापसी भारत की जनता के लिए भावनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जानी मानी कंपनी ASML के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इस समझौते से भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती आएगी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि भारत की न्यायपालिका को अब अस्पतालों की तरह 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना होगा। डिजिटल बदलावों के इस दौर में आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। कल जबलपुर में आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने कहा कि तकनीकी प्लेटफॉर्म ऐसे हों जिन्हें ग्रामीण और तकनीक से कम परिचित लोग भी आसानी से समझ सकें। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री श्री मेघवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ये पहल साधारण नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले डिजिटल पुलिस नेटवर्क के उदाहरण के रूप में चंडीगढ़ का नाम लिया जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश मिसाल बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विज्ञान और तकनीक ने मानव जीवन को सरल बनाया है और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: आज नवाचार और तकनीक का जमाना, ऐसे में विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल बनाने में बड़ी भूमिका अदा की और ऐसे समय में जब ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका हमारे न्याय तंत्र की है। ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कागजी फाइलों की लंबी प्रक्रिया और जटिलता को समाप्त करके फाइलों के त्वरित निराकरण करते हुए बेहतर प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने मीडिया को बताया कि समिति विभिन्न राज्यों के दौरे के दौरान आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही है। प्रस्ताव से उत्पन्न चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि चुनावों को एक साथ कराने के लिए कुछ राज्य विधानसभाओं को समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानूनों, अविश्वास प्रस्ताव और राष्ट्रपति शासन से उत्पन्न मुद्दों को हल करना होगा। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि इससे चुनाव आचार संहिता के कारण विकास प्रभावित होता है, आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं

0: और पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग, बैंकों और सरकार के संबंधित विभागों पर भी असर पड़ता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में खरीफ सीजन के पूर्व 10 दिवसीय कृषि रथ का शुभारंभ किया गया है। धार जिले में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के सभी 13 विकास खंडों के लिए 13 कृषि रथ तैयार किए गए हैं, जो जिले के सभी 510 ग्राम पंचायतों में भ्रमण कर कृषि योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कल इंदौर जिले के सांवेर में कृषि रथ का वर्चुअली शुभारंभ किया। आगामी 10 दिनों में कृषि रथ के माध्यम से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में किसानों को खरीफ मौसम की क्षेत्रीय फसलों के लिए उन्नत कृषि तकनीक, जैविक एवं प्राकृतिक खेती और कृषि नवाचारों की जानकारी दी जाएगी। वहीं शिवपुरी जिले में भी सभी विकास खंडों में कल 10 दिवसीय कृषि रथ अभियान का शुभारंभ किया गया, तथा खंडवा में महापौर अमृता यादव ने कृषक जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों के बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। देवास जिले की टोंक खुर्द तहसील के ग्राम टोककला स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुई विस्फोट एवं आगजनी की घटना के मामले में पुलिस एवं राजस्व विभाग के 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आयुक्त उज्जैन संभाग से प्राप्त प्रतिवेदन और पुलिस महानिदेशक की अनुशंसा के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित अधिकारी द्वारा शासन स्तर से समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप फैक्ट्री के संचालन संबंधी निरीक्षण नहीं किए गए थे। वरिष्ठ कार्यालय को आवश्यक प्रतिवेदन भी प्रेषित नहीं किए गए। शासन ने इसे कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता माना है। जारी आदेश में कहा गया है कि विस्फोटक सामग्री से संबंधित प्रकरणों में शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रशासनिक निरीक्षण एवं निगरानी नहीं की गई। वहीं खंडवा जिले में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से शनिवार को छैगांव माखन तथा देशगांव क्षेत्र में पटाखा गोदामों का पुलिस और प्रशासन के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में पुलिस, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा में शहीद होने वाले कर्मियों की विधवाओं एवं उनके आश्रित बच्चों के लिए एक अतिरिक्त सीट आरक्षित की है। आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रत्येक स्नातक पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त एक सुपर न्यूमररी अतिरिक्त सीट निर्धारित की गई है, जिससे नियमित सीटों की संख्या प्रभावित नहीं होगी। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को कल 29 रन से हरा दिया। कल रात कोलकाता में नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए, जबकि गुजरात टाइटंस 4 विकेट खोकर 218 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। धर्मशाला में 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा, वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश के शहडोल, चंबल, रीवा, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं कल बारिश दर्ज की गई, जबकि खंडवा, रतलाम, गुना, नर्मदापुरम सहित कई जिलों में लू का असर रहा। अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में भी तापमान में विशेष राहत मिलने की संभावना कम है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को दोपहर के समय में अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और तेज धूप से बचाव करने की एडवाइजरी जारी की है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों एवं बीमार व्यक्तियों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा और गुना में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर कल डेंगू नियंत्रण, रोकथाम एवं जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सतना जिले के मझगवा में फसलों में संतुलित उर्वरकों के प्रयोग पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बालाघाट के वारा सिवनी सांदीपनी विद्यालय के छात्र मयंक मात्रे ने इंटरनेशनल स्पेस साइंस कंपटीशन में ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त कर ग्रैंड विनर का खिताब अपने नाम किया। और बैतूल में 18 से 25 मई तक जनजाति समुदाय के लिए लाभार्थी संतृप्ति शिविर जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स की यात्रा रणनीतिक क्षेत्र के 17 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ संपन्न हुई। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि डिजिटल बदलावों के दौर में आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना जरूरी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया और देवास जिले में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना के सिलसिले में पुलिस एवं राजस्व विभाग के 4 अधिकारी निलंबित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म।

फिल्म संगीत सुन रहे हमारे सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत। तो आ जाइए अपने रेडियो सेट के पास या बढ़ा लीजिए रेडियो की आवाज़। लेकिन याद रहिए, ये सुबह का है समय, आपके आसपास के लोगों को ना हो एतराज़। आइए कार्यक्रम का कर रहे हैं हम आगाज़।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म हिमालय की गोद में का ये गीत, जिसे लिखा था इंदिवर ने, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। इस गीत में आप सुन रहे थे कि कंकर या मार के जगाया, इतने प्यार से अगर कोई उठाए तो हम उठ ही जाएंगे ना, नहीं तो हम बार बार अलार्म को बंद करते हैं और नींद लेते रहते हैं, है ना, ऐसा ही करते हैं ना, सोचते हैं 5 मिनट की नींद और ले लेते हैं, चलिए 5 मिनट बाद उठ जाएंगे, और इस तरह से हम देरी करते हैं उठने में। लेकिन श्रोताओं, सुबह जल्दी उठना हमारे सेहत के लिए ही लाभकारी है। जल्दी उठकर थोड़ा एक्सरसाइज या योगा, हम कुछ भी ऐसा फिजिकल एक्टिविटी करके अपना आलस दूर भगा सकते हैं और अपने दिन की जो शुरुआत है वो ऊर्जा से भर कर कर सकते हैं। लेकिन सुबह हमें अगर तरोताज़ा उठना है तो रात को जल्दी सोना होगा। अब रात की नींद अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है तो उसके कई सारे कारण हैं। एक कारण तो आजकल सभी के पास है मोबाइल, हम देर रात तक मोबाइल में लगे रहते हैं या फिर टीवी देखते हैं, या फिर हो सकता है किसी ने हमारी नींद चुरा।

बहाना ये भी है कि जुल्मी संग आंख लड़ी। सुन रहे थे आप अभी लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में ये गीत फिल्म मधुमति से शैलेंद्र की रचना सलिल चौधरी का संगीत। श्रोताओं, देर से उठना देखा जाए तो कहाँ तक ठीक है? आज जानते हैं, जब मैं यहाँ के लिए आपसे मिलने के लिए घर से निकली तो सुबह का जो माहौल था बड़ा ही प्यारा। सुबह सुबह जब घर से निकली तो चिड़ियों की चहचहाट, उगते हुए सूरज की मध्यम सी जो लालिमा थी, उसको देख के ख्याल आया कि कितनी प्यारी सुबह है। और ये सुबह हम रोज़ रोज़ मिस करते हैं, तो क्यों मिस करना? सुबह जल्दी उठना है। मैंने तो सोच लिया है कि सुबह जल्दी उठकर इन सब जो कुदरत के नज़ारे हैं इनका आनंद लेने की भरपूर कोशिश करनी है। लेकिन हमारी इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में ये रंग, ये चिड़ियों की चहचहाट, कोयल की बोली कहीं गायब सी हो गई है ना? है ना?

बिल्कुल, कोयल बोल के आपको उठा रही है कि उठ जाइए, और हमें मालूम है हमारे सभी श्रोता उठ गए हैं और हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। सुन रहे थे आप फिल्म सरगम का ये गीत, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, कि कोयल बोली दुनिया डोली। और कोयल की बोली हो या चिड़ियों की चहचहाट, या फिर जो सुबह सुबह की जो ठंडी सी हवा है जो फूलों को छू कर आती है, उसका एहसास सभी कितना प्यारा होता है ना। तो सुबह उठने के जो हमारे शारीरिक जो हमको लाभ मिलते हैं, मानसिक शांति भी बहुत मिलती है। तो श्रोताओं, आइए इस रेडियो के साथ ज़रा उठ जाइए और अपनी चाय की प्याली लेकर ये कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, जिसे हमने लिया है फिल्म हीरो से, लता मंगेशकर की आवाज़, एक बार फिर आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

जी हाँ, निंदिया से जागी बहार, सुबह जल्दी उठेंगे तो ये प्यारी सी जो हमारी मौसम है, चिड़ियों की चहचहाट है या जो भी है, एक सुंदर नज़ारा, आप उस नज़ारे का, उस बहार का आनंद ले सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि सुबह जल्दी उठना होगा, इसके लिए सुबह जल्दी सोना होगा। कोई बहाना नहीं चलेगा कि इस कारण से देर से सोए या उस कारण से। बहानों की लिस्ट में ये जो आखिरी गीत है, ये भी बहाना ही है कि हम क्या क्या बहाने बनाते हैं रात को देर से।

आगे तो पता नहीं, पर हाँ अगर देर से जागे तो सब काम देर से होंगे। तो टाइम से सोइए, टाइम से उठिए और बने रहिए हमारे साथ। और अब इस गीत के साथ जो आपने अभी गीत सुना, फिल्म हरियाली और रास्ता का, आवाज़ लता मंगेशकर और मुकेश की, हसरत जयपुरी की रचना शंकर जय किशन का इसमें संगीत था। ये गाना इस कार्यक्रम का आखिरी गाना है, लेकिन और भी मनोरंजक कार्यक्रम आपके साथ लेकर मैं बनी रहूंगी। और फिलहाल दीजिए अनुमति, नमस्कार। एफएम बैंड 100.2 MHz पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए सूचना परख दैनिक कार्यक्रम नमस्कार।

कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुन रहे हमारे सभी श्रोता साथियों को मेरा सस्नेही अभिवादन। सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र मोनिका। बहुत सारी बातें आज, सबसे पहले बात आज की खासियत की। 17 मई आज की तारीख और हम 17 मई को मनाते हैं विश्व दूर संचार दिवस। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को दूर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूक करना है। विश्व दूर संचार दिवस पहली बार 17 मई 1969 को मनाया गया और 2006 में यूएन ने 17 मई को वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे की घोषणा की। फिर दोनों ने मिलकर वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे बनाया, जिसका उद्देश्य डिजिटल तकनीक, इंटरनेट और संचार के जरिए दुनिया को जोड़ना है। वैसे भी इसकी नींव 17 मई 1865 को रखी गई थी। पेरिस में पहला इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन हुआ और इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन की स्थापना हुई। इसी की याद में यह दिन मनाया जाता है। और श्रोताओं, 1932 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि ITU कर दिया गया था। यह दिवस सकारात्मक संचार प्रौद्योगिकी के लाभों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का एक माध्यम है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सूचना और संचार को अधिक सुलभ बनाना भी है। यह दिवस हमारे जीवन में संचार के महत्व पर भी बल देता है, जिसे हम विभिन्न तकनीकों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, इस दिवस पर एक संकल्प लेते हैं कि तकनीक का उपयोग समाज, शिक्षा, संस्कृति और मानवीय रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए करेंगे। 17 मई से जुड़ी और भी कई सारी बातें हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, आइए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। 17 मई 1498 पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने अपनी समुद्री यात्रा के

भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। उच्च रक्तचाप, जिसे साइलेंट किलर भी कहते हैं, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन, जैसे कि हमने आपको बताया, मनाया जाता है। और समय पर जांच करना और इसे नियंत्रित करने के उपाय बताना इस दिवस का उद्देश्य है। इस दिवस की स्थापना पहली बार 2005 में की गई थी और उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर, जैसे कि हमने आपसे बताया, अभी साइलेंट किलर भी माना जाता है क्योंकि अक्सर इसकी शुरुआती लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन ये दिल के दौरे और स्ट्रोक का बड़ा कारण बन सकते हैं। ये बात हम आपको सिर्फ जागरूक करने के लिए बता रहे हैं ताकि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। नियमित जांच, नमक का सीमित उपयोग, धूम्रपान से बचाव, संतुलित आहार, व्यायाम इसे नियंत्रण करने के मुख्य उपाय हैं। तो श्रोताओं, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और अपने नियमित जांच कराते रहें ताकि इस बीमारी से आगे होने वाले दुष्प्रभाव से हम बचे रहें।

उन राहों पर भी चलना है हमें जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वैश्विक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया संकट वेस्ट एशिया क्राइसिस के प्रभाव से भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने और आत्मनिर्भर बनने के 7 प्रमुख अपील की गई है। इन अपील का उद्देश्य विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना और देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। अब वो 7 अपील क्या हैं? वो है, सबसे पहली वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी गई है, जिससे कि तेल की खपत और ट्रैफिक को कम करने के लिए कार्यालयों में ऑनलाइन मीटिंग्स और घर के काम करने में बढ़ावा दें। सोने की खरीद से बचे, विदेशी मुद्रा के संरक्षण के लिए कम से कम 1 वर्ष तक सोने का गैर आवश्यक आभूषणों की खरीदारी से बचे। पेट्रोल और डीजल बचाएं, निजी वाहनों का कम उपयोग करें और सार्वजनिक वाहन यानी कि मेट्रो बस कार्पूलिंग या इलेक्ट्रॉनिक वाहन की प्राथमिकता दें। और कुकिंग ऑयल खाना पकाने का जो तेल है उसका उपयोग घटाएं, इससे आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और खाद्य तेल की खपत में भी कटौती होगी। प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े, रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता कम करें, जैविक या प्राकृतिक खेती को अपनाएं, स्वदेशी अपनाएं, विदेशी ब्रांडों की जगह वोकल फॉर लोकल का पालन करें, मेड इन इंडिया उत्पादन का उपयोग करें और विदेशी यात्रा से बचें। देश का विदेशी मुद्रा भंडारण बचाने के लिए 1 वर्ष तक गैर जरूरी विदेशी यात्राओं से बचें। तो ये हमारी प्रधानमंत्री जी द्वारा दिखाई गई जो राह है उस पर हर भारतीय को अमल करना चाहिए, ताकि हमारा देश जो अगर आगे आने वाले जो भी संकट है उससे मुकाबला करने में एक साथ एकजुट होकर खड़ा रहे।

जी हाँ श्रोताओं, उसी राह पर चलना है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सजग रहें, सतर्क रहें और

और श्रोताओं, अब नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कलेक्टर अर्पिता वर्मा का पिछोर दौरा, सनघट्टा डैम का किया अचानक परीक्षण और अधिकारियों को दी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी। संभागीय प्रभारी के साथ हुआ जनगणना कार्य को लेकर बैठक की गई। जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण कार्य के तहत शनिवार को जनगणना का कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश भोपाल से ग्वालियर संभाग प्रभारी एवं सहायक निर्देशक प्रेमा नायर शिवपुरी जिले के भ्रमण पर आई। खरीफ फसलों की तकनीकी जानकारी हेतु कृषि रथों को दिखाई हरी झंडी, गांव-गांव पहुंचेगी योजनाओं और नई तकनीक की जानकारी। शहर में जलाशय के जलकुंभी हटाने के लिए पूरी योजना से काम किया जाएगा, कलेक्टर के ये निर्देश है। और विद्युत समस्याओं के तत्वारित निराकरण हेतु शिविर का आयोजन, 18 मई को विभिन्न केंद्रों पर लगेंगे कैंप। शासकीय कार्यों में अनुशासनहीनता और लापरवाही पर लगेगा अंकुश, कलेक्टर ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत। तो ये थी कुछ कुछ खास खबरें शिवपुरी जिले से। और अब कार्यक्रम है समाप्ति की ओर। तो कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि गर्मी का प्रकोप जारी है, तो घर से निकलते वक्त थोड़ा सावधानी से निकलें, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, नहीं तो घर पर रहें, स्वस्थ रहें, भरपूर पानी पीते रहें और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आकाशवाणी रेडियो से जुड़े रहें, दीजिए अनुमति।

0: प्रसारण सुबह की
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: And also infrastructure development that has happened.
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या

0: दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माही और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट UG पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार NTA ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से CBSE के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप अभी सुन रहे थे फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीत इंदीवर का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, कि फूल तुम्हें भेजा है खत में। सचमुच वो भी क्या दौर था जब कागज़ के एक टुकड़े पर दिल की धड़कनें लिख दी जाती थी। हफ्तों इंतज़ार होता था उस एक जवाब का, कितना धैर्य होता था ना उसमें। इंतज़ार, एक तड़प, एक सुकून था। वो आज के इंस्टेंट मैसेजेस में कहाँ है कि इधर मैसेज किया है, इधर जवाब आना चाहिए, नहीं आया जवाब तो क्यों नहीं आया। बड़ी हम अधीर हो गए हैं इस मामले में, लेकिन जब खतों का दौर था तब कितना धैर्य था, है ना। हम अपने खत को भेजने के बाद इतने धैर्य से इंतज़ार करते थे जवाब आने का। किसी ने क्या खूब लिखा है कि वो खत के पुर्जों में छुपा कर रखना अपनी मोहब्बत, अब कहाँ नसीब में इस नए दौर की सुर्खियों में।

0: कन्यादान। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत शंकर जयकिशन का। श्रोताओं, और भी गीत और भी बातें आपसे साथ करेंगे हम, लेकिन फिलहाल एक अंतराल आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है,
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: और श्रोताओं, इस अंतराल के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। और आज हम दूर संचार दिवस पर बात कर रहे हैं, अपने गुजरे हुए उस दौर के बारे में जहां दूर संचार के यानी कि आपस में बात करने के जरिए थे खत, टेलीफोन। तो आ जाइए रेडियो सेट के पास, कि गीतों का भी आप ले रहे हैं आनंद। वक्त बदला और खतों की जगह ले ली तारों ने। घर में सिर्फ एक फ़ोन और उस फ़ोन की घंटी बजते ही सभी का दौड़कर फ़ोन की तरफ आना। क्या दिन थे वो भी। दूरी भले ही कम नहीं हुई थी, लेकिन अपनों की आवाज़ सुनकर लगता था मानो वो ठीक सामने बैठे हैं। आवाज़ का भी अपना एक अलग जादू होता है। आँखों से जो ना कह पाए वो लफ्ज़ों की सरसराहट कह देती है। आइए कुछ ऐसा ही एक एहसास आपको कराते हैं इस गीत के साथ। टेलीफोन के एक तरफ सुनील दत्त, दूसरी तरफ नूतन, और बीच में तारों से जुड़े अनगिनत जज्बात। आइकॉनिक।

0: फिल्म सुजाता का ये गीत सुन रहे थे आप, तलत महमूद की लरजती आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत। और भी गीत और भी बातें, लेकिन एक छोटा सा, बहुत छोटा सा अंतराल, आते हैं जाइएगा नहीं।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और इस अंतराल के बाद फिर से आपके साथ बातें करने आ गए हैं हम, उस दौर की बात जब संचार केवल तकनीक नहीं भावनाओं का भी सेतु होता था। दूरी चाहे कितनी भी हो, संवाद बना रहे तो रिश्ते जीवित रहते हैं, और संवाद स्थापित करने का ये माध्यम बहुत लाजवाब है। जी हाँ श्रोताओं, ये इसलिए कि अब हम अपनी मुट्ठी में एक चीज़ लिए घूमते हैं जिसे हम मोबाइल कहते हैं, और इसे जो हमने मुट्ठी में बंद किया है ना, ये एक जादू का पिटारा सा है। इसे हम खोलते हैं तो व्हाट्सएप पे एक दूसरे से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, वीडियो कॉल करते हैं दूसरे को, जिसकी आवाज़ सुन रहे हैं उसको देख भी लेते हैं। यही करिश्मा है ना, कि ऐसा लगता है कि बात करते करते दिल कह उठे कि हाँ, वो सामने वाला जो हमारे सामने वीडियो कॉल पे दिख रहा है वो आ गया है, तो नूर आ गया है जीवन में, सच्ची ना।

क्या बात शुतम, आप लोग आते हैं तो वाकई ही कार्यक्रम में नूर तो आता ही है, लेकिन ये जो नया दौर है जहाँ 5G वीडियो कॉल ने दूरियों के मायने ही बदल दिए हैं, सात समंदर पार बैठा शख्स भी आपका स्क्रीन पर मुस्कुराता हुआ नजर आएगा, उसका चेहरा आप देख सकते हैं। और तुम आ गए हो, नूर आ गया है, यही हमारे दिल से निकलता है। अभी आपने सुना फिल्म आंधी का ये गीत, गायक लता मंगेशकर और किशोर कुमार, और इस गीत को लिखा था गुलजार ने, सचिन राहुल देव बर्मन का इसमें संगीत था। और जहाँ तक हम आज बात कर रहे हैं तकनीकी, तो तकनीक ने फासले तो मिटा दिए हैं, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि सिलसिलाए गुफ्तगू यूं ही जारी रहे तो दूरियां कभी दीवार नहीं बनती। आज इस दूर संचार दिवस पर किसी ऐसे अपने को कॉल कीजिए, वो दोस्त वो रिश्तेदार जिससे आपने बात किए मुद्दत हो गई, क्योंकि कभी कभी हम जिनसे मिल नहीं पाते हैं उनसे बातों का सिलसिला अगर टूटता है ना तो अच्छा नहीं लगता। दूर संचार के इस हाई स्पीड के दौर में भी अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से, अपनों से सीधे संवाद कर उस गर्माहट को महसूस कीजिए, उस गर्माहट को कभी भी मिस मत कीजिए, कम मत होने दीजिए। तकनीक का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कभी कभी फोन को किनारे रखकर अपनों की आंखों में देखकर बात करने का आनंद तो लीजिए।

सुन रहे थे आप अभी मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में फिल्म सीआईडी का ये गीत, जान निसार अख्तर की रचना को संगीत से सजाया ओपी नैयर ने, कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, इशारे से काम नहीं चलेगा, अपने खत लिखने की जो काबिलियत है उसको और बढ़ाइए और हमें अपनी फरमाइशी खत लिखिए और आपकी हम फरमाइश पूरी करेंगे। और आज की सभा में 9:20 पर हमारे साथ आइएगा, आप ही के खतों से सजा कार्यक्रम, आपकी फरमाइश हम लेकर आएंगे। और अब इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति, नमस्कार। FM बैंड 100.2 MHz पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम बाल

बच्चों जय हिंद। बाल सभा सुन रहे हमारे नन्हे प्यारे श्रोताओं को आपकी दीदी मोनिका का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब बच्चों? स्कूल की छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं ना? हमें पता है, और हमें ये भी पता है हमारे कुछ दोस्त अपनी नानी के यहाँ बैठकर हमें सुन रहे होंगे या फिर दादी की गोदी में, है ना? आप सब अपना ख्याल रखना बच्चों, गर्मी बहुत है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना और साथ साथ घर में रहकर दिन भर मोबाइल या टीवी मत देखना, थोड़ी थोड़ी अपनी नॉलेज भी अपडेट करते रहना। अब घर में रहकर नॉलेज अपडेट कैसे करनी है? वो ऐसे करनी है, कुछ किताबें लेकर आइए, उन्हें पढ़िए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने स्कूल की ही किताबें पढ़िए, कुछ अलग से किताबें लीजिए जनरल नॉलेज की, या फिर जिस चीज़ में आपको, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट के लिए आइए। चलिए थोड़ी सी मदद हम करते हैं आपकी, आज आपके ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि करते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि आपको बताएंगे आज के दिन की खासियत। बच्चों आज 17 मई, और 17 मई को होता है विश्व दूर संचार दिवस, यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। अब इस बात को आप ऐसे समझिए, एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसके बिना हमें हमारा जीवन अधूरा सा लगता है, और अगर वो हमारे पास ना होना तो क्या होगा? तो हम अपने किसी दोस्त, किसी मतलब रिश्तेदार से, या हमारे भाई बहन जो बाहर रह के पढ़ रहे हैं उनसे, हमारी दादी नानी जो हमसे दूर रहती हैं उनसे हम बात नहीं कर पाएंगे। हमारे प्यारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, समझ गए हैं हम बात कर रहे हैं मोबाइल की। हमें पता है अभी आप छोटे हैं, आपके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन होना भी नहीं चाहिए, इतनी छोटी उम्र में मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मोबाइल से कुछ काम है तो आप अपने मम्मी या पापा का मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी ऐसे ज़िद मत कीजिएगा मम्मी पापा से कि हमें हमारा मोबाइल चाहिए, गलत बात है, अभी आप बहुत छोटे हैं। तो हम बात कर रहे हैं मोबाइल की। हाँ, तो जो मोबाइल हमारे पास है ना, उसे हम ना किसी से वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, मतलब जिससे बात कर रहे हैं उसको देख सकते हैं। पर बच्चों क्या आप जानते हैं, कभी किसी से बात करने के लिए मतलब किसी की हालचाल जानने के लिए, या ये जानने के लिए कि वो किस कैसे हैं, सब ठीक है ना, उसका एक ज़रिया अलग था, वो था चिट्ठी लिखना। आपको बात अजीब लगी होगी लेकिन बात सही है, अपनी दादी या नानी से आप बात कीजिए और वो आपको बताएंगे कि कैसे चिट्ठी लिखी जाती थी, फिर कैसे पोस्ट की जाती थी, उस पर एड्रेस लिखते थे जहाँ पर उसको पहुँचाना रहता था, और फिर डाकिया हमारी चिट्ठी हम तक लेके जाता था, मतलब चिट्ठियों का आदान प्रदान डाकी द्वारा, पोस्टमैन के द्वारा होता था। फिर आया फ़ोन का ज़माना, चिट्ठियाँ तो तब भी चलती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर फ़ोन का ज़माना है, लेकिन फ़ोन ये मोबाइल जैसा नहीं, आपके जो हाथ में मोबाइल है ना वैसा फ़ोन नहीं, वो थोड़ा अलग था, थोड़ा बड़ा सा डिब्बा है ना, और उसका प्रोसेस थोड़ा सा धीमा था, मीन्स एक एक नंबर को डायल करना और उसको डायल करते करते उस चीज़ का एक अलग ही आनंद था। और जानते हैं वो भी जो फ़ोन था ना, वो हर किसी के घर में नहीं होता था, वो कुछ एक खास लोग, मतलब कुछ एक लोग ही उस टाइम अपने घरों में वो फ़ोन लगवाते थे। और सबसे अच्छी बात क्या होती थी कि जैसे मान लिया हमारे पड़ोसी के घर में वो फ़ोन है और हमें अपने रिश्तेदार को नंबर देना है, तो हम वो नंबर देते थे और उसको कहते थे पीपी नंबर, यानी कि रिश्तेदार को कहते थे ये हमारे पड़ोसियों का नंबर है। लेकिन अब धीरे धीरे धीरे धीरे चीज़ें बदली हैं, मोबाइल का ज़माना आया है और पूरा संसार हमारी जेब में है, है ना? तो ये जो हाई स्पीड स्मार्टफोन का ज़माना है, ये हमारी बहुत सारी चीज़ों को लेकर आया, बहुत सारी सुविधाएं हैं इसमें, हम बैंक का काम फ़ोन से कर लेते हैं, बिल पेमेंट करना है तो फ़ोन से हो जाता है, आप बच्चे अपनी ऑनलाइन क्लासेस इसी मोबाइल से कर लेते हैं, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें इस फ़ोन पर हैं, तो ये सब दूर संचार के माध्यम है, मीन्स कम्युनिकेशन के जो माध्यम है, और आज वही दिन है। तो ये तो बात हुई आज के दिन की, लेकिन
कल की बात अगर हम करें तो कल है, कल भी एक खास दिन है, कल है इंटरनेशनल म्यूजियम डे, अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस। अब बच्चों पहले आप ये बताइए कि म्यूजियम से आप समझते क्या हैं, मतलब म्यूजियम शब्द आते ही आपके दिमाग में क्या चीज आई सबसे पहले? एक बड़ी सी बिल्डिंग, राइट, और उसके अंदर बहुत सारे पुरानी पत्थरों की मूर्तियाँ, पुरानी तलवारें, सिक्के, पुराने वस्त्र, यही सब नहीं बच्चों। म्यूजियम एक आप समझिए एक टाइम मशीन है जो आपको बिना किसी टिकट के पलक झपकते ही सैकड़ों हजारों साल पीछे अतीत पास्ट में ले जाता है। अब आप सोच कर देखिए कि आज हम जिस आधुनिक भारत पे, जिस आधुनिक देश में हम जी रहे हैं और बहुत सब तकनीकों का बहुत अच्छे से लाभ ले रहे हैं, तो हमारी सभ्यता, हमारी जड़ें कहाँ हैं? हमारी सभ्यता कैसी थी? जब आप किसी म्यूजियम में कदम रखेंगे ना, तो वहाँ आपको सब चीज़ें नज़र आएंगी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय के बर्तन को देखेंगे, सम्राट अशोक के काल के शिलालेखों को अगर आप छूते हैं, या फिर आज़ादी के दीवानों के हाथों से लिखी हुई चिट्ठियाँ, उनकी डायरियाँ, आहा क्या एहसास है ना अलग। ये सब आप, मुझे मालूम है आप कहेंगे कि ये तो हम मोबाइल में भी देख लेते हैं, या ये कहिए आपके कोर्स किताबों में भी लिखा होगा, लेकिन जब हम म्यूजियम में जाके देखते हैं तो हिस्ट्री हमारे सामने जिंदा हो जाती है। आप फील कर पाते हैं वो दौर। म्यूजियम हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, जैसे कि आप सब जानते हैं, जहां हर चीज़ फ़ोन की स्क्रीन टच किए ही सर्च करा और आपको मिल गया, लेकिन ऐसी ऐतिहासिक वस्तुओं को आप अपनी आँखों से देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उस पर क्या लिखा हुआ है, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और नॉलेज के साथ साथ जब आप खुद वहाँ जाकर पढ़ेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं। ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि कैसे हमारे पूर्वज ने खूबसूरत समाज का निर्माण किया और उसके लिए कितना संघर्ष किया। आप प्राउड फील करेंगे अपने एंसेस्टर्स के लिए। आप किसी म्यूजियम में जाते हैं तो वहाँ किसी क्या कहना चाहिए, सिर्फ आपके जो इलाका है, जैसे ये शिवपुरी शहर है, तो शिवपुरी से जुड़ी हुई चीज़ें तो आप देखेंगे ही, बल्कि पूरे देश से अलग अलग स्थानों से आई हुई कलाकृतियाँ, पहनावे और औजार जो यूज़ हुए हैं, उन्हें देखकर आपको समझ आएगा कि कितना रचनात्मक लोग होते थे, कैसे हर चीज़ को गढ़ लेते थे। और शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी म्यूजियम में भी अगर आप जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हमारे देश में कैसे लोगों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, वो सब चीज़ें ये आपको म्यूजियम में आसानी से देखने को सब मिल जाएंगी। तो इस बार आप बच्चों क्या प्लान करेंगे छुट्टियों में, कि कहाँ कहीं पर घूमने फिरने नहीं, एक म्यूज़ियम पे जाने का भी अपने पेरेंट्स के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ एक म्यूज़ियम विज़िट करने का प्रोग्राम ज़रूर बनाएं। अगली बार जब भी आप ये प्रोग्राम बनाएं तो ये नहीं कि घूमने जा रहे हैं तो चलिए मॉल में चलते हैं, रेस्टोरेंट चले जाएं या पिक्चर देखने चले जाएं, नहीं, इस बार म्यूज़ियम ज़रूर होकर आइएगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। देखिएगा आप शिवपुरी के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। सिर्फ मोबाइल में ही नहीं डूबे रहिएगा, कुछ देर घर से बाहर जाइए और देखिए कि कैसे अपनी सभ्यता फली फूली है। लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि अभी क्या है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है ना, तो अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल हमें रखना है। ये सब चीज़ें तो

गर्मी से बचने के लिए थोड़ा सा आपको खुद पर ध्यान देना होगा। अब मम्मी से कहिए कि अच्छा पौष्टिक ताज़ा खाना बना के दे, बाज़ार का खाना हो सके तो कम ही खाइए। और इस समय तो कितने अच्छे फल आ रहे हैं बाज़ार में, खरबूजा है, तरबूज है, इतने टेस्टी फल आ रहे हैं, ये सब खाइए आप। इससे आपकी जो गर्मी में ठंडक मिलेगी, तो गर्मियों में ताज़े मौसमी फल खाइए, पौष्टिक भोजन कीजिए और सबसे मेन खूब पानी पीजिए। आप जब पानी पियेंगे तो आपके शरीर को अंदर से तरावट मिलेगी और गर्मी से आपको राहत भी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपके घर में जो बड़े हैं ना, उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखिए कि गर्मी में अगर वो खुद उठकर बार बार पानी नहीं पी पा रहे हैं तो आप उन्हें एक गिलास पानी तो पकड़ा दीजिए, खुद भी पीजिए, है ना। तो थोड़ा सा बड़ों का भी ध्यान रखिए। और एक बात और, जैसे कि हमने आपसे कहा कि गर्मी बहुत है, तो गर्मी में एक चीज़ हमको बहुत सहेजनी है, मतलब संभाल के इस्तेमाल करनी चाहिए, वो है पानी। पानी की कमी गर्मियों में बहुत हो जाती है। आप अपने घर में देखते होंगे ना कि जैसे नल पानी बहुत कम आ रहा है, या मम्मी पापा से सुनते होंगे कि आज तो नल ही नहीं आए, या फिर ऐसा भी सुनते होंगे कितनी बार कि पानी का लेवल नीचे चला गया है। तो ये सब बातें हमको भी सोचनी चाहिए। आप छोटे हैं अभी, हम जानते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे ना, तो आप भी छोटे होने के बाद भी पानी की बचत में अपना सहयोग दे सकते हैं। अब जैसे गर्मी बहुत है, आप सोचेंगे नहा लेते हैं चलो, लेकिन आप कैसे नहाते हैं, टब भर कर उसमें बैठ कर खूब सारा पानी वेस्ट होता है? नहीं, ऐसे नहीं, आपको एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी लेके फिर स्नान करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी पानी की भी बचत होगी और गर्मी में आपको राहत भी मिलेगी। तो पानी की बचत पर विशेष ध्यान करें। और ये छोटी बात तो आप भी ध्यान रख सकते हैं ना, कि जैसे ब्रश कर रहे हैं तो नल खोलकर कुल्ला करने लगते हैं, गलत बात है, पानी कितना वेस्ट होता है, ग्लास में पानी लीजिए और फिर कुल्ला कीजिए। तो छोटी छोटी बातों से हमारे छोटे छोटे बच्चे छोटा छोटा योगदान तो दे ही सकते हैं, देंगे ना। चलिए, अब जब आपने हमारी इतनी सारी बातें मानी है, तो आपके लिए एक प्यारा सा गीत एंजॉय कीजिएगा और जरा खड़े हो जाइए, क्योंकि जब ये गीत बजेगा ना, आपको डांस करने का मन करेगा, ठीक है ना। तो और एक एक गिलास पानी साथ में रख लीजिए, क्योंकि डांस करने के बाद प्यास भी लगेगी। तो बच्चों आइए, हम और आप मिलके सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो
1: पके पेड़ पर पका पपीता।

बच्चों कैसा लगा ये गाना आपको? टंग ट्विस्टर्स थे इसमें, चंदा चमकी चम चम चीखे चौकन्ना चौ। आप ये गेम भी खेल सकते हैं अपने घर में बड़ों के साथ बैठकर, कुछ ऐसे शब्द कुछ ऐसे सेंटेंस जिन्हें बोलने में थोड़ा सा हम हड़बड़ा जाते हैं। तो कुछ इस तरह का गेम भी आप घर में बैठ के खेलिए, क्योंकि गर्मी बहुत है, बाहर नहीं जाना है आपको, समझे बच्चों? और साथ साथ ऐसा नहीं है कि अगर आप घर में हैं तो घर में रहकर उधम मचा रहे हैं दिन भर। हम जानते हैं छुट्टियां हैं, थोड़ा सा आप रिलैक्स्ड हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप घर फैला रहे हैं, घर में चीज़ें इधर से उधर रख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको आपकी मम्मा के साथ उनको हेल्प करानी है थोड़ा सा घर एडजस्ट करने में। और अगर आप हेल्प नहीं करा रहे हैं सपोज, लेकिन घर फैलाइए तो मत, है ना? और मम्मी ने अगर टाइम से खाना बना दिया है तो टाइम से खाइए, टाइम से उठिए, टाइम से सो जाइए, और सब चीज़ समय से कीजिए, भले ही छुट्टियां चल रही हैं। और हम तो आपसे यही कहेंगे कि इन छुट्टियों का भरपूर आनंद लीजिए, कुछ क्रिएटिव सीखिए भी। आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट है उसको सीखिए। अब मान लिया आपको जूडो कराटे सीखने का मन है या फिर डांस सीखने का मन है, तो यही तो टाइम है आपकी छुट्टियों में। आप अपनी पसंद की चीज़ों को एंजॉय कीजिए, सीखिए। और एक चीज़ और सीखिए, हाथ से लिखना। हमारे बच्चों की आदत हमें मालूम है बहुत कम हो गई है हाथों से लिखने की, तो इस आदत को कायम रखिए, लिखिए। और इस आदत को आप बना के रखेंगे ना, तो आपका जो होमवर्क है वो भी आप फटाफट कर पाएंगे, देखिएगा। तो अब ये जो घड़ी है ना, ये कह रही है कि बच्चों से अब ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे अब हम, लेकिन बच्चों ये वादा रहा, अगले इतवार अगले संडे आपसे हम फिर मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ और एक प्यारे से गीत के साथ भी। तब तक के लिए बच्चों दीजिए आपके कार्यक्रम बाल सभा से अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।

कार्यक्रम बाल सभा FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। तो श्रोताओं आ जाइए रेडियो सेट के पास या बढ़ा लीजिए रेडियो की आवाज़। हो सकता है ये जो कार्यक्रम का पहला गीत हो आपकी पसंद का या फिर आप ही की पसंद।

श्रोताओं, कार्यक्रम के शुरुआत में आपने सुना फिल्म कारवां का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर और साथियों की, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का, संगीत राहुल देव बर्मन का। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं, ये हैं सूरतगढ़ राजस्थान से नरेश वर्मा, भूपेंद्र सुथार, रोहिता शर्मा, श्रीपाल शर्मा, गुलशन मेघानी, कुंदन कटारिया, विकास पारेख, कमल पारेख। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से खत लिख रहे हैं गौरव, नताशा, नीलिमा, प्रगति, सुरेश और उनकी पूरी मित्र मंडली। कमलागंज बाबू क्वार्टर के पीछे शिवपुरी से खत आया है कन्हैया कुशवाहा, भारती कुशवाहा, ध्रुव, सोनम, गगन, अशोक कुशवाहा, दुर्गेश कुशवाहा और सुरेंद्र सागर का। बरेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, राजेश ढोमने और अर्जुन गवानकर ने इसी गीत की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। हमें उम्मीद है आपने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। और अब कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म जाबा से, आइए पहले गीत सुन लेते हैं, फरमाइशी नाम इसकी।

जी हाँ, हमारे श्रोताओं का साथ हमें बहुत प्यारा है और हमेशा ही रहेगा। और ये जो आपने गीत सुना, ये था फिल्म जाबाज से सपना मुखर्जी और किशोर कुमार की आवाज़, इंदिवर की रचना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं गणेश कॉलोनी शिवपुरी से कालीचरण ओझा, उषा शुभम, कुमकुम शिवानी, हरिओम गुड्डी, रितेक रितु, हर्षित दिनेश और बबीता ओझा। सूरतगढ़ थर्मल राजस्थान से सौरवी भव्यतम, स्मिति जोशी। कोटा राजस्थान से हरिओम शर्मा, कविता शर्मा और प्राहिता शर्मा। न्यू ब्लॉक शिवपुरी से खत लिख रहे हैं सौरभ गौड़, आकांक्षा गौड़, इशिता कृष्णा गौड़। ये खत आया है अंबिकापुर रायगढ़ से और हमारे श्रोता हैं चरणजीत कौर और रैना गुप्ता। आप सबने अपने पसंद का ये गीत सुन लिया होगा और अगला फरमाइशी गीत है फिल्म एक दूजे के लिए से लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं चिरमिरी कोरासिया कॉलोनी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, बिलासपुर बस्ती बारादवार से नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे, बिलासपुर केरा रोड मसदा से पूनी राम कश्यप, खगेश्वर कश्यप, अंबिकापुर महामाया रोड से अब्दुल वाहिद खान, सलमा बेगम खान। सतनवाड़ा से खत आया है दीपक बाथम का और ये खत आया है कहाँ से आया है, ये आया है नई दिल्ली से। लिखने वाली हैं प्रियंका शर्मा और गणेश शर्मा। इसी गीत के लिए महादेव घाट अम्बलेश्वर से डोबन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारिणी, सूरज सुजला ठाकुर, ज्योति और रियांश ठाकुर का भी खत आया है। तो आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म एक दूजे के लिए का ये गीत, जिसे जैसे कि हमने बताया है आवाज़ लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी से अपनी ही पसंद के कुछ फिल्मी नगमे, और अगला गीत हमने लिया है फिल्म ब्लैकमेल से। आवाज़ किशोर कुमार की है, राजेंद्र कृष्ण की रचना को कल्याण जी आनंद जी ने अपने संगीत से सजाया है। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं सूरतगढ़ राजस्थान से अनिल कौशिक, शोभा, पारितोष, आशुतोष, मनोज कुमार अलकापुरी ग्वालियर से खत लिख रहे हैं, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, मालती स्वाति चौधरी, प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण खर्चे का खत इसी गीत की फरमाइश के लिए आया है। नाहौर जिला हनुमानगढ़ से खत लिख रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, मधु और डॉक्टर प्रांजल। सारिनी जिला बैतूल से अमित, निहारिका, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारस मणिबाग, पंजाब राव नीलामकर और संदीप पाटिल का खत इसी गीत की फरमाइश के लिए हमारे पास आया है। आइए आप सब मिलकर हम सब सुनते हैं।

0: श्रोताओं, कहीं डूबने की जरूरत नहीं है। वैसे आप गीतों के सागर में जरूर डुबकी लगा रहे हैं, उसमें लगाते रहिए। और फिलहाल एक अंतराल, आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।
1: एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी? नहीं झुमके
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: और श्रोताओं, इस अंतराल के बाद हम उन श्रोताओं की पसंद पूरी करने वाले हैं जिन्होंने फिल्म गवाही का ये गीत सुनना चाहा है। आवाज इसमें पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की है। सरदार अंजुम की रचना है, उत्तम जगदीश का संगीत। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं ये आया है खत औरंगाबाद से, राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, मेहरनगर उमरखेड़ा महाराष्ट्र से, अभिजीत गवाणकर, राही सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, विश्वकर्मा नगर नागपुर से खत लिख रहे हैं शैलेश वैशाली, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन का खत भी इसी गीत के फरमाइश के लिए है। अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लूराम, पूनम रोहित, छोटू, डुंडुन और समस्त परिवार ने इस गीत की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। श्रोताओं, इस गीत में आवाज है पंकज उदास की, भारत के मशहूर गजल गायक। जन्म आज ही के दिन 1951 में हुआ और आम लोगों तक गज़ल को बड़े ही सरल तरीके से पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे उन्होंने गीत गज़लें फिल्मों के लिए भी गाई हैं। और सुनिए उन्हीं की आवाज़ में अनुराधा पौडवाल के साथ ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी शिवपुरी और सुन रहे हैं अपनी ही पसंद के कुछ फिल्मी नगमे, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। और अब सुनवा रहे हैं फिल्म कालिया का गीत, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत। पसंद करने वाले श्रोता है लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुनीता प्रधान, रोमा, मनोज, रोली, ओम, सन्नी, सोम। देहरादून उत्तराखंड से खत लिख रहे हैं कुरवर प्रताप सिंह पुंडीर और उनके परिवार के सभी सदस्य। देरियोन सोना जिला रोहतास बिहार से खत आया है मोहित कुमार और श्वेता कुमारी का। दिल्ली शहर मोरीगढ़ से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार का खत हम तक पहुंचा है। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति और रियांश ठाकुर ने भी इसी गीत की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। तो आइए सुनते हैं अपनी पसंद का ये गीत, कार्यक्रम की शायद आखिरी प्रस्तुति।

तो दुनिया को दिखा देंगे। हमारे श्रोता हमारे साथ हैं हमें मालूम है, और हमारे कुछ श्रोताओं के खत और भी हैं इसी गीत की फरमाइश के लिए। तो ये हैं हमारे श्रोता पुणे से अर्चना सानेकर और उनका परिवार, इंदौर से वंदना तिवारी हमें खत लिख रही हैं इसी गीत की फरमाइश के लिए। और ये खत आया है काली माता मंदिर के पीछे करैरा से मनोज झा, मिथिलेश झा, नैना, मोनू और विकास झा का। साथ ही शिवाजी चौक राजेंद्र छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव ने भी इसी गीत की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। तो आप सब श्रोताओं का साथ हमें लगता है बहुत प्यारा। आइए।

आशा भोसले और किशोर कुमार के गाए फिल्म कालिया के इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने को है, अगला प्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा।

0: का भोपाल केंद्र है। जिले की चिट्ठी कुछ ही देर में।
1: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख है मयंक भार्गव का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बैतूल जिले में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जिले में जनगणना कार्य के लिए 21 चार्ज अधिकारी हैं, जिनके अंतर्गत 2,802 गणना ब्लॉक हैं। इन ब्लॉकों में से सोमवार की शाम तक 2,400 गणना ब्लॉकों में मकान गणना कार्य प्रारंभ कर डेटा पोर्टल पर सिंक किया जा चुका है। जिले के सभी 21 चार्जों में प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के द्वारा हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन HLO के अंतर्गत फील्ड कार्य उत्साह के साथ किया जा रहा है। चार्ज अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के द्वारा मकान सूचीकरण और ब्लॉक की सीमाओं की स्थल पर ही पहचान की जा रही है। इसके साथ ही प्रगणकों द्वारा भवनों की पहचान एवं नंबरिंग करते हुए ड्राफ्ट लेआउट मैप तैयार किया जा रहा है। खरीफ वर्ष 2026 में बैतूल जिले में इस बार कुल 4,56,050 हेक्टेयर के क्षेत्र में खरीफ की फसलों का रकबा तय किया गया है, जिसके विपरीत पिछले साल 4,55,510 हेक्टेयर में खरीफ की फसल बोई गई थी। इस साल कुछ फसलों का रकबा बढ़ा है, जबकि कुछ फसलों के रकबे में कमी आई है। बैतूल जिले के किसान कल्याण एवं कृषि विकास उप संचालक डॉक्टर आनंद बडोनिया ने बताया कि इस बार धान को 44,000 हेक्टेयर में बोया जाएगा। पिछले साल ये 43,872 हेक्टेयर में बोई गई थी। वहीं मक्का 3,01,500 हेक्टेयर में बोई जाएगी, जो कि पिछले साल 3,93,000 हेक्टेयर में बोई गई थी। वहीं कोदो कुटकी का रकबा इस बार 1,000 हेक्टेयर रहेगा। बीते साल इसका रकबा 639 हेक्टेयर था। उड़द, मूंग और अरहर का रकबा भी इस साल बढ़ेगा। बीते साल इन दलहनी फसलों का रकबा 6,971 हेक्टेयर था, जबकि इस बार 7,750 हेक्टेयर में ये फसलें बोई जाएंगी। वहीं तिल, रामतिल, मूंगफली, सोयाबीन और कपास की फसलों का रकबा भी बढ़ेगा। इस साल बैतूल जिले के 1,718 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ये वे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कक्षा 12वीं की परीक्षा में पहले ही प्रयास में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इन्हें प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत ये सौगात दी जाएगी। न्यूजीलैंड के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बीते दिनों बैतूल जिले के पश्चिम वन मंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत नांदा पहुंचकर नांदा हानि कलेक्शन एवं प्रसंस्करण व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। प्रतिनिधिमंडल ने शहद उत्पादन से जुड़े स्थानीय समूहों एवं कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी आजीविका गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बताया कि बीते वर्षों में हनी कलेक्शन सेंटर स्थापित होने के बाद शहद के मूल्य में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहले शहद का मूल्य लगभग 55 रुपए प्रति किलो था, जो वर्तमान में बढ़कर 280 रुपए किलो तक पहुंच गया है। बैतूल जिले में इस साल गेहूं खरीदी की रफ्तार पूरी तेजी पकड़ चुकी है। जिला आपूर्ति अधिकारी के टेकाम ने जानकारी दी है कि अभी तक जिले में 40,000 के लक्ष्य के विरुद्ध 44,000 से अधिक मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। अभी भी हजारों किसान अपने गेहूं की खरीदी का इंतजार कर रहे हैं। बीते साल की खरीदी का आंकड़ा देखकर जिले को इस साल गेहूं खरीदी के लिए कम लक्ष्य दिया गया था। वहीं इधर बंपर उत्पादन को देखते हुए जिले से इस लक्ष्य को बढ़ाकर 40,000 मीट्रिक टन किए जाने का अनुरोध किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। बैतूल जिले में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए क्षीरधारा ग्राम योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के पहले चरण में जिले के 37 गांवों का चयन किया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री तथा बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा है कि पेयजल समस्या से प्रभावित गांवों में बोरिंग मरम्मत और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं कर जल आपूर्ति को सुचारू बनाया जाए तथा जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों को बढ़ावा देकर जिले में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने जिले में स्वीकृत निर्माण कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने चांदोरा ताईखेड़ा मार्ग के कार्य के संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में बैतूल परतवाड़ा मार्ग को लगभग 1,200 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने की स्वीकृति पर केंद्रीय मंत्री का आभार इस मौके पर व्यक्त किया गया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल ने जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए महाराष्ट्र के सिरपुर मॉडल को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि बैतूल में इसके प्रयोग सफल रहे हैं। बैतूल जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
0: अभी आप सुन रहे थे बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख मयंक भार्गव का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।
2: FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आज सुगम संगीत में कलाकार हैं तानिया। आज आप तानिया के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत सुनेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत के

0: श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी से कार्यक्रम सुगम संगीत। आज की कलाकार है तान्या, और भी आपको गीत सुनवाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी? नहीं झुमके?
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए

0: Yeah, that's it.
1: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी का प्रसारण कार्यक्रम सुगम संगीत। एक अंतराल के बाद हम आपको फिर सुनवाएंगे सुगम संगीत के कुछ और गीत।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ, 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना, पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़ी गई,
3: जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
1: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज की कलाकार है

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आज की कलाकार थी तान्या। आज आपने इस कार्यक्रम में तान्या के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत सुने। एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत सुन रहे हमारे सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत। आज इस खास संगीत में सफर में आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त मोनिका। श्रोताओं, आज की हमारी ये जो महफिल है वो सिनेमा के उस स्वर्णिम दौर के नाम है जिसने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को एक नया एंग्री यंग मैन दिया, जिसने दोस्ती, वफादारी और जज्बात को पर्दे पर एक नए रंग में ढाला। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के महानतम निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा जी के बारे में। लेकिन इस आधे घंटे के सफर में माना हम उनके बारे में बहुत कुछ बातें नहीं कर पाएंगे, ना ही उनकी सभी फिल्मों के गीत हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन कुछ चुनिंदा गीत कुछ बातों के साथ हाजिर हैं हम आपके साथ। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं उनकी पहली निर्देशित फिल्म हसीना मान जाएगी से, और इस फिल्म में उन्होंने शशि कपूर साहब को लिया था जिन्होंने डबल रोल किया था इस फिल्म में, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद कामयाब रही। तो आइए उसी फिल्म का ये एक प्यारा सा गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, अख्तर रुमानी की रचना, कल्याण जी आनंद।

हसीना मान जाएगी। ये भी आपने इस फिल्म का गीत सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, चले थे साथ मिलकर। जी हाँ, प्रकाश मेहरा चले थे बिजनौर से आंखों में सपने लेकर मुंबई आए, और उन्होंने शुरुआत एक प्रोडक्शन कंट्रोलर के तौर पे की और अपने सपनों को बड़ा करते गए धीरे धीरे। और जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, हसीना मान जाएगी से उन्होंने अपने करियर की एक शुरुआत की और बेहद कामयाब रही उनकी फिल्म। उसके बाद मेला और समाधि उन्होंने दो बेहतरीन और फिल्में दी। फिर बारी आई जंजीर की, जहाँ अमिताभ बच्चन को एक नए रूप में उन्होंने पर्दे पर उतारा, और इस रूप को देखकर उनके क्या कहना चाहिए कि सिनेमा हॉल एकदम फुल, तालियों और सीटियों की गूंज से इतिहास रच दिया गया। आइए सुनते हैं उसी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गुलशन बावरा की रचना है, कल्याण जी आनंद जी का।

और श्रोताओं, अमिताभ बच्चन इस फिल्म के बाद रातों रात सुपरस्टार बन गए और दुनिया को मिला उनका एंग्री यंग मैन। इस फिल्म में सिर्फ अमिताभ ही नहीं बल्कि प्रांड साहब का, शेर खान का किरदार और उनकी दोस्ती भी अमर सी हो गई। और इस फिल्म के बाद, यानी जंजीर की इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद, प्रकाश बेहरा और अमिताभ बच्चन की एक ऐसी जोड़ी बनी जिसने बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्मों की झड़ी लगा दी। आइए उन्हीं एक क्रम में आपको मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत सुनवाते हैं। आवाज़ हेमलता की, अनजान की गीत को कल्याण जी आनंद जी ने अपने संगीत से

मुकद्दर का सिकंदर उस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। प्रकाश बेहरा की खासियत ये थी कि वो अपनी फिल्मों में एक्शन और ड्रामा के साथ साथ संगीत को भी बहुत खूबसूरती से पिरोते थे। वो अक्सर कहते थे कि गाना फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाता है और उसे रुकना नहीं चाहिए। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए उनकी एक फिल्म आई लावारिस, और इस फिल्म की कहानी भी ऐसे इंसान की जिसने समाज में कहना चाहिए अपनों ने नहीं अपनाया, लेकिन गाना इसका एक बहुत सुपर हिट हुआ था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और इतना लोकप्रिय हुआ कि बच्चे बूढ़े सबकी जुबा पर चढ़ गया। लेकिन ये गाना हम आपको बाद में सुनवाएंगे, फिलहाल आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नमक हलाल का ये गीत। नमक हलाल एक ऐसी फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन का वो आइकॉनिक डायलॉग आपको याद होगा ना, आई कैन टॉक इंग्लिश वॉक इंग्लिश लाइक दैट, कुछ एक ऐसा डायलॉग है। अर्जुन सिंह के किरदार में अमिताभ बच्चन की कॉमिक टाइमिंग और शशि कपूर साहब के साथ उनकी केमिस्ट्री ने स्क्रीन पर जादू कर दिया। इस फिल्म का संगीत बप्पी लहड़ी साहब ने दिया था और इस फिल्म में 8 मिनट का एक लंबा गाना था, पग घुंघरू बाद मीरा नाची थी, रिकॉर्ड हुआ तो लोगों ने सोचा कि इतना लंबा गाना कैसे चलेगा, लेकिन इत्तेफाक देखिए यही गाना सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। आइए हम सुनते हैं, ये नहीं दूसरा गाना सुनवाएंगे आपको, आशा भोसले की आवाज़ में अनजान की रचना, और संगीत तो आपको मालूम है बप्पी लहड़ी साहब का।

0: श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी से कार्यक्रम फिल्म संगीत, और आज निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा की फिल्मों से कुछ गीत आपको सुनवा रहे हैं। एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद फिर एक और गीत।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: इस अंतराल से पहले आपने फिल्म नमक हलाल का गीत सुना, और नमक हलाल की बम्पर सफलता के बाद प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने एक और यादगार फिल्म दी, शराबी। जी हाँ, बहुत ही कल्ट फिल्म, और इसमें बप्पी लहरी को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। किशोर दा की आवाज़ इस फिल्म में, अगर आप उनका गाना सुनेंगे, मंजिले अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, ऐसा दर्द और रोमानियत का एक बेजोड़ मिश्रण आपको सुनाई देगा। फिलहाल आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, अनजान की रचना, बप्पी लहरी का संगीत। आइए सुनते।

तो श्रोताओं, ये था एक छोटा सा नजराना हिंदी सिनेमा के उस सिकंदर के नाम जिसने हमें जीना, लड़ना, मुस्कुराना एक साथ सिखाया अपनी फिल्मों से। उम्मीद है प्रकाश मेहरा जी की फिल्मों का ये सफ़र आपके दिल को छू गया होगा। आज की इस महफिल को हम यहीं थामते हैं, लेकिन यादों का ये कारवा यूं ही चलता रहेगा। सुनते रहिए आकाशवाणी।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को है अगला प्रसारण भोपाल केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: श्रोताओं नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारा ये कार्यक्रम आपकी फरमाइश से जुड़ा है और आप अपनी फरमाइश हमें बताते हैं टेलीफोन नंबर 2660902 पर। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755।
2: हेलो आकाशवाणी मध्य प्रदेश
1: जी, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
2: जी मैडम, मैं मुन्ना सोनी गुरु नानक स्कूल के पास दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम।
1: जी सोनी जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बढ़िया हूँ मैडम, आप कैसी हैं?
1: बस हम भी बहुत अच्छे हैं। तो क्या हो रहा था इस समय?
2: बस गर्मी बहुत ज्यादा है मैडम, बैठे हैं छाया में घर में।
1: ये तो बिल्कुल सही बात है, गर्मी सिर्फ बहुत ज्यादा नहीं है बल्कि अब इस गर्मी के थोड़े थोड़े नुकसान होना भी शुरू हो रहे हैं।
2: जी मैडम,
1: है ना? तो इसलिए
2: घर में बैठकर
1: जी
2: पंखे में नींबू पुदीना का शरबत पीकर गर्मी का आनंद ले रहे हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, बताइएगा।
2: अच्छा, आज अभी हाल ही में आकाशवाणी के
1: जी
2: गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर
1: जी
2: आकाशवाणी परिवार के लिए बहुत बहुत बधाई।
1: 8 जून 2026 को ये समय पूर्ण होगा, 90 वर्ष का उत्सव भी लगातार आकाशवाणी में अलग अलग ढंग से चल रहा है। कहीं वॉकेथॉन हो रहा है, कहीं संगीत के कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं कुछ पुराने लोगों से रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इन कार्यक्रमों को सुनते रहें।
2: मैडम, जब टेलीविजन
1: जी
2: मोबाइल जैसी सुविधाएं लोगों से दूर थी
1: जी,
2: तब रेडियो एक माध्यम था लोगों के बीच में।
1: बिल्कुल सही बात है,
2: दुनिया के समाचार पहुंचाना
1: जी,
2: बच्चों की कहानियां, लोक संगीत गाना सुनाना, इसी से संबंधित जानकारी हम सभी के लिए रेडियो ने कुछ न कुछ दिया है।
1: बिल्कुल,
2: धन्यवाद आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी भी धन्यवाद देता है अपने श्रोताओं को, आभार व्यक्त करता है सभी सुनने वालों का कि आप लगातार अपने पूरे विश्वास के साथ हमसे जुड़े रहे, यानी आकाशवाणी से जुड़े रहे और आकाशवाणी आप तक सूचनाएं, मनोरंजन और समाचार पहुंचाती रहे। बताइए आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
2: फिल्म का नाम है मैडम जिस देश में गंगा बहती है, और गाने के बोल हैं हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने।
1: क्या बात है,
2: देख लो क्या सर कर दिया आज की सामने।

0: हर सुबह आपकी मुस्कुराती रहे, हर शाम आपकी गुनगुनाती रहे, और आप जिस चीज से भी मिले कुछ इस तरह से मिले कि हर मिलने वाले को आपकी याद आती रहे।
1: क्या बात है, इतनी खूबसूरत बात, इतनी अच्छी दुआ देने वाला कौन कॉलर हमसे जुड़ा है हम जानना चाहेंगे।
0: मैं पालदा नाका इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी बोल रहा हूँ मैडम।
1: जी मंसूरी साहब कैसे हैं?
0: बहुत अच्छा मैडम, और इत्तेफाक की इतनी बात हो रही मैडम कि मैं 10-15 दिन बाद लगाता हूँ, और जब भी लगाता तो आपसे मुलाकात।
1: जी जी ये बात हम भी कहना चाह रहे थे लेकिन आपने पहले कह दी।

0: कहीं पे निकलता नहीं हूँ,
1: हाँ
0: और कभी निकलना होता भी है तो सिर पे
1: जी
0: दुपट्ट, ये सिर पे अपने टोपी रखता हूँ या रुमाल रखता हूँ, और घर में ही अधिकतर रहता हूँ। और जब जैसे ड्यूटी पे भी जाते हैं तो वहां पर भी हम लोग बाहर दिन में नहीं निकलते हैं, घर पे वहाँ मतलब गोडाउन के अंदर ही रहते हैं,
1: जी
0: और घर में जो मतलब कि अपना जो तरल पदार्थ रहता है पानी की मात्रा है, इसमें गर्मी में कम से कम 1 लीटर ज्यादा बढ़ा देता हूँ। जैसे आम दिनों में पीता हूँ ना तो उसे गर्मी में 1 लीटर और ज्यादा कर देता हूँ मैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और इसका नापतौल यदि ना भी रखा जाए तो भी जितनी बार प्यास लगे उतनी बार पानी पीजिए, और ऐसा लगे कि पानी पिए हुए थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है तो प्यास ना भी लगे तो भी जरूर पीजिए।
0: जी जी पीता रहता मैडम, मेरी
1: बिल्कुल
0: मेरी सिस्टर मेरे को बोलती है देखो प्यास नहीं लगती, फिर भी पीता तो पानी। मैंने स्वस्थ रहना है और डिहाइड्रेशन अगर नहीं होना है शरीर में तो इसको
1: जी
0: पानी अपने को पीना ही पड़ेगा, जरूरी
1: बिल्कुल
0: नहीं कि प्यास लगे तब भी।
1: जी। साथ में एक बात का ध्यान हम उम्मीद करते हैं कि सभी रखते होंगे, थोड़ी सी साफ सफाई का भी ध्यान बहुत जरूरी होता है
0: हाँ
1: क्योंकि
0: साफ
1: इस समय
0: सफाई का बिल्कुल ध्यान
1: पसीना
0: रखता
1: बहुत
0: हूँ,
1: आता
0: हम
1: है
0: हमेशा बॉइल वाटर पीते हैं हम लोग।
1: जी। सिर्फ पानी की ही साफ सफाई की बात नहीं है मंसूरी साहब,
0: जी याद
1: पसीना
0: करती
1: जैसे
0: हूँ।
1: बहुत आता है वही हाथ हमारे आंखों में लग गए, वही हाथ मुंह में लग गए, तो इससे कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और साफ सफाई का ध्यान रखें, तरल पदार्थ और पानी लेते रहें, और
0: जी साफ
1: साथ ही
0: सफाई का तो
1: बताएं कि
0: बिल्कुल ध्यान
1: कौन सा
0: रखते
1: गीत आप सुनना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में।
0: फिल्म है घर संसार,
1: और
0: जितेंद्र और श्रीदेवी की फिल्म है।
1: जी गीत के बोल
0: चोट लगी है कहाँ यहाँ बताना सकूँ मैं कहाँ।
1: जी।

0: हेलो
1: हेलो। हाँ नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
1: हाँ मैं राजेश अग्रवाल बोल रहा हूँ, यहाँ राजा राम नगर देवास से।
0: जी राजेश जी कैसे हैं?
1: बढ़िया है दीदी, कार्यक्रम
0: क्या चल रहा था इस
1: सुन रहा है।
0: समय?
1: हाँ
0: कार्यक्रम सुन रहे हैं?
1: रेडियो चल रहा है अभी।
0: जी, तो अभी सुबह से कौन कौन से कार्यक्रम सुने?
1: अभी तो जैसे सुबह था अपने नमस्कार भोपाल, और बाकी ये जो आपका आता है सुरमई सवेरा है, और कुछ इंदौर के भी सुनते हैं। जैसे 6 बजे से ही चालू रहता आपका, और फिर बाद में जैसे मैं दुकान आ जाता हूँ तो फिर यहाँ पर सुनता हूँ
0: जी बताइए,
1: आपका
0: कौन सा
1: दूसरा।
0: गीत आज के कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे?
1: आज मेरा गीत है दीदी, ये हम दोनों मिलके कागज पर दिल पे, ये मुकेश जी की आवाज में है ये।

0: हेलो मैम, नमस्कार।
1: जी, फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
0: जी मैम, सागर से बोल रहा है पंडित शिवनारायण तिवारी।
1: जी तिवारी जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, मौसम बहुत गर्म है।
1: जी, मौसम तो गर्मी का है तो गर्म तो होना ही है।
0: जी, ऊपर वैसी बरसात भी होगी अच्छी।
1: हाँ, उम्मीद की जा सकती है, हर बात को बिल्कुल सीधे सीधे कहा नहीं जा सकता है कि होगा
0: जी
1: ही।
0: ओ, एक नक्षत्र में अच्छा बारिश बता रहे हैं, एक में थोड़ा कम।
1: बताने और होने के बीच का जो फर्क है ना, उसी फर्क को इन दिनों हम सब महसूस कर रहे हैं कि अपन
0: गर्मी
1: कहते
0: की
1: जरूर हैं लेकिन वो काम करते नहीं हैं। जिस तरह से पर्यावरण बिगड़ रहा है, मौसम चक्र गड़बड़ाया हुआ है, उसी का
0: जी।
1: नतीजा है कि इतनी ज्यादा गर्मी हम लोग सब भोग रहे हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: ये है गाना है मेहंदी वाली रात आ गई, आदमी खिलौना है।

0: हेलो
1: जय माता दी।
0: जी, नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं?
1: मेरा नाम पूरा नरमा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंतमहल बुगला से बात कर रहा हूँ। मैडम
0: जी, कैसे हैं वर्मा जी?
1: बस मैडम बढ़िया हूँ, आप सुनाओ।
0: बस, हम तो आपकी फरमाइश सुनवाने के लिए बैठे हैं, तो बताइए कौन सी फरमाइश पूरी की जाए आपकी।
1: जी मैडम, वहाँ भोपाल में मौसम कैसा हो रहा है? मैडम गर्मी पड़ने लगी हुई है
0: गर्मी
1: वहाँ पे भी।
0: तो
1: यहाँ
0: बहुत तेज गर्मी है, तीखी गर्मी है, सुबह से ही गर्मी हो जाती है, सूरज निकला नहीं कि गर्मी की तीव्रता महसूस होती है। तो अभी पिछले कुछ एक दिनों से तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है
1: हाँ जी, हाँ जी, इधर भी ऐसा हो रहा है मैडम मौसम। और
0: जी।
1: बारिश तो आती नहीं, थोड़ी बारिश आ जाती है।

0: तो क्योंकि थोड़ी ठंड होता है, पर यह मौसम ऐसा हो गया कि बारिश तो आती ना, अंदर आ जाता है बहुत देर तो।
1: कुछ चीजें समय और मौसम के हिसाब से ही होती हैं, और वो किस रूप में होंगी ये हम बिल्कुल भी नहीं अंदाजा लगा सकते हैं।
0: हाँ जी मैडम,
1: जी
0: तो फिल्म का नाम है मैडम कहीं प्यार ना हो जाए,
1: जी गीत के बोल।
0: और उसमें गाना का बोल है दिन ताना बन्नों की चूड़ी लाख की बन्नों का गजरा लाख, वैसा कुछ
1: ये
0: गाना है।
1: गीत तो आप एक बार और भी सुन चुके हैं
0: नहीं मैडम, मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ इस गाने को मैं।
1: ऐसा?
0: हाँ जी हाँ जी, पहली बार ही फरमाइश कर रहा हूँ मैडम ये गाना।
1: हमें तो कुछ ऐसा ख्याल आ रहा है कि ये गीत हम सुनवा चुके हैं। यही गुजारिश की थोड़ा सा अपने फरमाइश के गानों की लिस्ट को बना के रखें, और उसमें से जो गाना सुन लेते हैं उसको या तो काट दें या टिक लगा दें उस पे, तो गानों में भी रिपीटेशन नहीं होगा, आपकी फरमाइश भी पूरी होगी और कार्यक्रम की गुणवत्ता भी बनी रहेगी।
0: हाँ जी मैडम, नहीं वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, क्योंकि वो गाने नए नए गाने आए और न तो अच्छा लगता है, ऊपर कई
1: जी
0: कई चरणों पे ये होता है कि वही गाने बजाते रहते, पर आप जैसे आरजे और आरजे से आकाशवाणी भोपाल है, तो अलग अलग नए नए गाने या कोई भी
1: जी
0: गाना हो जो कम बजाओ, तो वो प्रयास करते हैं मैडम
1: जी
0: बजाने का।
1: बिल्कुल, इसीलिए हमारा कहना ये होता है कि एक अच्छी लंबी लिस्ट बना लें अपनी पसंद के गीतों की। और आप लोग तो बहुत नियमित तौर पर आकाशवाणी सुनते हैं, बहुत सारे स्टेशन सुनते हैं, तो सभी जगह से कई सारे गाने बजते हैं। उन गानों में से जो गाना पसंद आया उसे अपनी लिस्ट में जोड़ लीजिए, और जो गाना सुन चुके हैं उस गाने को क्रॉस कर दीजिए या रिकॉर्ड दीजिए या उसमें टिक लगा दीजिए ताकि वो दोबारा ना करें। तो उससे
0: हाँ जी
1: कार्यक्रम की विविधता और आपकी फरमाइश दोनों का बैलेंस बना रहेगा।
0: जी मैडम, बिल्कुल थैंक
1: बहुत धन्यवाद, हम उम्मीद करेंगे कि हमारी इस बात का आप ध्यान जरूर रखेंगे।
0: यू मैडम, धन्यवाद।

0: फोन करें गीत
1: हेलो
0: सुने कार्यक्रम।
1: मैम, नमस्ते। फोन
0: जी नमस्कार,
1: करें गीत सुने। जी,
0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम। कौन बात कर रहे हैं?
1: अम्बेडकर चौक टेगर वार्ड खुरई से राम सखी परमानंद।
0: जी परमानंद जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया है मैम।
0: क्या हो रहा है इस समय?
1: अरे अभी थोड़े काम से आए थे पोस्ट ऑफिस तक, तो थोड़ा टाइम था
0: अच्छा।
1: कराने।
0: हाँ।
1: चलो होने की बात ही कर लें।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी अभी शादी का सीजन चल रहा है, तो विवाह फिल्म का दो अनजाने अजनबी वो सुना दीजिए, कोई भी सुना दे विवाह फिल्म का आप।

0: हेलो
1: आलमी दीदी सादर नमस्कार।
0: जी, स्वागत है कार्यक्रम में। फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम है, आपका नाम जानना चाहेंगे।
1: जी हृदय से धन्यवाद करते हुए मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आलमी दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी भोपाल से।
0: ब्रज रेडियो श्रोता संघ के हमारे शारदा प्रसाद प्रजापति जी, ये बताएं कि मथुरा के क्या हाल हैं, कितनी गर्मी
1: जी
0: पड़
1: मथुरा
0: रही
1: में
0: है।
1: इस वक्त बहुत तेज गर्मी हो रही है, प्रचंड गर्मी के त्रस्त हैं।
0: जी
1: चिलचिलाती हुई धूप रहती है, गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, लू के
0: जी
1: प्रकोप में है। तापमान का सवाल है तो 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है और न्यूनतम मिनिमम जो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है रात में।
0: तो बताइए कि इस गर्मी के मौसम में कौन सा गीत आप तक पहुंचाया जाए कि कुछ सुकून मिले मन को।
1: दिल्ली आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, यशोदास साहब ने गीत को गाया है, हमने दुनिया से अलग गांव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा
0: क्या
1: है।
0: बात है, बहुत खूबसूरत गीत है, पहुंच रहा है आप।
1: जी हृदय धन्यवाद।

0: फोन कर रही हैं गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी नमस्कार मैम,
0: जी नमस्ते, कौन बात कर रही हैं?
1: मैं अमृता बोल रही हूँ रीवा से। ठीक
0: कैसी हैं अमृता जी आप?
1: हूँ मैम, बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: बस हम भी बढ़िया हैं। क्या हो रहा था इस समय?
1: इसलिए मैम आज वट सावित्री पूजा थी।
0: तो हो गई पूजन?
1: जी जी
0: व्रत रहेगा आज या पूजा के बाद भोजन हो जाता है?
1: नहीं मैम, मैं हमारे यहाँ अमावस्या का व्रत नहीं करते,
0: अच्छा,
1: लेकिन जब तक पूजा नहीं होती तब तक पानी भी नहीं, मतलब जल कुछ भी नहीं
0: नहीं
1: लेते
0: लेते
1: हैं।
0: हैं बिल्कुल। और इस पूजा में क्या कुछ खास बनता है आपकी तरफ?
1: जी वो गुड़ का वो बनती है पूड़ी वगैरह,
0: अच्छा
1: बट की जो जैसे फल रहते हैं
0: हाँ,
1: उस टाइप के गोल गोल बनाने
0: छोटे
1: पड़ते
0: छोटे
1: हैं
0: क्या कहते हैं
1: गुड़,
0: आप लोग उसको?
1: उसको बरगद टाइप के
0: बरगदा,
1: गोल।
0: वही नाम जानना चाह रहे थे क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से नाम थोड़े बदल जाते हैं, तो
1: जी
0: इसलिए
1: जी
0: हमने पूछा कि वहाँ क्या बनता है और क्या कहलाता है, ये जानना चाह रहे थे। कौन सा गीत आज आपको सुनवाया जाए?
1: मैम गंगा गंगा जमुना सरस्वती का ही गाना,
0: कौन सा गीत?
1: मूवी का नाम है,
0: हाँ
1: गाने के बोल हैं,
0: जी,
1: पति परमेश्वर के सिवा मुझको न परमेश्वर बर
0: लगता
1: चाहिए।
0: है व्रत का थोड़ा असर हो रहा है आप पे। अब भोजन कीजिए, आराम कीजिए, स्वस्थ बनी रहिए और कार्यक्रम का आनंद लीजिए।

0: इस गीत के साथ ही फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किया था अमिता त्रिवेदी ने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के लिए नए आयाम तलाशना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए अनुमति देने और दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाद आज पूजा अर्चना की गई, जिसमें कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी शामिल हुए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल जबलपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि देश ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म और परफॉर्म की ओर तेजी से बढ़ रहा है और मशीन लर्निंग तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग बन चुके हैं। रतलाम के पास आज तड़के तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आग लगने की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। CBI ने मामले की जांच करते हुए देश में 6 स्थानों पर छापे मारे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने इस वर्ष 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद ने बुखारेस्ट में आयोजित सुपर बेट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2026 के दूसरे दौर में उज्बेक खिलाड़ी जवाखिर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स के फाइनल में आज बैंकॉक में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में पत्रों के माध्यम से भेजी पसंद हम शामिल कर रहे हैं। पहली पसंद शामिल कर रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश की। तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, लीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परू, मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर की। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरसद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना, मुबारक, परवेज, रोजमीन, तैमूर और समस्त तड़वी परिवार। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया की। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री की। सनम रे फिल्म का टाइटल ट्रैक पसंद किया है मिथुन अरिजीत सिंह और अनिरुद्ध भोला ने इसे गाया है। गीत और संगीत मिथुन का।

अगले गीत की ख्वाहिश फिल्म सुल्तान से है। राहत फतेह अली खान ने इसे गाया है, इरशाद कामिल का लिखा है, विशाल शेखर ने धुन बनाई है। ख्वाहिश भेजी है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत राज।

मधु राजावत, राजश्री रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, ऋचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ, राजावत और उनके परिवार के सदस्य। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार ने, ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबे राही महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से अपनी पसंद भेजते हैं।

मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बेरड़ी से अनुरोध है हुकुम करमरकर का, सुनीता करमरकर, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर का, जय गजानन रेडियो श्रोता संघ कापसी अकोला महाराष्ट्र से संतोष राव बाकड़े, ज्योतिबाई बाकड़े, पवन कुमार बाकड़े, कमलाबाई और बाकड़े परिवार के समस्त सदस्य, शिवसेना वसाहत अकोला महाराष्ट्र से कैलाश राव बाकड़े, वंदनाताई बाकड़े और बाकड़े परिवार के सदस्य, सिंगिस किंग फिल्म का गीत सुनना पसंद किया है, प्रीतम ने इसकी धुन बनाई, मयूर पुरी ने गीत लिखा, श्रेया घोषाल और राहत फतेह अली खान ने गाया है।

अगला फरमाइशी नगमा फिल्म टशन से है। उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर ने इसे गाया है। कौसर मुनीर ने लिखा, विशाल शेखर ने धुन बनाई। फरमाइश करने वालों के नाम बताएंगे इस गीत के बाद।

फिल्म टशन के इस गीत को सुनना पसंद किया था। छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो ने, ग्राम महसवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्नील और अजय खिरोड़कर ने, छत्तीसगढ़ बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा का फिर श्रीमती स्वाति बेबी स्वाति माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, माही, पूजा, शरद और पूरा माखीजा परिवार, कृष्णानगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर महाराष्ट्र से नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई डोंगर दिवे, रीमाताई डोंगर दिवे, दीक्षाताई डोंगर दिवे और राहुल डोंगर दिवे ने, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से ही अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश, श्रीमती वैशाली गवाणकर, श्वेता, सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि और परी की पसंद थी। फिल्म टशन के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: अब समय है एक अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए सुनिए धारावाहिक पंचतंत्र की चौथी कड़ी।

नमस्कार श्रोतागण, आशा करती हूँ हमारे साथ साथ आप भी इस महान ग्रंथ का रसास्वादन कर रहे हैं। पिछली कथा में आपने सुना दमनक ने कर्कट को विष्णु रूपी धृष्ट कौलिक की कहानी सुनाकर ये बताया कि अगर कोई योजना सुनियोजित ढंग से की जाए तो वो अवश्य सफल होती है। अब आगे

0: क्या अब भी तुम्हारे मन में कोई शंका है?
1: मित्र दमनक, तुम्हारा कहना ठीक है, फिर भी मैं आश्वस्त नहीं हूँ, क्योंकि संजीवक अत्यंत बुद्धिमान है तथा स्वभाव का क्रोधी भी हो गया है। मैं तुम्हारे प्रतिभा संपन्न होने में तनिक भी संदेह नहीं कर रहा हूँ, परंतु पिंगलक से संजीवक की मित्रता तोड़ने में तुम समर्थ हो सकोगे, इस पर मुझे संदेह है।
2: अरे करकट, अगर मैं असमर्थ हूँ तो भी मुझे समर्थ समझो।
1: क्यों भला?
2: बुजुर्ग कह गए हैं कि जहां पर पराक्रम काम ना सके वहां चतुराई से चाल चलनी चाहिए। अब देखो ना, जैसे काक ने उपाय के द्वारा सोने के एक हार से काले सर्प का विनाश किया था।
1: अच्छा।
2: सुनो, किसी स्थान पर एक विशाल वट वृक्ष था। उस पर काक दंपति निवास करते थे।
1: अच्छा।
2: उसी पेड़ की कोटर में एक काला विषधारी सांप रहता था। जब भी काक दंपति किसी शिशु को जन्म देते, वो सांप आकर उसे मार डालता। काक और काकी दोनों अत्यंत दुखी थे।
1: स्वाभाविक है।
2: एक बार उसने अपने मित्र श्रीगाल से कहा,
3: काक भाई, क्या हुआ? कुछ परेशान दिखाई देते हो, कुछ तो बताओ।
4: क्या कहूं, वो दुष्ट आत्मा काला सांप हर बार अपने कोटर से निकलकर हमारे शिशुओं को खा लेता है। उससे बचने का कोई उपाय बताओ जिससे हम चैन से रह सकें।
3: मैं समझता हूँ काक भाई, जिसकी भूमि नदी के किनारे हो, जिसकी स्त्री पर पुरुष गामिनी हो और जिसका सांप वाले घर में निवास हो, वो व्यक्ति सुखी कैसे रह सकता है? अतः उस पेड़ पर निवास करना प्राण संकट कारक ही है।
4: तो क्या हम अपना निवास बदल लें? परंतु वो सांप उधर भी पहुंच जाए तो हम उसे कैसे पराजित करें?
3: मित्र, इस विषय में आपको जरा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस लोभी सर्प को उपाय द्वारा पराजित करना पड़ेगा, क्योंकि अत्यधिक लोभ के कारण ही एक वक्त छोटी बड़ी मछलियों को खाने के बाद भी केकड़े के पकड़ने से मृत्यु को प्राप्त हुआ।
4: कैसे?
3: किसी वन में अनेक जलचरों द्वारा भरा हुआ एक सरोवर था। उसमें निवास करने वाला एक वक्त वृद्धावस्था के कारण मछलियों को मारने में असमर्थ हो चुका था। अतः भूख से अत्यंत व्याकुल होकर वो रो रहा था। उसे रोता देखकर अन्य जलचरों और एक केकड़े ने उसके पास जाकर सादर कहा,
5: वक्त मामा, क्या हुआ? आप इस प्रकार आंसू क्यों बहा रहे हैं? आपको क्या कष्ट है? दो दिन से देख रहा हूं मैं, आप केवल आंखों में आंसू भरकर दीर्घ निश्वास ले रहे हैं। मामा, भोजन भी नहीं किया आपने, क्या बात है?
6: बस आप ठीक अनुमान लगा रहे हैं। अरे मैं बड़ा दुखी हूँ, इस कारण मछलियों को खाने से वैराग्य ग्रहण करके मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। अपने प्राण छोड़ने का व्रत लिया है मैंने, इस कारण समीप आई हुई मछलियों को भी मैं नहीं खा रहा हूँ।
5: परंतु मामा, आपके वैराग्य ग्रहण करने का क्या कारण है?
6: वत्स, मैंने इसी सरोवर में जन्म लिया है, यहीं पर वृद्ध भी हुआ, परंतु मैंने सुना है कि बहुत शीघ्र ही यहाँ 12 वर्षों के लिए सूखा पड़ने वाला है।
5: अरे परंतु मामा, ये आपने किससे सुना?
6: देवज्ञों से ज्ञान हुआ, यदि शनि रोहिणी से शकट का भेदन करता है तो इंद्र 12 वर्षों तक पृथ्वी पर जल की वर्षा नहीं करता। इसी सरोवर में थोड़ा ही जल है, यदि अनावृष्टि हुई तो ये शीघ्र ही सूख जाएगा, और होने पर सभी जलचर जिनके साथ में खेला बड़ा हुआ वे सभी जल के अभाव में नष्ट हो जाएंगे। मैं उन सब का विनाश कैसे देख पाऊंगा, इसीलिए मैंने मरण व्रत लिया है।
5: मामा, क्या इन सब की रक्षा का कोई उपाय नहीं है?
6: उपाय तो एक है, परंतु पता नहीं सब सहमत होंगे या नहीं। इस समय सभी बड़े जल जीव छोटे जल जीवों को दूसरे जलाशयों में पहुंचा रहे, मगर जल हस्ती आदि बड़े जानवर तो स्वयं ही जा रहे, परंतु इस जलाशय के जलचर जैसे निश्चिंत होकर बैठे, इन सब का तो अवशेष भी नहीं बचेगा।
5: नहीं नहीं मामा, नहीं नहीं, हम सभी भयभीत हैं। आप जैसा उपाय बताएंगे हम सब वैसा ही करेंगे। हाँ,
6: अगर तुम सब यही चाहते हो तो सुनो, इस जलाशय से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत गहरा जलाशय, चारों ओर कमल से सुशोभित, 24 वर्षों की अनावृष्टि से भी वो नहीं सूखता। यदि कोई मेरी पीठ पर चढ़े तो मैं उसे वहां पहुंचा सकता हूं।
3: दुष्ट मन से वह वक एक एक करके जलचरों को पीठ पर चढ़ाकर जलाशय के उद्देश्य से उड़ता और थोड़ी दूर जाकर एक बड़े से पत्थर पर ले जाकर पटक देता। फिर अपनी इच्छा अनुसार भोजन करने के बाद पुनः उस जलाशय में आकर जलचरों को नाना प्रकार से झूठी कहानियां सुनाता और सबका मनोरंजन करता। इस प्रकार उस दुष्ट वक की जीविका आनंद पूर्वक चलती रही। एक दिन
5: मामा, आपकी बात सबसे पहले मुझसे हुई थी और मुझे छोड़कर आप दूसरों को पहले ले जा रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मामा, आज मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगा, आज आपको मेरी प्राण रक्षा करनी ही पड़ेगी।
6: ठीक ही तो है, मछलियों का मांस खाते खाते मैं ऊब चुका हूं, चलो आज इस केकड़े का मांस खाता हूं।
7: क्यों नहीं, बस क्यों नहीं, जैसा तुम चाहो, और चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ।
5: मामा, वो जलाशय कितनी दूर है? आप मेरे भार से थक गए होंगे। ये नीचे शिला पर हाड़ मांस के टुकड़े कैसे पड़े हैं? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? क्यों मामा, और कितनी दूर रह गया है?
6: अरे मूर्ख केकड़े, दूसरा जलाशय है ही कहाँ? अरे ये तो मेरी चाल है, मेरी जीविका का साधन। आज तेरी बारी है, अपने इष्ट देव को स्मरण कर ले, तुझे भी मैं इसी पत्थर पर पटक पटक कर मार डालूंगा।
5: दुष्ट, तूने उन निर्बल जलचरों के साथ जो अन्याय किया उसका फल तुझे भोगना ही होगा। ले दुष्ट, ले मर।
3: केकड़े ने अपने मुंह से उस वक के गले को इस प्रकार दबाया कि उसके प्राण निकल गए। फिर वो केकड़ा मृत वक की ग्रीवा को लेकर धीरे धीरे उस सरोवर के पास लौटा। इसलिए मैं कहता हूं, बहुत सी मछलियों को खाकर भी वह वक बुद्धिमान और सजग केकड़े के हाथों मारा गया। उस सांप को मारने का कोई उपाय सोचना होगा।
4: तो आप ही बताएं भद्र, वो दुष्ट कैसे मारा जा सकेगा?
3: आप किसी ऐसे नगर में चले जाएं जहां राजा निवास करता हो। वहां जाकर राजा, उसके मंत्री अथवा किसी भी धनी व्यक्ति को थोड़ा असावधान पाते ही उसके स्वर्ण हार को उठा लें और ले जाकर सांप की कोटर में डाल दें, जिससे हार लेते समय वो मारा जाए।
8: श्रीगाल की बात को सुनकर काक उसी समय लक्ष्य की ओर उड़ गया।
4: उस तालाब पर किसी रानी की सवारी विश्राम कर रही है। वाह, महारानी अपनी सखियों के संग जल से खेल रही हैं। आभूषण एवं वस्त्र किनारे रखे हैं। यही मौका है, मैं ये रत्नहार उठा लेता हूं। हाँ हाँ, पकड़ो मुझे। मैं इन्हें चकाते हुए उसी पेड़ तक ले जाता हूं। हाँ, अब मैं हार को सांप के कोटर में डाल देता हूं।
2: और फिर राज सैनिकों ने उस वृक्ष पर चढ़कर उस कोटर का निरीक्षण किया। अच्छा, तो वो काला सांप अपने फन को फैलाकर बैठा हुआ दिखाई पड़ा।
4: ओहो,
2: सैनिकों ने लाठी के प्रहार से उस सांप को मार डाला।
5: अरे वाह,
2: और रत्नहार लेकर चले गए। और उस दिन से वो काक दंपत्ति सुखपूर्वक रहने लगा।
1: सच है दमनक, बुद्धि द्वारा जो किया जा सकता है पराक्रम द्वारा नहीं किया जा सकता।
2: हाँ,
1: बुद्धिमानों के लिए कोई भी समस्या असाध्य नहीं होती। किसी घने जंगल में भासुर नाम का सिंह रहता था। वो अपने बल का प्रयोग सारे जंगली जानवरों पर करता था। वो जिसे चाहता मारकर खा जाता था।
2: अच्छा,
1: फिर भी उसे शांति नहीं मिलती थी। उसके भय से सभी त्रस्त थे। एक बार सभी जानवरों ने तय किया कि जाकर सिंह से निवेदन किया जाए। तो ये सोचकर सभी सिंह के पास पहुंचे। बूढ़ा रीछ बोला,
9: स्वामी, हम सब आपके पास एक निवेदन लेकर आए हैं, कृपया उसे स्वीकार करें।
10: आप आदेश करें रीछ दादा, मैं तो सदैव से ही जंगल की भलाई चाहता हूं।
9: जानता हूं बेटा, तुम ही तो हमारे रक्षक हो। प्रतिदिन अनेक वन्य पशुओं को मारने से क्या लाभ, क्योंकि आपका पेट तो केवल एक ही जीव से भर जाता है। अगर हम लोगों के साथ प्रतिज्ञा पूर्वक एक नियम तय कर लिया जाए कि यहां बैठे बैठे आपके पास हमारे बीच से आपके भोजन के लिए प्रतिदिन एक पशु जाति क्रम से आ जाया करेगा, इस प्रकार बिना किसी श्रम के आपका जीवन निर्वाह होता रहेगा और हमारा सामूहिक विनाश भी नहीं होगा। आप राजा के इस धर्म का पालन करें।
10: आप सबका कहना ठीक है, इससे मुझे तो आराम मिल ही जाएगा, परंतु यहाँ बैठे बैठे नित्य एक पशु नहीं आया तो मैं सबको मार के खा जाऊंगा।
9: आप चिंता ना करें महाराज, आपका भोजन प्रतिदिन समय पर आप तक पहुंच जाया करेगा।

0: अब तो सिंहराज के मजे ही मजे हो गए। बिना किसी श्रम के नित्य ही भोजन पहुंच जाता और उधर पशुओं ने भी चैन की सांस ली। वन्य पशु निर्भय होकर जंगल में विचरण करने लगे। नित्य एक पशु जाति क्रम से, चाहे वो वृद्ध हो, वैरागी हो, शोकग्रस्त हो, दोपहर के समय उस भासुर के भोजन के लिए उपस्थित हुआ करता था। एक बार एक खरगोश के जाने का अवसर आया। उसकी जाने की इच्छा नहीं थी, परंतु नियम के अनुसार उसे जाना ही था। वो धीरे धीरे चलने लगा।
1: हाय, मेरे सारे पूर्वजों को इस भासुर के पेट में जाना पड़ा। मेरे कितने साथी भी चले गए। पता नहीं कब तक इस सिंह को भोग लगाना पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये दुष्ट भासुर ही मर जाए? अरे, ये क्या है? ये तो कुआं है। इसकी तो मुंडेर भी नहीं है। देखूं तो। अरे बाप रे, ये तो बहुत गहरा है। अभी मैं ध्यान नहीं देता तो डूब जाता। उधर भासुर तो प्रतीक्षा में बैठा होगा। क्या करूं?
2: धोखा, मेरे साथ धोखा। दिन ढल गया, अभी तक मेरा भोजन

लगा दिया। फिर वो मूर्ख बहासुर कूप के अंदर झांक कर गर्जना करने लगा। गर्जना की उस कुएं में दुगनी प्रतिध्वनि हुई, साथ ही अपनी छाया को भी देखा। उसी प्रतिबिंब को शत्रु समझकर उस पर कूद पड़ा और अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। और फिर खरगोश के सकुशल लौटने पर सारे वन में उत्सव का माहौल हो गया। सभी सुखपूर्वक रहने लगे। आगे दमनक और करकट ने क्या किया ये सुनेंगे अगले सप्ताह, आज ही के दिन, आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर अपने विचार साझा करेंगे। श्रोता 29 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर नरेंद्र मोदी ऐप या माई गांव ओपन फोरम के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिन की स्वीडन यात्रा आज से शुरू हो रही है। दौरान वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाद आज पूजा अर्चना की गई, जिसमें कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी शामिल हुए। रतलाम के पास आज तड़के तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस बी के एक कोच में आग लगने की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है और प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। और IPL क्रिकेट में आज दोपहर 3:30 से धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और दिल्ली में शाम 7:30 से दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

महिला सभा सुन रही सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर। खाना खजाना में गर्मी स्पेशल बेल और फालसी का शरबत बनाना जानेंगे और साथ ही उनके फायदे, और सुनेंगे मधुर संगीत। बहनों, आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। विज्ञान ने मानव जीवन को अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं, जिनमें दूर संचार का विशेष स्थान है। दूर संचार का अर्थ है दूर बैठे लोगों तक सूचना, संदेश, चित्र और ध्वनि को पहुंचाने की व्यवस्था। मोबाइल, इंटरनेट, टेलीफोन, रेडियो इसके प्रमुख माध्यम हैं। प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को संचार तकनीकों के महत्व के प्रति जागरूक करना तथा डिजिटल दुनिया से जोड़ना है। यह दिन हमें बताता है कि संचार के आधुनिक साधनों ने दुनिया को कितना छोटा और जीवन को कितना सरल बना दिया है। पहले के समय में किसी व्यक्ति तक संदेश पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे। लोग पत्रों का सहारा लेते थे और उत्तर आने की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, लेकिन आज मोबाइल फोन इंटरनेट के माध्यम से कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में बात की जा सकती है। वीडियो कॉलिंग ने तो दूरियों को लगभग समाप्त कर दिया है। परिवार और मित्र एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहते हैं। दूर संचार क्षेत्र में बढ़ते कदमों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति ला दी है। आज विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा और शैक्षिक वीडियो विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट पहुंचने से शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है। सखियों, स्वास्थ्य सेवाओं में भी दूर संचार का बड़ा योगदान है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से मरीज घर बैठे डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं। आपातकालीन सेवाओं में तुरंत संपर्क होने से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकती है। व्यापार और बैंकिंग के क्षेत्र में भी दूर संचार ने जीवन को आसान बना दिया है। ऑनलाइन भुगतान, इंटरनेट बैंकिंग ने समय और मेहनत दोनों की बचत की है। आज लोग घर बैठे खरीदारी कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं और आवश्यक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि दूर संचार के बढ़ते उपयोग के साथ कुछ सावधानियां भी आवश्यक हैं। इंटरनेट का सही उपयोग करना, साइबर अपराधों से बचना और बच्चों को सीमित एवं सुरक्षित उपयोग के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है। बहनों, दूर संचार क्षेत्र में बढ़ते कदमों ने मानव जीवन को अत्यंत सरल, तेज और सुविधाजनक बना दिया है। हम तकनीक का उपयोग समाज और मानवता के विकास के लिए करें। सही दिशा में उपयोग किया गया संचार देश की प्रगति और लोगों के उज्जवल भविष्य का आधार बन सकता है। बहनों, अब अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपने स्वास्थ्य की। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने काम, जिम्मेदारियों और सुविधाओं के पीछे इतने व्यस्त हो गए हैं कि स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान देना भूलते जा रहे हैं। यही लापरवाही आगे चलकर अनेक बीमारियों का कारण बनती है। इन्हीं बीमारियों में एक गंभीर समस्या है रक्तचाप, अर्थात ब्लड प्रेशर। लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष 17 मई को उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण शुरुआत में स्पष्ट दिखाई नहीं देते। लगातार तनाव, अनियमित दिनचर्या, गलत खानपान, पर्याप्त नींद की कमी और शारीरिक गतिविधियों का अभाव इस बीमारी के मुख्य कारण हैं। यदि समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह हृदय रोग, किडनी की समस्या और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकता है। अभी गर्मी का मौसम है। गर्मी में तेज धूप, अत्यधिक तापमान और पानी की कमी के कारण शरीर जल्दी थक जाता है। ऐसे समय में रक्तचाप बढ़ने या घटने की समस्या भी सामने आती है। इसलिए इस मौसम में स्वयं का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। सखियों, स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में कुछ अच्छे बदलाव अपनाने चाहिए। प्रतिदिन थोड़ी देर योग और व्यायाम करना, समय पर भोजन करना, अधिक नमक और तले हुए भोजन से बचना तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है।
साथ ही मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए परिवार के साथ समय बिताना और पर्याप्त नींद लेना भी आवश्यक है। थोड़ा समय खुद को दीजिए, यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र है। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय अपने शरीर और मन के लिए निकालें तो अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। नियमित स्वास्थ्य जांच और रक्तचाप की समय समय पर जांच भी आवश्यक है। बहनों, स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी जीवन का सही आनंद ले पाएंगे।

सखियों, अब बात करते हैं उस खास विषय पर जो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से राष्ट्रहित में 7 महत्वपूर्ण अपीलें की हैं। यह अपील उन्होंने वैश्विक परिस्थितियों, बढ़ते तेल दाम, विदेशी मुद्रा बचाने और आत्मनिर्भर भारत को

और सहेजने की प्रेरणा देता है। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं होते, बल्कि वे हमारे अतीत की जीवंत कहानी और आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का अमूल्य खजाना है। भारत अपनी समृद्ध संस्कृति, विविध परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हमारे देश के संग्रहालयों में हजारों वर्षों पुरानी मूर्तियां, हस्तलिपियां, हथियार, सिक्के, चित्रकला, लोक कला और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी अनेक अनमोल वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं। बहनों, आज आधुनिकता और तकनीक के इस दौर में लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। नई पीढ़ी मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में व्यस्त है, जिसके कारण इतिहास और विरासत के प्रति रुचि कम होती दिखाई देती है। ऐसे समय में संग्रहालयों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। संग्रहालय बच्चों और युवाओं को अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और संघर्षों से परिचित कराते हैं। जब हम किसी ऐतिहासिक वस्तु को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, तो इतिहास केवल किताबों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवंत अनुभव बन जाता है। हमारी धरोहरें केवल पुरानी वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि वे हमारे पूर्वजों की सोच, कला, मेहनत और जीवन शैली का प्रतीक हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपनी सांस्कृतिक धरोहरों का सम्मान करे और उनके संरक्षण में योगदान दे।

सखियो, अब बात करते हैं गर्मी वाले मौसम की। इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है कि वह सहन नहीं हो पा रही। गर्मी का मौसम अपने साथ तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान लेकर आता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, वैसे वैसे शरीर पर उसका प्रभाव भी बढ़ने लगता है। अधिक गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी, थकान, चक्कर, सिर दर्द, कमजोरी और लू जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इस मौसम में विशेष सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। यदि हम कुछ सरल उपाय अपनाएं, तो गर्मी की लपट से आसानी से बच सकते हैं। गर्मी में शरीर से पसीने के रूप में पानी तेजी से निकलता है। इससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है, जिसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है। इससे बचने के लिए दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। साथ ही छाछ, लस्सी, नारियल पानी, नींबू पानी का भी पर्याप्त सेवन करना चाहिए। ये पेय शरीर को ठंडक देने के साथ ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक जब आप हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं, तब धूप सबसे अधिक तेज होती है। इस समय बाहर निकलने से बचना चाहिए, और बाहर जाना है तो चेहरे को सूती कपड़े से ढकें, सिर पर टोपी या गमछे का उपयोग करें, आंखों पर धूप का चश्मा लगाएं, धूप में अधिक देर तक ना रहें। सखियों, गर्मी में शरीर को हवा मिलती रहनी चाहिए, इसलिए ढीले, हल्के रंग के और सूती कपड़े पहनना सबसे अच्छा माना जाता है। इनसे पसीना जल्दी सूखता है, त्वचा को आराम मिलता है। गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी सोखते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। गर्मी में भोजन हल्का और पौष्टिक होना चाहिए। ज्यादा मसालेदार, तला भुना और भारी भोजन शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है। इस मौसम में आने वाले तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। छोटे बच्चे और बुजुर्ग गर्मी से जल्दी प्रभावित होते हैं। उन्हें धूप में अधिक देर तक ना रहने दें और समय समय पर पानी या तरल पदार्थ देती रहें। यदि किसी व्यक्ति को तेज सिरदर्द, चक्कर, उल्टी, तेज बुखार, अत्यधिक कमजोरी जैसे लक्षण दिखें, तो हो सकता है उसे लू लग गई हो। यदि ऐसा महसूस हो तो तुरंत ठंडी जगह पर ले जाकर उसको पानी पिलाएं और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बहनों, गर्मी का मौसम कठिन अवश्य होता है, लेकिन थोड़ी सावधानी और सही दिनचर्या अपनाकर इससे सुरक्षित रहा जा सकता है। बहनों, अब चलते हैं खाना खजाना की तरफ। आज हम बना रहे हैं गर्मियों का अमृत, बेल और फालसे का शरबत। तो पहले नोट कीजिए बेल का शरबत बनाने में लगने वाली सामग्री। हमें चाहिए एक पका हुआ बेल, 4-5 गिलास ठंडा पानी, स्वादानुसार चीनी, थोड़ा काला नमक और साथ ही चाहिए भुना जीरा पाउडर। सबसे पहले बेल को तोड़कर उसका गूदा निकाल लें। गूदे को पानी में डालकर हाथों से अच्छी तरह से मसल लें। अब इस मिश्रण को छलनी से छान लें ताकि रेशे और बीज अलग हो जाएं। अब इसमें चीनी मिला लें। स्वाद बढ़ाने के लिए काला नमक, भुना जीरा पाउडर डाल लें और ऊपर से थोड़े बर्फ के टुकड़े भी डाल दें। लीजिए, ठंडा ठंडा बेल का शरबत बनकर तैयार है। इस शरबत को आप बच्चों को और बुजुर्गों को, सभी को दे सकती हैं, और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। यह शरीर को ठंडक प्रदान करता है, कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं में राहत देता है, थकान और कमजोरी दूर कर शरीर को ताजगी प्रदान करता है। सखियों, ये तो हुआ बेल का शरबत। अब जानते हैं फालसे का शरबत। बहनों, फालसा छोटे आकार का बैंगनी रंग का फल होता है, जिसका स्वाद हल्का खट्टा मीठा होता है। इसका शरबत बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। फालसे का शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप फालसे, 3 से 4 गिलास ठंडा पानी, काला नमक और थोड़ी सी चीनी और कुछ पुदीने की पत्तियाँ। शरबत बनाने के लिए सबसे पहले आप फालसों को एक साफ पानी से धो लें, और अब अलग से पानी लेकर उसमें फालसों को डाल दें और हाथ से अच्छी तरह से उनको मसल लें, और अब इस मिश्रण को छन्नी से छान लें। अब इसमें चीनी, काला नमक और पुदीना मिला लें और बर्फ डालकर ठंडा ठंडा सर्व करें। फालसे का शरबत शरीर को तुरंत ठंडक देता है। यह विटामिन से भरपूर होता है। यह त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करता है। यह हमारे हृदय के लिए फायदेमंद होता है और साथ ही रक्त संचार को बेहतर बनाने में सहायक माना जाता है। सखियों,
इस गर्मी के मौसम में आप इन्हें जरूर बनाइए, खुद भी पीजिए और परिवार को भी पिलाइए। और देखिए सखियों, बातें करते करते समय निकल गया, पता ही नहीं चला। और अब अपनी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल को दे अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, वक्त है अंतराल का।
1: आपकी पहचान, आपके विचार, अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता, आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।

0: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे रामाधीन आर्या के गाए लोकगीत।

रामादिन आर्या के गाए इस गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 1:45 होने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे नंद कुमार जैन के गाए। नंद कुमार जैन, तापसी नागराज और श्रुति वर्मा के गाए गीत। पहले सुनते हैं नंद कुमार जैन का गाया।

0: श्रुति वर्मा के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: जन्मदिन हो, त्योहार हो या हो कोई शुभ अवसर, पहुँचाइए अपने शुभकामना संदेश आकाशवाणी भोपाल से जुड़कर। बुकिंग कराने के लिए संपर्क कीजिए इस नंबर पर 9425012367। आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुँचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दे नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
0: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाश

आकाशवाणी भोपाल पर। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, दो बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहला गीत सनी फिल्म से, आवाज आशा भोंसले की, आनंद बख्शी का गीत और आरडी वर्मन का संगीत।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन के गोथेनबर्ग की 2 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। श्री मोदी की यात्रा स्वीडन के प्रधानमंत्री महामहिम शिफ उल्फ क्रिस्टसन के निमंत्रण पर हो रही है। 2018 में श्री मोदी की स्वीडन यात्रा के बाद से दोनों देशों के संबंध केवल खरीदार विक्रेता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे साझा मूल्यों, एक दूसरे की खुशहाली, औद्योगिक समृद्धि और साझा विकास से भी जुड़े हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से दोनों पक्षों के लिए अभूतपूर्व बाजार उपलब्ध हुआ है। इससे भारत से कपड़ा, चमड़ा और इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में भारी वृद्धि को बल मिलने की संभावना है। स्वीडन भारत के शुक्र ऑर्बिटर मिशन में शामिल है और उन्नत वैज्ञानिक उपकरण प्रदान कर रहा है। प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला में आज सुबह नई व्यवस्था के तहत भोजशाला परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू की गई। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए सूर्योदय के साथ ही बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु और भोज उत्सव समिति के कार्यकर्ता हाथों में मां वाग देवी के चित्र लेकर भोजशाला पहुंचे। इससे पहले कल शाम केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और मांडू के संत महामंडलेश्वर निसर्गदास जी महाराज भोजशाला पहुंचे और पूजा अर्चना की। रतलाम में आज सुबह तिरुवनंतपुरम से हजरत निजामुद्दीन जा रही राजधानी एक्सप्रेस 1-2-4-3-1 में कोटा मंडल के लूनी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के बीच तड़के आग लग गई। इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। इस घटना के चलते कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य लगातार जारी है। जबलपुर जिले में अब तक 25,604 किसानों से करीब 17,24,000 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। उपार्जन के एवज में किसानों को 236,67,00,000 रुपए से अधिक का भुगतान भी किया गया है। इस बार जबलपुर जिले में 70 खरीदी केंद्रों के माध्यम से गेहूं उपार्जन किया जा रहा है। वहीं गेहूं उपार्जन कार्य में विदिशा जिला में 59,000 से अधिक किसानों से खरीदी हुई। इसके लिए जिले में कुल 174 उपार्जन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें विदिशा अनुविभाग में 51, ग्यारसपुर में 16, गंज बासौदा में 23, कुरवाई में 19, नटेरन में 31, सिरौंज में 20 तथा लटेरी में 14 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के भी अन्य जिलों में भी खरीदी का कार्य सुचारू रूप से जारी है। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है। आज मौसम विभाग ने कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इंदौर और उज्जैन संभाग सबसे ज्यादा गर्मी की चपेट में हैं। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: जनगणना का कार्य मध्य प्रदेश सहित आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं, परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। अब तक 25 राज्यों में से 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। ये पहल जनगणना अभियान के डिजिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम में जौनपुर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य होने के चलते इटारसी से गुजरने वाली 12 ट्रेनें डायवर्ट की गईं। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने बिना फिटनेस और परमिट के सड़कों पर कोई बस चलने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। झाबुआ जिले में कल से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत लाभार्थी संतृप्ति शिविर लगेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं

0: प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
2: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
1: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
3: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज

0: नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है।

0: की संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट कोविड 19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले दो दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बच्चों का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लेते। इसी प्रेरक विचार के साथ बाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम बाल सभा में। कार्यक्रम का ये अंक लेकर आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी मधु दीदी। बाल मित्रों, आज के आधुनिक युग में फोन, मोबाइल और इंटरनेट लोगों की आवश्यकता बन गए हैं। इन सबके बिना तो आज जीवन की कल्पना करना ही कठिन है। आज ये इंसान के व्यक्तिगत जीवन से लेकर व्यवसायिक जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। आज यानी 17 मई को हम सभी विश्व दूरसंचार दिवस मना रहे हैं। दूरसंचार की बाल साथियों सबसे बड़ी उपलब्धि थी टेलीफोन का आविष्कार होना, जिसके जरिए आप कहीं भी रहकर अपनों से बात कर सकते हैं। इसके साथ ही 60 के दशक में इंटरनेट की शुरुआत के साथ ही लोगों का जीवन और ज्यादा आसान हो गया। इसकी सबसे अधिक सफलता दिखाई दी कोरोना काल में, क्योंकि इसके माध्यम से ही लोगों ने अपने रोजगार को जारी रखा। लोगों ने रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त किए, चाहे वो शॉपिंग सेक्टर हो या फिर बिजनेस सेक्टर। बल्कि तो इंटरनेट सिर्फ सूचनाओं के लिहाज से ही नहीं, बल्कि सोशल नेटवर्किंग से लेकर स्टॉक एक्सचेंज, बैंकिंग, ई शॉपिंग आदि के लिए अब अहम बन चुका है। ईमेल चैटिंग, वीडियो और वॉइस चैटिंग आदि से हजारों किलोमीटर की दूरियां सिमट कर अब चंद सेकंड के फासले में बदल गई हैं। बाल साथियों, विश्व दूरसंचार दिवस मनाने की परंपरा 17 मई वर्ष 1865 में शुरू हुई थी, लेकिन आधुनिक समय में इसकी शुरुआत वर्ष 1969 में हुई। तभी से पूरे विश्व में इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2005 में यूनाइटेड नेशन महासभा में इसे सूचना दिवस के तौर पर घोषित किया गया था। बाल मित्रों, विश्व दूरसंचार दिवस को मनाने का खास उद्देश्य है दूरसंचार प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों को जागरूक करना, साथ ही सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सूचना और संचार दोनों को आसानी से सुलभ बनाना है। संचार की इस तकनीक से आज घर में बैठे लोग अपनों से जुड़े हैं, ये सर्वश्रेष्ठ बात है। बाल मित्रों, संचार के बदलते माध्यम में आज डिजिटल कम्युनिकेशन की बड़ी भूमिका रही है। स्कूली शिक्षा से लेकर दूर बैठे विदेशों में परिजन वर्क फ्रॉम होम सहित अन्य कार्य सिर्फ घर बैठकर कर रहे हैं। कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे की हर संभव मदद कर रहे हैं। लोगों का उपचार भी ऑनलाइन किया जा रहा है। बाल मित्रों, ये दूरसंचार की ही क्रांति है जिसके कारण भारत जैसे विकासशील देशों की गिनती अब विश्व के कुछ ऐसे देशों में होती है जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से रफ्तार पकड़ रही है। इस चर्चा के बाद बाल साथियों, अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में श्री 420 फिल्म का ये प्यारा सा गीत। हसरत जयपुरी के गीत को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

0: दाना।
1: बाल साथियों, अभी आपने सुना श्री 420 फिल्म का ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। हसरत जयपुरी के गीत को संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन ने। बाल मित्रों, सदियों से धरती पर सबसे मेहनती जीवों में से एक मधुमक्खियां लोगों, पौधों और पर्यावरण को लाभ पहुंचाती रही हैं। एक फूल से दूसरे फूल तक पराग ले जाकर मधुमक्खियां और अन्य परागणकर्ता न केवल प्रचुर मात्रा में फल, मेवे और बीज पैदा करते हैं, बल्कि अधिक विविधता और बेहतर गुणवत्ता भी प्रदान करते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान मिलता है। परागणकर्ताओं के महत्व, उनके सामने आने वाले खतरों और सतत विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। बाल मित्रों, इस दिवस को मनाने के लिए 20 मई का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जोंसा का जन्म वर्ष 1734 में हुआ था। जोंसा स्लोवेनिया मधुमक्खी पालकों के परिवार में से थे, जहां ये एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि है जिसकी परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। पहली बार ये दिवस 20 मई वर्ष 2018 को मनाया गया था। बाल मित्रों, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य मधुमक्खियों और अन्य परागणकों की सुरक्षा के लिए उपायों को मजबूत करना है, जो वैश्विक खाद्य आपूर्ति से संबंधित समस्याओं को हल करने और विकासशील देशों में भूख को खत्म करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। हम सभी परागणकों पर निर्भर हैं और इसीलिए उनकी गिरावट की निगरानी करना और जैव विविधता के नुकसान को रोकना महत्वपूर्ण है। बाल मित्रों, मधुमक्खी पालन दुनिया भर में लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बाल मित्रों, आज मधुमक्खियां परागणकर्ता और कई अन्य कीटों की संख्या में कमी आ रही है। ये दिन हम सभी के लिए एक अवसर प्रदान करता है, चाहे हम सरकारों, संगठनों या नागरिक समाज के लिए काम करते हों या चिंतित नागरिक हों। इस चर्चा के बाद बाल मित्रों, अब आपको सुनवाते हैं बाल मन से क्रम के अंतर्गत हमारे स्टूडियो में आए हुए नन्हे मेहमान से की गई बातचीत। उनसे बात कर रहे हैं राजेंद्र अहिरवार।
2: नमस्कार बाल मित्रों, बाल मन से क्रम में एक और नन्हे मेहमान हमारे बीच हैं। आइए इनसे रूबरू होते हैं। क्या नाम है आपका?
3: कृष्ण नामदेव।
2: कृष्ण, कहाँ से आए हैं आप?
3: ग्राम पोस्ट देरी, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से।
2: ग्राम पोस्ट देरी से आए हुए हैं कृष्ण। आज आकाशवाणी के स्टूडियो में आप आए हुए हो, कैसा लग रहा है आपको?
3: हमको तो अच्छा लग रहा है।
2: अच्छा लग रहा है। तो आज क्या कुछ सुनाने वाले हो?
3: आज हम देशभक्ति रचना सुनाएंगे।
2: देशभक्तिपूर्ण रचना, ठीक है, सुनाइए कृष्ण।
3: भेदभाव आपस के सब

0: गुण गाए के चलो करो संकल्प प्यारे, अब को अनपढ़ ना रह जावे। करो संकल्प प्यारे, अब को अनपढ़ ना रह जावे। अक्षर ज्ञान सिखा दो, अब को ऊठा ना लगावे। अक्षर ज्ञान सिखा दो, अब को ऊठा ना लगावे। असली मानव धर्म यही अपनाए के चलो, असली मानव धर्म यही अपनाए के चलो। अपने भीतर वाले खा मनाए के चलो, सुख लुटाए के चलो। राम गुण गा गाए के चलो, सुख लुटाए के चलो। राम गुण गाए के चलो।
1: बहुत अच्छा गीत आपने बुंदेली में सुनाया है कृष। किस क्लास में पढ़ते हो कृष?
0: मैं फोर्थ में पढ़ता हूँ,
1: फोर्थ में पढ़ता हूँ। आपके स्कूल का क्या नाम है?
0: शासकीय हाई स्कूल देरी।
1: हाई स्कूल देरी में पढ़ते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। कृष क्या बनना चाहते हो पढ़ लिख कर?
0: मैं पढ़ लिख कर IPS बनना चाहता हूँ।
1: IPS बनना चाहते हैं भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना? और खूब मन लगा कर पढ़ना होगा। तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं कृष?
0: मुझे मैथ अच्छी लगती है और इंग्लिश अच्छी लगती है।
1: मैथ्स और इंग्लिश। तो मैथ्स और इंग्लिश में क्या क्या पढ़ते हो आप, क्या आपको ज्यादा अच्छा लगता है?
0: मैथ में पढ़ते हैं सवाल लगाना, जो हमारी मैम हमारी बुक में से
1: जी जी
0: बताती हैं, और इंग्लिश में पोएम पढ़ना, लेसन पढ़ना, ये अच्छा लगता है।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है कृष। और क्या सुनाने वाले हैं कृष?
0: रामचरितमानस पर आधारित।
1: रामचरितमानस पर आधारित एक रचना है, चलिए सुनाइए।
0: हमें

0: रामायण।
1: बहुत अच्छी रचना आपने कृष्ण सुनाई है हमें, रोज सिखाती रामायण। रामायण पढ़ती हो कृष्ण आप?
0: हाँ पढ़ता हूँ।
1: रामायण पढ़ती हैं, कैसा लगता है आपको जब भगवान राम जी के विषय में आप पढ़ते हो, कैसा लगता है आपको?
0: मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि रामचंद्र भगवान ने पापियों को मारा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कैसा संदेश उन्होंने दिया कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए।
0: हाँ।
1: और सबसे बड़ा धर्म है मानवता, ये रामायण हमें सिखाती है। इसलिए हमें किसी तरह का भेदभाव ना करते हुए सभी के लिए समान रूप से काम करना चाहिए।
0: जी
1: बहुत अच्छा लगा कृष आप आज हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतना अच्छा बताया, आपने ड्रीम के बारे में हमें बताया, बहुत अच्छी रचनाएं आपने सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए कृष।
0: धन्यवाद।
2: बाल साथियों, अभी आपने सुना बाल मनसे क्रम के अंतर्गत हमारे स्टूडियो में आए हुए नन्हे मेहमान को, उनसे बात कर रहे थे राजेंद्र अहरवार। बाल साथियों, हम आगामी 21 मई को श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मनाएंगे। भारत के 7वें प्रधानमंत्री और सबसे कम उम्र में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल करने वाले श्री राजीव गांधी जी की आगामी 21 मई को है पुण्यतिथि। राजीव जी का जन्म बाल साथियों 20 अगस्त वर्ष 1944 को मुंबई में हुआ था। उनकी माता का नाम श्रीमती इंदिरा गांधी और पिता का नाम फिरोज गांधी था। वे मात्र 3 वर्ष के थे जब भारत स्वतंत्र हुआ। उनकी स्कूली शिक्षा देहरादून में हुई। उच्च शिक्षा हेतु वे विदेश गए और वहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। आपकी संगीत में बहुत रुचि थी और फोटोग्राफी एवं रेडियो सुनने का भी शौक था। हवाई उड़ान उनका सबसे बड़ा जुनून था। जल्दी ही वे घरेलू राष्ट्रीय जहाज कंपनी इंडियन एयरलाइंस के पायलट बन गए। बाल मित्रों, राजीव गांधी जी की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। वे अपनी माँ को सहयोग देने हेतु वर्ष 1982 में राजनीति में आए और लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। 31 अक्टूबर वर्ष 1984 में इंदिरा जी की हत्या किए जाने के बाद वे भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने। स्वभाव से गंभीर लेकिन आधुनिक सोच एवं निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाले श्री गांधी देश को दुनिया की उच्च तकनीकों से पूर्ण करना चाहते थे। वे बार बार कहते थे कि भारत की एकता को बनाए रखने के उद्देश्य के अलावा उनके अन्य प्रमुख उद्देश्यों में से एक है 21वीं सदी के भारत का निर्माण। 21वीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उन्होंने इस क्षेत्र में भारत की क्षमता विकसित करने में सक्रिय रूप से कार्य किया। आपको भारत में कंप्यूटर की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। आपने आर्थिक एवं वैज्ञानिक सहयोग का विस्तार किया और विज्ञान टेक्नोलॉजी से संबंधित उद्योगों की ओर ध्यान दिया। बाल मित्रों, 21 मई वर्ष 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनाव प्रचार के दौरान आत्मघाती हमलावरों ने राजीव गांधी जी की हत्या कर दी। मरणोपरांत वर्ष 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाल साथियों, श्री राजीव गांधी जी का व्यक्तित्व सज्जनता, मित्रता और प्रगतिशीलता का प्रतीक था। लगभग एक दशक के छोटे से राजनीतिक जीवन में राजीव जी एक अमिट छाप छोड़कर भारत से विदा हो गए। बाल मित्रों, हमारे पर्यावरण में अनेकों पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े आदि पाए जाते हैं जो सब मिलकर हमारे पर्यावरण को सुंदर बनाते हैं। इन जीव जंतुओं में कुछ न कुछ खास बात पाई जाती है। अगर आप इन रोचक तथ्यों और जानकारियों को जानेंगे तो यकीन भी नहीं करेंगे कि ऐसा भी होता है। तो चलिए, रोचक जानकारी में आज हम आपको कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में जानकारी देते हैं जिन्हें शायद ही आपने कभी सुना हो। बाल मित्रों, गिरगिट एक ही समय में अपनी दोनों आंखों को अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है। गिरगिट की जीभ उसकी कुल लंबाई से लगभग 2 गुनी लंबी होती है। बाल मित्रों, इतनी छोटी सी दिखने वाली चींटियां अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती हैं। घरेलू चींटियां 7 वर्ष तक और रानी चींटियां 15 वर्ष तक जीवित रह सकती हैं, जबकि चींटियां कभी सोती नहीं हैं। क्या आपको पता है बाल मित्रों कि पतंगे का खून सफेद रंग का होता है और इनका पेट भी नहीं होता है। टैपवॉर्म एक प्रकार के कीड़े होते हैं बाल साथियों, जिनकी लंबाई आधा इंच से लेकर लगभग 20 फुट तक भी हो सकती है। ड्रैगन फ्लाई जो एक प्रकार की बड़ी मक्खी होती है, उसका जीवन मात्र 20 घंटे का होता है। दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली माइडोस नामक मक्खी को दुनिया की सबसे बड़ी मक्खी माना गया है। बाल साथियों, क्या आपको पता है कि फ्लेमिंगो नाम का पक्षी केवल तभी खा सकता है जब उसका सिर उल्टा हो। बाल मित्रों, केवल चमगादड़ ही एक ऐसा ममल्स है जो उड़ सकता है। हम आपको बता दें बाल साथियों कि गिलहरियां लाल रंग नहीं देख सकती और एक भूखा चूहा अपनी पूंछ भी खा सकता है। वुडपीकर नाम का पक्षी, जिसे हम कठफोड़वा कहते हैं, एक सेकंड में 20 बार चोंच मार सकता है। बाल साथियों, हमिंग बर्ड अकेला ऐसा पक्षी है जो उल्टा उड़ सकता है। तितलियां वस्तुओं का स्वाद अपने पैरों से चखती हैं। बाल साथियों, एक मधुमक्खी 1 पाउंड शहद बनाने में लगभग 20 लाख फूलों का उपयोग करती है। मधुमक्खियों की 20,000 प्रजातियों में से केवल 4 प्रजातियां ही शहद बनाने का काम करती हैं। और आधा किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों द्वारा तय की गई दूरी धरती के लगभग 2 बार चक्कर लगाने जितनी होती है। और इनके लार्वे छत्ते के अंदर रहते हैं, जो कि 6 तरफ से मोम का बना होता है। शहद के छत्तों में एक रानी मक्खी ही अंडे देती है। ये तो थी रोचक जानकारी। और बाल साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और अब चलने का समय भी हो गया है, तो अनुमति दीजिए अपनी मधु दीदी को।

0: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:58 होने को हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।

पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री श्री उल्फ क्रिस्टन के साथ दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर सहयोग पर वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यांत्रिक मेधा और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। ये बात उन्होंने आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन कार्य में कही। रतलाम में आज सुबह तिरुवनंतपुरम से हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस 1-2-4-3-1 में कोटा मंडल के रूनी लिच्छा और विक्रमगढ़ आलूट स्टेशन के बीच तड़के आग लग गई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। जनगणना का कार्य मध्य प्रदेश सहित आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड में भी चल रहा है। आज विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। प्रदेश के धार जिले के ऐतिहासिक भोजशाला में आज सुबह नई व्यवस्था के तहत भोजशाला परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू की गई। मध्य प्रदेश में भीषण लू का कहर जारी है। राज्य के 15 शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। और आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर में धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की

हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5:33 पर, 6 बजे और रात 8:30। युववाणी कार्यक्रम 5:02 पर, यह कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति।

7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में आप सुनेंगे बुंदेली समाचार और चर्चा। साथ ही 7:30 बजे से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। रात 8 बजे सुनिएगा सुर्खियों में। 8:15 बजे कार्यक्रम डगर विकास की, विषय है पीएम योजना। नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 9:30 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। और रात 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में हम आपको सुनवाएंगे विवेक सोनकर की बांसुरी वादन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होगा। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 88.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजने को हैं। मीडियम वेव पर अब आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी नीदरलैंड यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है और दोनों देशों के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है। उन्होंने जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा, सतत विकास और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को रेखांकित किया है। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुभकामनाएं देते हुए नवाचार आधारित देश की समग्र विकास की यात्रा में दूरसंचार की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला में आज सुबह नई व्यवस्था के तहत भोजशाला परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू की गई। मध्य प्रदेश में भीषण लू का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तीव्र लू चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने दोपहर में जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। हजरत निजामुद्दीन तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस 1-2-4-3-1 का कल का जला हुआ कोच लूनी रीछा स्टेशन पर पहुंच गया। एफएसएल की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और जांच कर रही है। भोपाल में स्वच्छ सर्वेक्षण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगले 2 से 3 दिन में सर्वे टीम भोपाल पहुंच सकती है। कई जगहों पर पेंटिंग कराई गई है जिसमें स्वच्छता का संदेश लिखे हैं। और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवा

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस के बारे में। साथ ही हमारा दूसरा विषय है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। दोस्तों, क्रम आज की बात में हमारा एक और विषय है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 7 बातें, पेट्रोल और डीजल खासकर बचाने की बात। क्रम जीवनालोक में हम चर्चा करेंगे मोबाइल एडिक्शन से बचें विषय पर। साथ ही दोस्तों, आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस पर। दोस्तों, विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को संचार तकनीकों और सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व के प्रति जागरूक करना है। आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है, जिसमें दूर संचार ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध दिया है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर और उपग्रह संचार ने मानव जीवन को अत्यंत सरल और तेज बना दिया है। इसी महत्व को समझाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ के द्वारा की गई थी, जिसकी स्थापना 17 मई सन 1865 को हुई। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मान्यता दी। इसका मुख्य उद्देश्य सूचना और संचार तकनीकों का उपयोग बढ़ाना तथा डिजिटल असमानता को कम करना है। दोस्तों, दूर संचार का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया। पहले समय में संदेश भेजने के लिए पत्र, दूतों का सहारा लिया जाता था, जिसमें बहुत समय लगता था। लेकिन आज मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में संपर्क किया जा सकता है। वीडियो कॉल, ईमेल, सोशल मीडिया और ऑनलाइन शिक्षा जैसी सुविधाएं दूर संचार की ही देन है। दोस्तों, सूचना समाज का अर्थ है ऐसे समाज से जहां ज्ञान और सूचना का आदान प्रदान तकनीक के माध्यम से होता है। आज इंटरनेट ने शिक्षा, व्यापार, चिकित्सा, बैंकिंग, मनोरंजन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर दूर बैठे मरीजों का इलाज कर पा रहे हैं और व्यापारी ऑनलाइन व्यापार कर रहे हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है। साथियों, यदि इंटरनेट और दूर संचार सुविधाएं ना होती तो जीवन बहुत कठिन हो सकता है। हालांकि तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ कुछ समस्याएं भी सामने आई हैं, जैसे साइबर अपराध, फर्जी खबरें, डेटा चोरी और इंटरनेट की लत जैसी समस्याएं समाज को प्रभावित कर रही हैं। इसलिए तकनीक का उपयोग सोच समझकर और सुरक्षित तरीके से करना बेहद आवश्यक है। भारत में भी डिजिटल क्रांति तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से गांव-गांव तक इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं पहुंच पा रही हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। यह देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस आधुनिक युग में संचार और सूचना तकनीकी के महत्व को दर्शाता है। आइए साथियों, अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।
1: हेलो हेलो
2: हाय।

0: देखो ना कैसा मौसम है।
1: आ जाओ ना।
0: ना बाबा ना, यही तो मुश्किल है।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है हमारे आज की बात के अगले विषय विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर चर्चा करने का। दोस्तों विश्व उच्च रक्तचाप दिवस प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को उच्च रक्तचाप अर्थात हाई ब्लड प्रेशर के प्रति जागरूक करना है। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में तनाव, गलत खानपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण उच्च रक्तचाप एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। यह रोग धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। दोस्तों उच्च रक्तचाप वह स्थिति है जिसमें रक्त का दबाव सामान्य से अधिक हो जाता है। यह बीमारी हृदय, मस्तिष्क, आंखों पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो हृदयघात, स्ट्रोक, किडनी फेल जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों आज के समय में उच्च रक्तचाप के कई कारण हैं। अत्यधिक नमक का सेवन, तेलीय भोजन, धूम्रपान, शराब का सेवन, मानसिक तनाव इत्यादि। इसके अतिरिक्त आनुवांशिक कारणों से भी ये बीमारी हो सकती है। आधुनिक जीवन शैली में लोगों को शारीरिक रूप से कम सक्रिय बना दिया है, जिसके कारण युवाओं में भी ये समस्या तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों विश्व उच्च रक्तचाप दिवस लोगों को स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इस दिन विभिन्न अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। लोगों का निःशुल्क रक्तचाप परीक्षण किया जाता है और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाती है। उच्च रक्तचाप के बचाव के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण आदतों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले संतुलित और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। भोजन में हरी सब्जियां, फल, सलाद, कम नमक का उपयोग करना चाहिए। नियमित रूप से योग व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर स्वस्थ रहता है और तनाव कम होता है। धूम्रपान और शराब जैसी आदतों से दूर रहना चाहिए और साथ ही साथियों पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। साथ ही साथ मानसिक तनाव को कम करना भी अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हमें यह संदेश देता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि हम समय रहते अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं तो उच्च रक्तचाप जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। हमें स्वयं जागरूक होने के साथ साथ लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे और नियमित रूप से रक्तचाप की जाँच करवाए। आइए साथियों अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें कर

जुल्फे खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। साथियों अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 7 बातें पेट्रोल और डीजल खासकर बचाने की बात पर चर्चा करने का। दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा संकट और आत्मनिर्भर भारत को लेकर कई बड़ी बातें कही। उनमें 7 बातें प्रमुख रही। पहली, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने की अपील की। 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की। विदेश यात्रा टालने की अपील की। दोस्तों वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल मीटिंग पर जोर देने को कहा। खाद व केमिकल का उपयोग

कम करने को कहा। स्वदेशी और मेड इन इंडिया पर जोर दिया। साथियों, पेट्रोल डीजल की कम खपत से हमारा ही फायदा है। यदि हम वाहनों का उपयोग सीमा में करें तो पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का उपयोग करने की सलाह भी उन्होंने दी। इससे पेट्रोल डीजल हम काफी हद तक बचा सकते हैं। साथियों, इससे न सिर्फ हमारा बल्कि पर्यावरण का भी बहुत फायदा होगा, अर्थात प्रदूषण कम होगा। दोस्तों, साथ ही इसके पीछे का एक और कारण विदेशी मुद्रा का बचाव भी है। दोस्तों, यदि आप पैदल चलते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी यह लाभप्रद है। आइए साथियों, अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक और प्यारा सा ये गीत।

एक पल है मिलना एक पल बिछड़ना, दुनिया है दो दिन का मेला ये।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवन आलोक में हमारी आज के विषय मोबाइल एडिक्शन से बचे पर चर्चा करने का। साथियों आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। मोबाइल फोन आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। इसके माध्यम से हम दूर बैठे लोगों से तुरंत संपर्क कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, समाचार देख सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं। मोबाइल ने जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। मोबाइल का जरूरत से ज्यादा उपयोग मोबाइल एडिक्शन अर्थात मोबाइल की लत कहलाता है। यह समस्या आज बच्चों, युवाओं और बड़ों सभी में तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों मोबाइल एडिक्शन का अर्थ है मोबाइल के बिना बेचैनी महसूस करना और हर समय मोबाइल का उपयोग करते रहना। कई लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, रात को सोने तक इसका उपयोग करते रहते हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम, वीडियो और चैटिंग ने लोगों को मोबाइल का आदि बना दिया है। धीरे धीरे यह आदत व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक जीवन पर बुरा प्रभाव डालने लगी है। दोस्तों मोबाइल की लत का सबसे बड़ा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। लंबे समय तक मोबाइल देखने से आंखों में दर्द, सिर दर्द, नींद की समस्या होने लगती है। लगातार मोबाइल चलाने से गर्दन और पीठ में दर्द भी होने लगता है। साथियों देर रात तक मोबाइल का उपयोग करने से नींद भी पूरी नहीं हो पाती, जिससे शरीर कमजोर होने लगता है। इसके अलावा अत्यधिक मोबाइल का उपयोग करने से मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता की कमी भी उत्पन्न होती है। साथियों मोबाइल एडिक्शन का प्रभाव विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी पड़ता है। कई छात्र पढ़ाई छोड़कर घंटों तक मोबाइल गेम खेलते हैं या फिर सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। इससे उनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है और परीक्षा परिणाम प्रभावी होते हैं। साथियों मोबाइल की लत से बचने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण उपाय अपनाने चाहिए। सबसे पहले हमें मोबाइल का उपयोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए करना चाहिए। समय की सीमा निर्धारित करनी चाहिए और अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया और गेम से दूर रहना चाहिए। बच्चों और युवाओं को विशेष रूप से जागरूक करने की आवश्यकता है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के मोबाइल उपयोग करते समय उन पर ध्यान दें और उन्हें अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करें। दोस्तों मोबाइल एक उपयोगी साधन है, लेकिन इसका सही और सीमित उपयोग ही लाभप्रद है। हमें तकनीक का गुलाम बनने की बजाय उसकी समझदारी से उपयोग करना चाहिए। स्वस्थ जीवन और अच्छे संबंध, उज्जवल भविष्य के लिए मोबाइल एडिक्शन से बचना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान था आकाशवाणी शिवपुरी का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: कम समय में
2: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
3: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
4: आगे सैलरी? नहीं झुमके?
5: ना, पहले बचत।
4: पहले झुमके?
5: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
4: लेकिन झुमकों का क्या?
5: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
6: आरबीआई कहता है,
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
8: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
9: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
10: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
11: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
12: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
11: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
12: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
11: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
12: 8700001-4242।
13: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
14: डीडी डायरेक्ट,
13: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
14: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
13: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
14: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
13: आज ही करें कनेक्ट
14: दूरदर्शन की डीटीएस।
0: आशिकी, सुमधुर आवाज अनुराधा पोडवाल की। गीत लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म दिल से, स्वर है अनुराधा पोडवाल और सुरेश वाटकर की, शब्द रचना समीर की और इसे संगीतमय बनाया है आनंद मिलिंद ने।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म बाहर आने तक से। स्वर है अनुराधा पोडवाल, पंकज उदास और साथियों के। ये गीत लिखा है इब्राहिम अश्क ने और इसे संगीतमय बनाया है राजेश रोशन ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म लेकिन से, आवाज है सुरेश वाटकर की। गुलजार के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।
1: एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी, आकाशवाणी शिवपुरी से।
6: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
7: डीडी डायरेक्ट
6: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की

अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास।

0: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री श्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर सहयोग पर वार्ता करेंगे। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि ये दिवस स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने, पौष्टिक आहार, योग और अनुशासन से तनाव मुक्त बने रहने के लिए हमें जागरूक करता है। रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला में आज सुबह नई व्यवस्था के तहत भोजशाला परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू की गई। भोपाल में स्वच्छ सर्वेक्षण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगले 2 से 3 दिन में सर्वे टीम भोपाल पहुंच सकती है। कई जगहों पर पेंटिंग कराई गई है जिसमें स्वच्छता का संदेश लिखा है। मध्य प्रदेश में भीषण लू का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तीव्र लू चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने दोपहर में जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में लेकर हम आए हैं एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीत। श्रोताओं, पहला गीत हमने लिया है फिल्म पैडमैन से। स्वर है अरिजीत सिंह के, शब्द रचना कौसर मुनीर की और संगीत है अमित त्रिवेदी का।

कभी खुशी कभी गम। आई श्रोताओं, अब हम आपको सुनाते हैं इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ में। ये गीत लिखा है अनिल पांडे ने और इसे संगीतमय बनाया है संदेश शांडिल्य ने।

लीजिए अब सुनिए। ग्लेन जोन की आवाज में फिल्म वो लम्हे का गीत। सईद कादरी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रिता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। नेपाल के कोशी प्रांत के सोलुखुम्बु जिले में जन्मे कामी रिता ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दिल्ली में 12 से 15 अगस्त तक भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कल भारतीय व्यापार महोत्सव की वेबसाइट का शुभारंभ करेंगे। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील में कृषि वर्ष 2026 के तहत किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ रवाना किया गया। राजगढ़ के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में तकनीकी शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा संचालित इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम की परीक्षा 10वीं के आधार पर प्रवेश के लिए प्रथम चरण के ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु पंजीयन प्रारंभ हो गए हैं। खंडवा में जनजातीय वर्ग के लिए संचालित शासकीय योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार एवं लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान कल से शुरू होगा। सीहोर शहर की जीवनदायिनी सीवन नदी को मूल स्वरूप में लाने के लिए नागरिकों ने नदी बचाओ अभियान शुरू किया है। जल गंगा संवर्धन अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत आज बैतूल में बाजार की जीवनदायिनी सापना नदी के भवानी घाट पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचे, वे व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। यांत्रिक मेधा और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। रतलाम में हुए राजधानी एक्सप्रेस हादसे में रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी, कई जिलों में पारा 44 के पार। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।

जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन के काजे साधना की राम राम। भैया देखो, अपन आगे बात करें तो अपन देख रहे हैं कि जाटेम अपने खेत जो हैं खाली पड़े हैं, तो ऐसे समय में भैया अपन को अपने खेतन की गहरी जुताई करना चाहिए। गहरी जुताई के भैया बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे कि भैया जब अपन गहरी जुताई करते हैं तो अपने माटी के अंदर जो छिपे कीट हैं, जो अंदर घुस गए हैं, वे सब ऊपर आ जाते हैं। बिनके संग में बिनके अंडे, लार्वा, प्यूपा, ये सब भैया ऊपर आ जाते हैं, और जब तेज घाम पड़त है तो वे सारे नष्ट हो जाते हैं जो कि अपनी माटी के अंदर खेत में घुसे रहते हैं। तो गहरी जुताई से वे सब नष्ट हो जाते हैं। और भैया गहरी जुताई करवे से माटी में भैया पानी के अवशोषण की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो माटी भैया अपनी जब बारिश होएगी तो अच्छो पानी वो अवशोषित कर लेगी, अपने खेत की माटी ज़्यादा से ज़्यादा पानी सोख लेगी, तो वो अपने लाने बहुत अच्छी बात होएगी, जैसे अपने खेत को जलस्तर बढ़ जाएगा। और भैया गहरी जुताई के अनेकों लाभ होते हैं, तो अपन को गजा टाइम गहरी जुताई ज़रूर कर लेना चाहिए। और भैया गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ऐसे में भैया जब भी अपने खेत पर जाएँ कौनो काम करवे तो भैया ध्यान रखें कि पूरी आस्तीन के कपड़ा पहने और अपने सिर पर तौलिया या गमछा डालकर ही निकलें। और भैया जब लू ना चल रही हो संजा के टाइम, जब भी अपन खेत पर

अनावश्यक ही भैया घर से बाहर ना निकलें, घर में ही रहें। कैसे कि भैया गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लू चल रही है, ऐसे में दोपहरिया में निकल वो अपने स्वास्थ्य के लाने हानिकारक हुए को, जहाँ से भैया लू लगवे को डर रहे थे। और जा टाइम भैया अपन को कैरी को पनो बनाकर पीनो चाहिए, जहाँ से का होते हैं कि ये अपने स्वास्थ्य के लाने बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। और अगर भैया कोनों को लू लग जाए तो बाकी लाने सबसे अच्छा उपाय है कि जो कैरी होते हैं वह उबाल के भैया बाकुबाद से अच्छे से मालिश करें पैरन की और हाथन के तलवन की, और प्याज को रस वो भी अपने पैरन पे वासे अच्छे से मालिश करें, जैसे का होता है कि जो लू लगी है वहाँ में अपन को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और जाटे भैया मिर्च मसाले वालों खाना कम खाना चाहिए, अपन को ठंडे ठंडे पेय ज़्यादा पीना चाहिए। भैया जा टाइम तरबूज खुवा रहा है, तरबूज खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं और पेय पदार्थ ज़्यादा पिए, जहाँ से कहा हो कि अपने शरीर में पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। ऐसी गर्मी में अपने अंदर पानी की कमी नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा तेल मसालों नहीं खाने हैं भैया, तेल मसाले खावे से कहा होते हैं कि अपने स्वास्थ्य के लाने जो हानिकारक होते हैं। और भैया और अपन आगे बात करेंगे जल के बारे में, भैया अपने जीवन के लाने जल बहुत आवश्यक होता है। जल के बिना तो भैया अपन अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कहावत है भैया कि बिन पानी सब सून, पानी के बिना भैया कछु भी नहीं है। बिना खाना खाएं तो अपन कई समय तक रह सकते हैं, मगर पानी के बिना अपन ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। और भैया अपन देख रहे हैं कि जहाँ कहाँ पर पानी की ज़्यादा कमी होती है, जिन क्षेत्र में वे लोग पानी भरवे के लाने कितनी दूर दूर तक जावत है, वहाँ की महिलाएं भैया बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और दूर दूर तक पानी लेके आवत हैं। पीवे के लाने स्वच्छ पानी बिने आसानी से नहीं मिलत है, और जैसे भैया वे और अन्य काम नहीं कर पाते हैं, जैसे इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। इनको भैया समय पर पानी लावो ज़्यादा जरूरी होते हैं, पानी के लाने वे दूर दूर तक जाते हैं। जय के लाने भैया जो योजना शुरू करी गई है हर घर पानी, जय योजना से भैया हर घर में स्वच्छ और साफ पानी पहुँचाओ जाता है। पाइपलाइन के द्वारा भैया जो पाइप के माध्यम से हर घर में जो स्वच्छ पानी पहुँचाओ जाता है, जैसे भैया का होता है कि अपन को पानी भी स्वच्छ मिलत है, जैसे अपनी सेहत अच्छी रहत है। देखो भैया अगर अपन गंदो पानी पियेंगे तो वासे अपनी सेहत खराब होएगी, अपन बार बार बीमार पड़ेंगे। तो हमेशा पीवे के लाने स्वच्छ पानी को ही इस्तेमाल करें, और अपन ज़रूरत हो तो भैया पानी को उबाल कर पिए। उबाल कर पानी पीवे से पानी बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है और अपन बीमार नहीं होते हैं। तो जय के लाने भैया जो योजना के माध्यम से साफ और स्वच्छ पानी हर घर में पहुँचाओ जाते हैं, जैसे भैया जो महिलाएँ पूरे दिन पानी भरवे में लगी रहती थी, इनके पास अब बहुत समय पर्याप्त बचत है, जैसे वे अपनों आगे को अन्य कार्य भी कर सकते हैं, जैसे छोटे छोटे काम करके अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। घर में ही वे छोटे मोटे काम, बड़ी पापड़ जैसा अचार बनाकर अपनी स्थिति को अच्छा कर सकते हैं और वे अपने पैरन पर खड़ी हो सकते हैं। तो इन्हीं सब बातन को ध्यान में रखकर जो हर घर पानी योजना शुरू करी गई थी, जैसे भैया सभी लोगों को अच्छो स्वस्थ स्वच्छ पानी मिल सके, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वे अपने जीवन में खुश रह सके, तो जो योजना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अब अपन आगे बात करेंगे भैया अपने प्रधानमंत्री जी की सात बातन के ऊपर। प्रधानमंत्री जी ने भैया कछु सात बातें कही हैं जो कि भैया अपने राष्ट्र हित में हैं और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के काज बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। तो जो भैया अपने हित की बातें हैं, जैसे जहाँ पर भैया घर अपन घर से जब भी निकलें जब अपन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, घर पर रहकर ही अपनों काम करना चाहिए। और भैया कछु समय तक अपन को सोना नहीं खरीदने हैं, एक साल तक भैया अगर अपन सोना नहीं खरीदें तो वो बहुत अच्छा होगा। और ईंधन की बचत करें, पेट्रोल डीजल की खपत को भैया कम करवे के काजें, सार्वजनिक परिवहन को इस्तेमाल करें, अनावश्यक की भैया घर से बाहर ना घूमें, पेट्रोल डीजल की बचत कर वो बहुत ज़रूरी है, जब बहुत ज़रूरी हो तब ही अपन गाड़ी घोड़ा लेकर घर से बाहर जाएं, वरना फालतू में ही घूमकर अपने पेट्रोल डीजल को बर्बाद ना करें। तो इन सब बातन को ध्यान में रखने हैं।
और विशेष तौर पर भैया बिन्नजाबाद पर बहुत जोर दो है कि खाद्य तेल को उपयोग कम करें। खाद्य तेल को उपयोग भैया कम करें जहाँ आयात पर निर्भरता कम हो सके, और जो अपने स्वास्थ्य के लाने भी बहुत अच्छो है। कैसे कि अगर अपन ज़्यादा तेल वालों खाना खाते हैं तो वो अपने स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर डालते हैं, और ऐसी गर्मी में तो भैया अपन को कम तेल को खाना ही खाना चाहिए। तो सादा और अच्छा भोजन करें जैसे तेल की भैया कम होए और तेल की बचत हो सके, जा बात पे विशेष ध्यान रखोगा है। और भैया तेल की खपत कम होएगी और प्राकृतिक खेती को अपनाएं, रासायनिक खेती को उपयोग ना करें, रासायनिक खादन को उपयोग ना करें, प्राकृतिक तरह से अपन खेती करेंगे तो जो बहुत अच्छो हो। और स्वदेशी अपनाएं, विदेशी चीजन को भी की भैया अपन को इस्तेमाल नहीं करना है, मेड इन इंडिया वाली चीजन को ही अपन को इस्तेमाल करें, वही सामान को अपने दैनिक जीवन में प्राथमिकता दें। और अंत में भैया सातवीं बात जो है कि विदेश यात्रा ना करें, जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होए वही व्यक्ति भैया विदेश यात्रा करें, वरना फालतू में घूमने के लाने अपन को विदेश यात्रा नहीं करने हैं। तो इन सात बातन को अपन को ध्यान रखने हैं और अपने राष्ट्र को अपन को आत्मनिर्भर बनाने हैं। अब भैया अपन आगे तो और बताएंगे, पहले सुन लें अपन जो मदन मोहन ब्रजवासी को गाओ वो बढ़िया।

तो भैया अभी अपन ने सुनो मदन मोहन ब्रजवासी को गाओ हुआ जो बढ़िया से लोकगीत। उम्मीद है भैया आप लोगों को पसंद आओ हेगो। अब अपन भैया आगे बात करें अपने स्वास्थ्य के बारे में। भैया आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें अपनो ध्यान अच्छे से रखना चाहिए। हम ऐसी भैया जिंदगी आजकल जो जी रहे हैं भागदौड़ भरी, वहाँ में अपनो ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे में भैया अपना स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है। तो अपन को ऐसी बिजी लाइफ में ऐसे भैया अपन को अपने जीवन पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे भैया हमें अपनी व्यस्त जीवन में से अपने खान पान को विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें भैया हमेशा ज़्यादातर अपने घर में बनो भाव ताजो भोजन ही करना चाहिए। बाजार में भैया ठेलन पर अपन को नहीं खाना चाहिए, और भोजन अपनो सादा होना चाहिए, कम मिर्च मसाले वालों होना चाहिए, और तेल भैया अपने भोजन में कम से कम होना चाहिए। ज़्यादा मिर्च मसाले वालों और तेल वालों खाना जो है भैया अपने स्वास्थ्य पर बुरा असर डालत है। और भैया अगर हम अपने स्वस्थ रहेंगे तो ही अपनों काम अच्छे से कर सकेंगे। और स्वस्थ रहवे के लाने भैया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साफ सफाई, तो साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे घर में और भैया घर के आसपास बिल्कुल सफाई रहना चाहिए, और घर में भोजन सामग्री भी सब ढकी हुई रखी होना चाहिए। खुलो भाव भोजन भैया अपन को नहीं करना चाहिए। बामे का होते हैं भैया कि कोनो भी मक्खी मच्छर आकर बैठ सकत है, और मक्खी भैया बहुत ज़्यादा बीमारी फैलावे में माहिर होते हैं। वो कहीं भी गंदी जगह पर बैठकर फिर अपने भोजन पर बैठ जाएंगी, तो वो अपना भोजन भैया प्रदूषित हो जाएगा। तो अपन को ध्यान रखने हैं कि अपना भोजन बिल्कुल ढको व अच्छे से रखो होना चाहिए, वही भोजन अपन को करना चाहिए, और भोजन अपनो सादा ही होना चाहिए। इन बातन को अपन को ध्यान रखने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि साबुन से हाथ धोकर ही भोजन करें, और अपनी बहनें भैया हाथ धोकर

0: ही अच्छे से भोजन बनावें, जब ही अपना भोजन अच्छो रह सके। तो अपन को अपने शरीर पर भी ध्यान देनो है, और भैया स्वस्थ रहवे के लाने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि अपन को व्यायाम भी रोज करना चाहिए। व्यायाम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। अगर हमें स्वस्थ रहने हैं, अपने जीव शरीर में कोनो बीमारी ना लगे, तो बाकी लाने अपन को व्यायाम पर ध्यान देना है। रोज सुबह भैया अपन को व्यायाम करना चाहिए। अगर समय नहीं है तो कम समय के लाने व्यायाम करें, एक घंटा नहीं तो आधा घंटा करें, आधा घंटा भी नहीं है तो भैया 15 मिनट भी अपन कर सकते हैं। कहवे को मतलब ये है भैया कि कछु ना कछु थोड़ो बहुत व्यायाम अपने शरीर को अपन को देना चाहिए, जैसे अपने शरीर भैया फिट रह सके और तंदुरुस्त रह सके। व्यायाम से भैया शरीर में चुस्ती और फुर्ती दोनों आवत हैं। और भैया आजकल जो गलत खान पान चल रहा है, बाकी लाने अपन को सचेत रहने हैं। बाजार में भैया जो पैकिंग वाली चीज़ें आ रही हैं, पैकिंग फूड जो आ रहे हैं, बिन को इस्तेमाल अपन को कम करने चाहिए। कैसे कि भैया बिन में तरह तरह के केमिकल डरे होते हैं, अगर अपन उन चीज़ों को ज़्यादा खाएंगे तो अपन निश्चित तौर पर ही बीमार होंगे। तो ध्यान रखें भैया कि अपन को ऐसी चीज़ों को प्रयोग कम करने हैं, और प्लास्टिक जिन चीज़ में प्लास्टिक में भोजन रखो है वो भोजन अपन को नहीं करने हैं। खाने वाली चीज़ों में भैया प्लास्टिक की कोनो भी थैली में डिब्बे में अपना खाद्य पदार्थ नहीं रखो होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो भैया कैंसर को बहुत बड़ा कारण है। तो प्लास्टिक के सामान में कोनो भी खाद्य पदार्थ नहीं रखने हैं, जो बात को अपन को ध्यान रखना चाहिए। बस ऐसे ही भैया अपन को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने हैं। और भैया अब हम आप लोगों के लाने लाए हैं बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण भेंटवार्ता, जाको विषय है फसलों में मौसम पूर्वानुमान द्वारा कीट रोग नियंत्रण, और जहाँ में अपन को जानकारी दे रहे हैं श्री विजय प्रताप सिंह, और इनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। तो सुनते हैं भैया अपन जो बहुत ही महत्वपूर्ण भेंटवार्ता।
1: किसान श्रोताओं नमस्कार, हमारे इस कार्यक्रम में और चौपाल कार्यक्रम में आप कई इंटरव्यूज सुनते हैं, और इन इंटरव्यूज का उद्देश्य रहता है कि आप अपना जो किसानी का काम है यानी कि खेती का जो काम है उससे अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन ले सकें। और आप ही क्यों, हर इंसान की इच्छा रहती है कि वो जो भी बिजनेस कर रहा है उसमें अच्छी से अच्छी आमदनी कर ले। सरकार की भी ये मंशा है कि हमारा किसान की दुगनी इनकम होनी चाहिए, लेकिन उसको ये जरूरी है कि समय के अनुरूप वो अपनी फसल ले। वैज्ञानिक क्या बता रहे हैं कि इस समय क्या प्रभाव पड़ेगा, वैज्ञानिक नई नई तकनीकें ला रहे हैं, नई नई खोज कर रहे हैं, और इन सबको अगर हम अपने किसानी में या अपनी खेती में शामिल करते हैं तो नेचुरली हमें बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो फसलों में मौसम पूर्वानुमान द्वारा कीट रोग नियंत्रण, आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी श्री विजय प्रताप सिंह जी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार सर।
2: नमस्कार
1: विजय जी। ये जो मौसम चल रहा है कि मौसम में कई बार अटखेलियाँ देखने को मिलती हैं, हो सकता है कल ना हो सकता है कभी रही हो, और इस समय जायद का मौसम चल रहा है और कद्दू वर्गीय सब्जियाँ चल रही हैं, तो वर्तमान समय में अगर हम

0: जैसा कि अभी आपने देखा है जायद का सीजन चल रहा है और अभी प्याज की फसल कुछ लोग ले रहे हैं, कुछ लोग खेतों में लगी हुई है और कुछ लोग उसको निराई गुड़ाई द्वारा उखाड़ भी रहे हैं। तो अभी ये जो बारिश का जो अनुमान या पूरा अनुमान लगाया जा रहा है, ये क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है जो आगामी 5-7 दिन तक रहने की उम्मीद है या आगामी भी दिन रहेगा। इससे क्या है, अगर आप अपनी प्याज की फसल ले रहे हैं या जिन्होंने उसको उखाड़ लिया है तो उसको उखाड़ने के तुरंत बाद ही क्या है, थोड़ा छायादार में रखें, 5-7 दिन छायादार में सुखाएं और उसके बाद ही उसका भंडारण करें। इससे क्या है, वो ना तो सड़ेगी और ना गलेगी। जैसे भी बात करते हैं, मूंग लगी हुई है जायद में, मूंग का जो है काफी एरिया बढ़ गया है। मूंग में अगर आप स्टार्टिंग की बात करें, शुरुआती अवस्था की अगर बात करें, तो उसमें रस चूसक कीट बहुत आते हैं, मच्छर भी रहता है, एफिड जैसेड काफी कीट रहते हैं। तो इसके लिए आप क्या है, अगर फूल अवस्था आने से पहले अगर ये रोगों का प्रकोप आपके फसलों में है तो उसके लिए क्या है, आप क्लोरोप्लस साइफरमेथ्रिन का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपके रस चूसक जैसेड एसिड जितने भी कीट हैं, सामान्य मच्छर, काला मच्छर, हरा मच्छर, इनसे जो है आपको निदान मिल जाए। इसके अलावा क्या है, अगर पत्तियों में चितकबरा रंग दिखाई देता है तो उस पौधे को बहुत ही सावधानी पूर्वक हाथों में ग्लव्स पहन ले, नहीं हो तो आप जिस पॉलिथीन में सब्जी लाते हैं उसको हाथों में पहन के उस पौधे को उखाड़ लें। उखाड़ने के बाद क्या, एकत्रित करें और उसको जमीन में कहीं गाड़ दें, उसको फेंके ना और उसको कहीं जलाए ना। ये एक विषाणु रहित रोग रहता है जो एक दूसरे के टच में, हवा के टच से फैलता है, जिससे आपकी फसल जो है वो काफी हानि हो सके। दूसरी चीज क्या है, अगर मूंग की फसल में सफेद मंकी की समस्या आती है तो इसके लिए क्या, एसिटामाइप्रेट 20 SC या एमिडाक्लोपिड 17.8 या थायोमेटोक्सोन 25 WG, इन सभी दवाओं का 0.3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जो है आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे किसी प्रकार की अगर आपको कीट लगते हैं या जनित रोग लगते हैं तो उससे आपको निदान मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या है, अगर मूंग में रस चूसक कीटों की बात करें और अगर वो इन दवाइयों से या उस समय मौसम की स्थिति को देखते हुए, क्या है इस समय उमस का समय भी है, जैसे ही बरसात होती है तो उसके बाद मौसम खुलता है तो उमस पैदा हो जाती है, तो उस समय क्या है, रस चूसक कीटों की या जनित रोग की समस्या उत्पन्न ज्यादा हो जाती है, उसके लिए आप क्या है, थायोमेटोक्सोन 25 WG का स्प्रे कर सकते हैं। वैसे इसको जो है 0.3 पर लीटर ग्राम पानी में, या सीधा एक बात कहें किसानों के लिए 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में आप इसका जो है वो स्प्रे कर सकते हैं और अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: ये तो आपने कुछ फसलों की बात की, अब हम कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करें, क्योंकि वो भी किसान के लिए बहुत आमदनी का बहुत अच्छा स्रोत है और कहा भी जाता है कि सब्जियां भी हमें किसानों को उगानी चाहिए। और हमारा कई सारा किसान या बहुत सारे किसान अपने खेत में 100% तो नहीं पर 30-40% तक, या कई किसान 100% सिर्फ सब्जी पर ही निर्भर है।
0: देखिए जैसा कि अभी है, अभी कद्दू वर्गीय फसलें लगी हुई है। कद्दू वर्गीय फसलों में सबसे पहले तो ये है कि उसमें निराई गुड़ाई करें, खेत को बिल्कुल साफ रखें, मेड़ों को साफ रखें। उसके बाद भी जितनी भी कद्दू वर्गीय फसलें हैं उसमें एक लाल कीट आता है, लाल कीट का बहुत प्रकोप रहता है, ये फल में फ्रूट्स में मतलब छेद कर देता है। इसके लिए आप क्या है, मार्केट में डाइक्लोर वाश दवाई आती है जिसको 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर आप छिड़काव करेंगे तो आपकी फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी और आमदनी भी, इससे उपज अच्छी मिलेगी तो आमदनी भी अच्छी मिलेगी। दूसरी चीज अगर बात करें, कद्दू खरबूजा और बटी, इसमें अगर फटने की समस्या क्या है, उसमें बीच में क्रैक हो जाता है, मार्केट में उत्पादन नहीं मिलता है,
1: कीमत कम हो जाती है,
0: क्योंकि क्या है, किसान या जो भी कोई ग्राहक रहता है उसको देखता है अगर वो सही है तो लेता है। तो इसके लिए आप क्या करें, 6 ग्राम बोरेक्स प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर आप इससे स्प्रे कर दें अपनी कद्दू वर्गीय फसलों में, बटी में, खरबूजा में, तो उससे जो फटने की समस्या रहती है, क्रैकिंग की जो समस्या रहती है, वो उससे नहीं आए।
1: आप बटी की बात कह रहे हैं, शिवपुरी में रायचंद खेड़ी की बटी की मिठास अलग है और हमारा दूसरा किसान अन्य गांव में लगा रहा है, उसमें मिठास वनस्पत कम है, तो वो कुछ अच्छा प्रयोग करते हैं कि दूसरा किसान कुछ कम मेहनत करता है?
0: नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये कुछ चीजें क्लाइमेट और भूमि पे भी डिपेंड करती है, सॉइल पे भी डिपेंड करती है। प्रैक्टिस वही है, कल्टीवेशन वही है, लेकिन एक मौसम या जमीन का उसको वो कह लें, उस वजह से उसमें जो है ये मिठास या वो
1: मौसम का तो हम इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि रायचंद खेड़ी भी शिवपुरी में है और दूसरा कस्बा भी शिवपुरी में, पर मिट्टी का प्रभाव या उस जगह पर जो पानी है, उस जगह पर उसका जो पानी का सोर्स है, उसका कुछ प्रभाव पड़ता होगा तो उसके कारण मिठास कुछ ज्यादा आती है। तो आपने ये दो चीजों की बताई, लेकिन इसके अलावा इस समय टिंडा भी आ रहा है, भिंडी भी आ रही है, कद्दू तो है ही, लौकी है, शिमला मिर्च भी चल रही है।
0: जैसे कि अभी आप बात करें मूर्त है फसलों की, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, बैगन हो गया, यहाँ अपने फल की बात, पपीता भी हो गया, तो इसमें क्या है, जो पत्ती मरोड़क कीट लगता है या बोलने लीफ कर, लोग के लिए अपन रोकथाम के नियंत्रण के लिए थायमेथोक्सोन 25 WG या फिफ्रोनिल 5% SC या फिर इमिडाक्लोपिड 17.8 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इनका घोल बनाकर छिड़काव कर सकते। जैसा कि आपने बात करी हरी सब्जियां, हरी सब्जियों में अपने पास लौकी है, तोरई है, टमाटर है, भिंडी है, खीरा है, इस समय मिर्च भी है गर्मियों के समय। अगर इसमें आपको कोई कीट की समस्या आ रही है तो सबसे पहले मैं ये किसानों को सुझाव दूंगा कि इसमें नीम आधारित या नीम ऑयल का उपयोग करें, क्योंकि ये रेगुलर टूटने वाली सब्जियां हैं जिनको आदमी उपयोग कर रहा है। तो इसमें आप नीम का अगर उपयोग करेंगे, नीम ऑयल का 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से, तो आपके लिए और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि नीम जो है ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं रहता और कीट इसको, क्योंकि इसमें कड़वाहट रहती है, उस वजह से जो है इसमें ज़्यादा रस चूसते नहीं है, ना ही इसको नुकसान पहुंचाते।
1: नीम के बारे में तो वो लोकोक्ति जिंदगी से चली आ रही है, नीम लगी यदि घर के पास हर बीमारी का हो नाश। तो नीम का अगर हम कुछ सप्लीमेंट बनाते हैं और वो दवा के तौर पर हम फसल पर डालते हैं तो नेचुरली कीड़े को असर होगा लेकिन मनुष्य को तो असर नहीं होगा। तो आप कह रहे थे कि नीम का प्रयोग करना चाहिए, इसके अलावा और कोई चीज हो सकती है जिसका हम प्रयोग करें? और अगर हम इसे हम इस मोड में ले जाएं कि हम प्राकृतिक किसी चीज का इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल जैविक उत्पादन चल रहा है, प्राकृतिक उत्पादन की ओर सरकार भी प्रमोशन कर रहा है, जिला प्रशासन भी मेहनत कर रहा है कि प्राकृतिक सब्जियां मिले, तो प्राकृतिक किसी दवा

0: का, चाहे वो घंजीव अमृत हो या इस तरह के जो है, उनका भी उपयोग किया जा सकता है।
1: किसान क्या है, किसान को जागरूक बनाने के लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, लगभग किसान समझ नहीं रहा कि जैविक और प्राकृतिक खेती क्या है। लेकिन प्रकृति की अगर बात करें तो जो प्रकृति से हमें मिल रहा है, जो फल फूल पत्ती, उसी का उपयोग करें। जैसे अगर आप नीम की बात करें तो उसके लिए अपन क्या है, नीमास्त्र बना सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है, बस किसानों को क्या है, थोड़ा पहले समय जागरूक होना पड़ता है। क्या है, किसान को थोड़ा फसल खेत पे जाए, अपनी फसल देखे कीट रोग है कि नहीं है। लेकिन क्या है, किसान सिर्फ अपने उपयोग के लिए जाता है जब उसको फल तोड़ना होता है उसके। अगर आप किसान चाहे तो क्या है, नीमास्त्र का बहुत अच्छा उपयोग कर सकता है। अपने यहाँ नीम की पत्तियाँ बारहमासी उपलब्ध रहती हैं, नहीं गर्मियों के समय उसकी निवोली या उसके फूल उपलब्ध रहते हैं। अगर आप फूल और फल उसकी निवोली का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप नीमास्त्र के लिए क्या है, सिर्फ एक गौमूत्र और 5 से 7 किलो जो है उसमें नीम की पत्तियां, जिसको अच्छे से खलबत्ते से कूट लें, खलबत्ता नहीं है तो मिक्सी से उसको ग्राइंड कर लें। अगर मिक्सी से भी ग्राइंड नहीं कर रहे तो आप सीधे गौमूत्र में जो है उसको 5 से 10 केजी जो पत्तियां उसमें डाल दें, लगभग जो है 15 से 20 लीटर पानी या 15 से 20 लीटर गौमूत्र कह लें, और उसमें अच्छे से चूल्हे पे रख दें या गैस पे आप 3 से 4 उबाल आने दें। जब 3 से 4 उबाल उसमें आ जाएंगे और फिर उसको 24 घंटे के लिए ठंडा होने दें, उसके बाद आप उसका उपयोग करेंगे तो जितने भी प्रकार के हरे मच्छर, जैसेड, एफिड, सभी प्रकार के जो है उसमें इल्लियां पहले पैदा ही नहीं हो पाएंगी, तो वो किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। दूसरी बात, अगर आप बात करें तो अग्नियास्त्र की, अग्नियास्त्र का भी ऐसा उपयोग कर सकते हैं आप कि जैसे आपके लहसुन है, हरी मिर्ची है, और उसमें भी ऐसे ही प्रोसेस यही रहेगी कि आप उसको गौमूत्र में 15 से 20 लीटर लें और उसको उसमें डाल दें कूट के, और अपनी जो देसी पत्ती वाली तंबाकू, जिसको लोग गांव में उपयोग भी करते हैं, अगर वो पत्ती वाली तंबाकू आपको 250 से 300 ग्राम।
0: यहाँ पर हम एक चीज, मैं एक चीज अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगा, खाने के लिए हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो खाना गलत है, लेकिन उसको दवा के तौर पर एक रासायनिक दवा बनाने में जरूर शामिल किया जा सकती है। सर बात जारी रखें,
1: अगर आप जो है जो मार्केट में अवेलेबल रहती है पत्ती वाली तंबाकू, याद रखें डंठल वाली नहीं, जो पत्ती वाली तंबाकू आती है उसका अग्नियास्त्र में बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है, और वो बहुत ही कीटों को निष्क्रिय करने या उनको मारने के लिए बहुत उपयोगी है। इसको आप वही प्रोसेस सेम है कि आप 15 से 20 लीटर गौमूत्र ले लें, गौमूत्र नहीं है तो पानी ले लें, उसको बढ़िया आप 3-4 उबाल आने दें, उबाल आने के बाद आप 24 घंटे तक जो है उसको ठंडा होने दें। उसके बाद जो अपनी किसान भाई जो स्प्रे पंप है 15 लीटर या 16 लीटर उसमें 200 से 250 ml उसको डाल दें और उसका स्प्रे कर दें। एक किसानों से और अनुरोध करना चाहूंगा मैं सर कि किसान भाई क्या करते हैं, दवाइयों का उपयोग तो ज्यादा करते हैं लेकिन दवाइयों के साथ पानी का उपयोग नहीं करते। एक बीघा में लगभग हम लोग जो कहते हैं कि 5 से 6 पंप का उपयोग करना चाहिए और किसान दवाई का उपयोग पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। लेकिन किसान क्या है, यहाँ पे दवाई जो हमने 250 ml बताई वो दवाई वो 500 ml डाल देता है, लेकिन जहाँ पानी की बात करें या पंप की बात करें तो वो 2 से 3 पंप का ही स्प्रे करता है, 5 और 6 पंप का स्प्रे वो नहीं करता। तो अगर प्रकृति की बात करें तो ये सब चीजें अपने पास है, इनका अगर आप उपयोग कर लें तो मार्केट की रासायनिक इनकी दवाइयों के कीटनाशकों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपना स्वास्थ्य भी
0: पैसा भी बचेगा।
1: रासायनिक दवाएं महंगी भी आती हैं, पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, और क्या है किसान जागरूक भी होगा
0: जी।
1: क्या है मार्केट में जाता है वो चीजें लेता है तो उससे क्या, एक तो उसका समय, ऊपर पैसा। हम तो ये कह रहे हैं ये बिल्कुल नेचुरल है, घर की चीजें हैं, कहीं ना कहीं आपको मिर्ची भी आपकी घर की है, लहसुन भी आपका घर का है और नीम तो घर का है ही, सिर्फ क्या है आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है,
0: तो
1: उबालना है और उसको ठंडा होना है और पर्याप्त मात्रा 2 से 2.5 ml या सीधा सीधा एक अपना पानी का गिलास का उपयोग कर लें, एक पानी के गिलास को उसमें भरें और अपनी टंकी में डाल दें
0: और बाकी पानी मिला दें,
1: बाकी उसमें पानी मिला दें और उसमें
0: पानी गर्म होना चाहिए, ठंडा
1: नहीं, पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए नॉर्मल, जैसा अपन अन्य दवाइयों के लिए कीटनाशकों के लिए उपयोग करते
0: हैं, पीते हैं हम ये मान लें,
1: या अपन जैसे अपन खुद पानी का उपयोग करते हैं वही नॉर्मल पानी होना चाहिए,
0: गर्म करने की जरूरत,
1: कोई गर्म करने की जरूरत नहीं है, उसमें आप जो है उससे स्प्रे कर दें तो उससे किसी भी प्रकार का हरा मच्छर, काला मच्छर, इल्ली, एफिड, जैफिड कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये उसमें फसल में उत्पन्न नहीं होंगे। दूसरी बात करें, जैसे आप अभी कह रहे थे कि भिंडी, भिंडी में क्या है सफेद मक्खी की समस्या रहती है, दूसरी क्या है जैसेड, ये क्या है भिंडी में क्या है ये छेद कर देते हैं, इस कारण से क्या है इसमें एसएफएड 75% SC 1.5 से 2 ml या इसमें एमिडाक्रोपिड 17.8 SL 0.3% पानी की दर से जो है आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं और इस कीट से आप निदान पा सकते हैं।
0: विजय प्रताप जी, आप हमारे श्रोताओं के बीच में आए और आपने फसलों में मौसम का पूर्वानुमान का अनुमान लगाते हुए कीट और रोग में किस तरह से हम नियंत्रण कर सकते हैं, किस तरह से कीट और रोग को खत्म कर सकते हैं और अपने प्रोडक्शन को बहुत अच्छा ले सकते हैं, क्वालिटी वाइज भी हम अच्छा ले सकते हैं, जो जो खास बातें आपने बताई, जो जो की पॉइंट्स आपने दिए, अब जिम्मेदारी हमारे

0: करता है, क्योंकि जैसे आपने एक बिंदु पर आपने खास तौर पर जोर दिया कि वो दवा तो ज्यादा डाल सकता है लेकिन मेहनत कम करता है, यानी कि पंप की संख्या कम कर देता है। तो जितने पंप जिस फसल में जितने बीघा में होने चाहिए मानक, अगर एक बीघा में 5 से 6 पंप का मानक है तो वही करें। आप हमारे श्रोताओं के मध्य आए, जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: तो भैया अभी अपन सुन रहे थे जी बहुत ही महत्वपूर्ण भेंटवार्ता, जाको विषय है तो फसलों में मौसम पूर्वानुमान द्वारा कीट रोग नियंत्रण, और जहाँ में अपन को जानकारी दे रहे थे श्री विजय प्रताप सिंह जी, और इनसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। तो भैया आप लोगों ने ध्यान से सुनी होगी और आप लोगों को पसंद भी आई होगी। अब अपन आगे बात करें भैया कृषि आधारित उद्योगों के बारे में। भैया जो उद्योग कृषि उत्पादों की मांग पैदा करके अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित करके और किसानन को बेहतर लाभ प्रदान करें, कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। भैया जैसे कृषि पर निर्भर लोगन की आजीविका में भी सुधार आवत है। भैया कृषि आधारित उद्योगों में प्रमुख हैं डेयरी व्यापार, गन्ना या चीनी उद्योग, उत्पादन चमड़ा उद्योग, रबड़, चावल, मिलें, जूट, कागज और भैया सब्जी प्रसंस्करण और अचार, चिप्स, पापड़, सॉस, जैम, ये सब भैया व्यवसाय इन आते हैं यहाँ में। और भैया इन व्यवसाय की बाजार में बहुत ज़्यादा मांग भी है और किसान भैयान को ज़्यादा मुनाफा भी होते है और भैया बिना अच्छी आय प्राप्त होते है, जैसे बिनको जीवन स्तर अच्छा हो जाते है। और हमें भैया कृषि आधारित उद्योगन पर ध्यान देना चाहिए जैसे हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो सकत है। और भैया अपन आगे तो और बताएंगे, पहले सुन लें जो बढ़िया सुन लोग।

तो भैया अभी अपन सुन रहे थे जो बढ़िया सो लोकगीत जयगाव है, तो हरि कृष्ण और बिनके साथियन ने। तो भैया अब अपने कार्यक्रम को समय भी हो रहा है समाप्त, तो चलत चलत हम आप लोगों को देते हैं आज के मौसम की जानकारी। आज अपने शिवपुरी जिले को अधिकतम तापमान रहो 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहो 36 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता मतलब कि नमी रही भैया 17% और हवा की गति रही 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ये तो हती भैया आज के मौसम की जानकारी। और अब हम आपसे बातें तो और भी करने चाहते हैं, मगर अब अपने कार्यक्रम को समय हो रहा है समाप्त, तो अपनी साधना बहन को दो इजाजत। राम राम, जय जवान जय किसान।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्र और आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलने पर। भारत और यूरोप के बीच रणनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग लगातार बेहतर हो रहा है और प्रधानमंत्री की यह यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुनायत जी। अनिल जी, आपका आकाशवाणी में हार्दिक स्वागत है।
3: जी नमस्कार।
2: आज की चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं कि नीदरलैंड्स में भारत के वर्तमान राजदूत कुमार तुहिन ने क्या कहा है।
3: मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी की नीदरलैंड्स की यात्रा बहुत ही सक्सेसफुल रही है। इस यात्रा में जो इसका कंटेंट था और जो इसके जो आउटकम थे, अगर सबको देखें तो इतनी रिच कंटेंट और इतनी बढ़िया बातचीत जो यहाँ के नेताओं से हुई है, इतनी अच्छी बात मुझे लगता है कि अब बहुत ही समय में ऐसी कभी नहीं हुई होगी। इसको अगर मैं विस्तार से बताना चाहूँ तो सबसे पहले तो जब यहाँ के किंग से और क्वीन से उनकी बात हुई, उनके प्रधानमंत्री जी के आदर में उन्होंने एक लंच भी आयोजित किया वहाँ पे बहुत ही विस्तार से और कई विषयों को टच करते हुए बात हुई। और यहाँ के जो किंग और क्वीन है उन्होंने लंच में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित किया ताकि उनसे विस्तार से हर विषय को, जिसमें की कला भी है और संस्कृति है, जिसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी है, यहाँ के कुछ कंपनी के काफी बड़े सीईओ को बुलाया गया था और पूरा का माहौल जो था वो बहुत ही बढ़िया और काफी इनफॉर्मल और ऐसा माहौल था जिसमें कि बहुत ही डिटेल में बात हो सकी उसमें। उसके बाद जो उनकी बातचीत यहाँ के प्रधानमंत्री से हुई, उसके पहले 2 बड़े महत्वपूर्ण काम हुए यहाँ पे। पहला तो ये हुआ कि जो चोला की जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स का रिस्टिट्यूशन, और इसके बारे में आपने सारी डिटेल देख ली होगी। ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज है और सबसे बड़ी चीज ये कि ये एक तरह समझिए कि दोनों देशों के बीच में एक तरह से सांस्कृतिक संबंधों को एक और मजबूत तरीके से ले जाने का एक आधार खुल गया है बिना किसी कंडीशन के। और ये भी जानते हुए कि जो चोला की प्लेट्स हैं एक प्राइवेट कलेक्शन में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो लाइडन की है वहां पड़ी हुई थी, उसके बाद भी उन्होंने एक कमीशन को रेफर किया और उसकी प्रोवेनेंस तय करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसे में हमें भारत को रिस्टिट्यूट करना है। और ये इसके बाद में ASI और लाइब्रेरी उनके बीच में आगे जाकर के

0: और रिसर्च करने के लिए और डेटा एक्सचेंज करने के लिए, मेटा डेटा बदलने के लिए, इन सब के ऊपर में काम करने का एक बहुत मजबूत आधार बन गया है। दूसरी चीज हुई कि ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में उन्होंने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है, क्योंकि अगर आप देखें कि ASML अपनी तरह की एक अनूठी कंपनी है और इस कंपनी की जो खासियत यह है कि वो ऐसी मशीनें बनाते हैं जिन मशीनों को बनाने वाली कोई कंपनी दूसरी दुनिया में है ही नहीं, जिनसे कि सेमीकंडक्टर फैब बनती है। और ये हमारे यहाँ जो ढलेरा में प्लांट बन रहा है उसमें हमारी शुरुआत करने के लिए बहुत ही मजबूत आधार देगा। और यही नहीं बल्कि जो सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम में एक बड़ी अच्छी शुरुआत हो सकती है हमारे आने की। जो उनकी बातचीत यहाँ के प्रधानमंत्री से हुई उसमें भी कंटेंट बहुत ही रिच था और संबंध के सारे आयामों पे, इसमें ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, कल्चर है, पॉलिटिकल है, डिफेंस है, मैरिटाइम सिक्योरिटी है, हेल्थ है, हर विषय पर बात हुई और साथ साथ विश्व में जो अभी आज की स्थिति है वहां भी बात हुई। और इसके बाद आपने जो हमारी वेबसाइट पर देखा है कि एक बहुत ही लंबी लिस्ट निकली है सारे जो अग्रीमेंट्स कंक्लूड हुए हैं, और ये अग्रीमेंट्स आपको इनके जो रेंज है और इनकी जो डेप्थ है ये आपको एक आपको एहसास कराएगी कि जो वार्ता हुई और वार्ता की जो सफलता है वो कितनी गहरी है और कितनी व्यापक है। और अंत में मैं ये कहूंगा कि इसके बाद यहाँ के प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी के आदर में एक रात्रि भोज किया था, उसमें भी बहुत ही सहज माहौल था जिसमें दोनों देश के नेताओं ने आपस में, उन्होंने चूंकि उनकी पहली मुलाकात थी फॉर्मल तरीके से, काफी बढ़िया और क्लोज बात की, बहुत विषयों में बात की। और यही नहीं इसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और बाकी भी उच्च अधिकारी, उनको भी मौका मिला अपनी अपनी बात करने का। और मुझको ये लगता है कि इससे हम दोनों देशों का जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश हुई है, उसको आगे ले जाने के लिए, उसको और कंटेंट को डेवलप करने के लिए एक बहुत ही मजबूत हमारा एक आधार बन गया है। और कल एक हमारी प्रोग्राम का एक पार्ट और भी है, वो ये है कि प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं, यहाँ आफ्सलाउ डाइक है जो कि वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, और यह प्रोजेक्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इसकी जो सीख है, इसके जो कुछ लेसन्स हैं, उस लेसन्स को हम लोग अपने यहाँ भारत में भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में हम लोग लगा पाए। और जिसमें से एक है कल्पसार, इस पर भी एक लेटर ऑफ इंटेंट पर इसमें भी एक समझौता हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इसको भी हम लोग आगे ले जा पाएंगे। तो ओवरऑल मैं बहुत ही खुश हूँ और मुझे लगता है कि ये एक ट्रूली माइलस्टोन विजिट रही है प्रधानमंत्री जी की, और इससे हमारे दोनों देशों के बीच में हिस्टोरिक टाइज एस्टैब्लिश होने वाले हैं। धन्यवाद
1: अनिल जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को भारत यूरोप संबंधों और खासकर स्वीडन जैसे देशों के संदर्भ में आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: देखिए, यूरोप हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी पार्टनर रहा है। सब डेमोक्रेसीज हैं, भारत सबसे बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है और सबसे बड़ा देश है आज की डेट में, बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो उन लोगों का भी एक इंटरेस्ट है। जहां तक हम लोगों का सवाल है उसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर बहुत उथल पुथल मची हुई है, कई तरह की ब्लैक स्वान इवेंट साइमल्टेनियसली काम कर रही है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यूरोपियन देशों के ऊपर और दूसरे देशों के ऊपर हो रहा है। अब ये मिडल ईस्ट का जो ईरान यूएस इसराइल का वॉर है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, और अभी तक पूरी तरह से पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट था वो भी खत्म नहीं हुआ है, नई तरह के वायरस भी आने लगे हैं। तो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के हो, टेररिज्म के हो, इनोवेशन के हो, रिसर्च और डेवलपमेंट के हो, उन सब में हमारा यूरोप के साथ में जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और इस वर्ष जैसा आपको पता है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है, और इसी तरह से कुछ पांच देशों के साथ में यूरोपियन यूनियन के ही है लेकिन उसमें अलग से भारत ने एक और ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। उन दोनों के अंतर्गत हमारे जो दिशाएं हैं एक दूसरे के साथ काम करने की और भी ज्यादा प्रगतिशील होंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो ये विजिट इस वक्त हो रही है वो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है। और अभी देखिए, स्वीडन और बल्कि चारों देश जो बाकी हैं, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड, ये जो पांच देश हैं इनको हम नॉर्डिक कंट्रीज के रूप से कहते हैं, तो प्रधानमंत्री इस बार स्वीडन और नॉर्वे की यात्रा कर रहे हैं, आज वो स्वीडन पहुंचे हैं, नीदरलैंड्स में काफी

0: अच्छी यात्रा रही वहां पर। जैसा कि आपने वहां के एम्बेसडर जो हमारे एम्बेसडर है कुमार तोहिन की बात से बताया और प्रधानमंत्री ने भी कहा है, देखिए वहां करके एक बात कही कि WAH जैसे वाटर एग्रीकल्चर एंड हेल्थ और ग्रीन शिपिंग, ग्रीन कॉरिडोर, डिफेंस सिक्योरिटी में माइक्रोचिप्स, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर्स, और हमारे एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने 11th सेंचुरी की जो चोला डायनेस्टी के टाइम की जो कॉपर प्लेट्स थी इसमें काफी कुछ लिखा है उनको उन्होंने वापस किया है, भारत को सौंप दिया, और एक रोडमैप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए तैयार हुआ है जिसके चलते और भी हमारे रिश्ते उनके साथ घनिष्ठ होंगे। अब स्वीडन एक ऐसा देश है जिससे मैं समझता हूँ 100 साल से ज्यादा पुरानी हमारी मित्रता है। 1922-23 में मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनी स्वीडिश मैच और ये सब भारत में आई थी, खासतौर से पुणे में एक जगह है जहाँ पर उनका पूरी सारी कंपनी, चाहे वो अल्फा लवाल हो या स्वीडिश मैच हो, इन सब के ऑफिस और एस्टेब्लिशमेंट थे वहाँ पर। मुझे याद है जब मैं वहाँ स्वीडन में था तो एरिक्सन के जो CEO थे और एक वहाँ के ट्रेड मिनिस्टर थे लिफ पग्रोस्की, उन्होंने मुझसे कहा कि 95% जो इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन फ्रेमवर्क है वो एरिक्सन के द्वारा दिया गया। तो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं वहां पर 50 से ज्यादा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स हैं, छोटे से देश हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में, R&D के मामले में और क्लाइमेट चेंज के मामले में हो, वाटर मैनेजमेंट के लिए हो, उन सब ने बहुत अग्रिम भूमिका निभाई है दुनिया में। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो लोग इस बात पे करते हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर में सबसे ज्यादा खुश देश माने जाते हैं दुनिया के अंदर, लीस्ट करप्शन माना जाता है वहां पे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ये विन विन सिचुएशन होती है दोनों के लिए, इतना बड़ा मार्केट, और वो लोग अब भारत की तरफ पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। नॉर्वे में इस बार जो है ये इंडो नॉर्डिक जो समिट स्टार्ट हुई थी उसका ये तीसरा एडिशन होगा, पहली बार स्वीडन में हुई, दूसरी बार डेनमार्क में, और तीसरी बार जो है यहाँ हो रही है। लेकिन ये समिट जो है ऐसे वक्त में है जबकि हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का वॉर चल रहा है और रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है जिसका इम्पैक्ट उनके ऊपर भी काफी है, तो इसलिए इन सब बातों के ऊपर बड़ी डिस्कशन होगी और खास तौर से किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे नए आयाम को लेकर के, चाहे वो इनोवेशन है टेक्नोलॉजी के रूप में हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूप में हो, एजुकेशन में हो, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस के बारे में हो, या और कुछ नए दिशाएं अगर दी जाएंगी इसको, तो मैं समझता हूँ रोड मैप जो है स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का उसको और ऊपर ले जाया जाएगा।
1: जी, आपने लगभग सभी आयामों पर शुरुआती रोशनी तो डाली, अब कुछ क्षेत्रों पर हम बारीकी से बात करें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कि भारत में नॉर्वे की राजदूत मे एलन स्टिनर ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बारे में क्या कहा है।
2: नॉर्वे और भारत के बीच में संबंध बहुत अच्छे है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी नॉर्वे में स्वागत है।
1: अनिल जी, जैसे आपने पहले उल्लेख किया था व्यापार समझौते की बात है, तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो FTA है ये दोनों पक्षों के भविष्य के आर्थिक संबंधों को आकार देने में अब आगे और कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
0: देखिए, जैसा आपको मालूम है कि लगभग 18 सालों से हमारा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर में डिस्कशन चल रहा था और मार्केट एक्सेस के कुछ बिंदुओं को लेकर के वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन चूंकि इस वर्ष में हुआ है तो एक बड़ी अचीवमेंट मैं कहूंगा इस बारे में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक हमारा, अगर हम सबको एक साथ स्ट्रेट में रखें तो बायलैटरल तो है ही है वहां पर बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हमारे, लेकिन अगर कलेक्टिवली देखें तो हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो जाता है ऑलमोस्ट, और टेक्नोलॉजी के रूप में भी हमारे जो भारतीय वहां पर काम करते हैं इतने सारे और उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी कंपनीज हैं यहाँ पर, तो अब यह कि सबको थोड़ा कहीं ना कहीं आजकल मार्केट चाहिए और मार्केट के साथ साथ टेक्नोलॉजी की बड़ी आवश्यकता है। तो भारत ने जो ये उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया और ये एग्रीमेंट में दोनों साइड्स को फायदा होगा, लेकिन भारत की कंपनियों को काफी बड़ा फायदा होगा जैसा पता लग रहा है। दूसरी तरफ से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फ्री मूवमेंट मोबिलिटी का चांसेस है क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं भारत से बहुत ज्यादा होते हैं, खाली गुड्स का ही एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो उनको हमें एक बड़ा मार्केट जो है जिसको कहते हैं कॉमन मार्केट, उसमें पूरी एक्सेस मिल जाएगी हमारी कंपनीज को। लेकिन ये बात सच है कि यूरोपियन यूनियन का जो ढांचा है और उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो आसान नहीं है, लेकिन अब चूंकि एक तरह से आपको एक एडवांटेज मिल गया है मार्केट एंट्री के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी भारतीय कंपनियों के लिए काफी अच्छा होगा। देखना पड़ेगा एक दो साल में कितना लाभ इससे होता है और कितनी हमारी मार्केट एक्सेस बढ़ी है, लेकिन जो अभी तक के इंडिकेशंस हैं, ये दुनिया की जो समस्याएं हैं उस सब के बावजूद भी मैं समझता हूँ वो काफी

0: सुविधाजनक है।
1: जी, और अंत में संक्षेप में जानना चाहेंगे कि रणनीतिक हितों की दृष्टि से क्या इसके दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं?
0: देखिए, इसमें काफी सारे जो देश हैं, जैसे फ्रांस है, यूके है, इटली है, जर्मनी है, यूरोप के खास देश और नॉर्डिक कंट्रीज, जिसके स्वीडन, नॉर्वे, जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो लोग भी डिफेंस और सिक्योरिटी में, शिपिंग के अंदर, ग्रीन कॉरिडोर्स के अंदर में, ग्रीन शिपिंग के अंदर, ग्रीन टेक्नोलॉजीज में, फाइनेंस में, एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में, रिन्यूएबल्स के लिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें ये सारे आयाम आ जाते हैं। खाली मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं आती है, आजकल साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, तो इन सब में ये देश बहुत आगे है और इसलिए उनके साथ जो कोलैबोरेशन है वो हमारे लिए एक म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन रहेगा जिसमें दोनों साइड्स को बड़ा फायदा हो।
1: जी, तो श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, आज हमने भारत और यूरोप के बीच बदलते संबंधों तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा के विभिन्न आयामों को समझने की कोशिश की। अनिल त्रिगुनायत जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम डगर विकास की, प्रस्तुति है आकाशवाणी भोपाल की।

0: कार्यक्रम डगर विकास की सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा से जुड़े एक ऐसे प्रयास की जो देश के भविष्य को संवारने का काम कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग द्वारा संचालित माननीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री श्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना की, जिसे हम संक्षेप में पीएम श्री योजना भी कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 सितंबर सन 2022 को पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य देश के सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त कर उन्हें आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना है। पीएम श्री योजना में चयनित स्कूल ऐसे आदर्श स्कूल हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को दर्शाते हैं। पीएम श्री योजना के तहत ऐसे स्कूल तैयार किए जा रहे हैं जहां बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित शिक्षा न मिले, बल्कि उन्हें जीवन से जुड़ी व्यवहारिक और कौशल आधारित शिक्षा भी प्राप्त हो। पीएम श्री योजना पर और अधिक जानकारी देते हुए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 भोपाल के प्राचार्य श्री पवन कुमार बेदुए।
1: सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद।
1: सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे पीएम श्री योजना के बारे में। पीएम श्री योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
2: पीएम श्री योजना वास्तव में प्रधानमंत्री जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को विधिवत इम्प्लीमेंट करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है। पीएम श्री योजना में विद्यालयों को सक्षम बनाना है, स्किल बेस्ड एजुकेशन दिलवाना है ताकि बच्चों को समय पर रोजगार मिल सके। तो पीएम श्री योजना बहुत ही लाभदायक है बच्चों के लिए, पालकों के लिए, और इस योजना के तहत बहुत तरह के हेड में फंड दिए जा रहे हैं ताकि विद्यालयों को इम्प्रूव किया जा सके, क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके। और यह प्रधानमंत्री जी का बहुत ही उत्तम प्रयास है और एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है।
1: आपके स्कूल को कब इसमें शामिल किया गया है?
2: हमारे स्कूल को 2020 में शामिल किया गया है और 2022 से हमको फंड प्राप्त हुए हैं।

अभी तक हमको 2 साल के फंड मिल चुके हैं और तीसरा ये साल चल रहा है, इसमें भी फंड आने को है और इसमें 35 से 40 लाख रुपए हमको पर ईयर मिलते हैं और इसमें अलग-अलग हेड हैं, इसको पूरी तरह विद्यालय को यूटिलाइज करना होता है।

0: पीएम सीरी के तहत बहुत सारे विद्यालयों को फंड मिला है, जिनके तहत इंटरैक्टिव पैनल्स खरीदे गए हैं और क्लासरूम्स में डिजिटल टीचिंग का प्रयास चल रहा है और ये काफ़ी फायदेमंद रहा है बच्चों को।
1: जैसा अभी आपने बात करी डिजिटल पैनल की, तो इसके लिए क्या शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास हेतु भी कोई प्रावधान है?
0: बिल्कुल, जैसे एआई आया है, अटल टिंकरिंग लैब में वर्क होता है और बहुत तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जिनको करके बच्चों को सिखाना है, तो ऐसी स्थिति में टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही हैं। बल्कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 50 आवर्स की ट्रेनिंग टीचर्स के लिए कंपलसरी है। जैसे हमारे यहाँ जो वोकेशनल लैब है या अटल टिंकरिंग लैब है, इसके तहत टीचर्स को 5 दिन की, किसी को 3 दिन की, कभी कभी किसी को 1 दिन की, एआई को लेकर भी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो टीचर्स को डेफिनेटली सक्षम बनाया जा रहा है ताकि वो बच्चों को उसका भरपूर फायदा दे सकें।
1: जी, पर्यावरण अनुकूल स्कूल के रूप में पीएमसी स्कूलों की क्या विशेषताएं हैं?
0: पर्यावरण के लिए सबसे पहला तो जो काम किया जा रहा है वो स्वच्छता को लेकर है कि विद्यालय को साफ़ सुथरा रखें। इसके लिए कंपोस्ट पिट बनाई जा रही है, खाद बनाई जा रही है और पॉलीथीन फ्री विद्यालय बनाए जा रहे हैं और विद्यालय को हरा भरा रखा जाए, इसके लिए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ग्रीन ग्रास लगाई जा रही है और उनको हर टाइम हरा रखने के लिए स्प्रिंकलर्स लगाए जा रहे हैं और इन सब के लिए हमको फंड भी मिल रहा है।
1: क्या कचरा प्रबंधन के लिए भी इसमें कोई कार्य किए जा रहे हैं?
0: निश्चित रूप से एक तो क्या है कि जागरूकता फैलाई जा रही है कि हम पॉलीथीन का यूज़ बिल्कुल ना करें और जो पेपर्स हैं उनके लिए पेपर मैसे के माध्यम से हम लोग कुछ आइटम्स बना रहे हैं ताकि पेपर का यूज़ किया जा सके। बच्चों पे अवेयरनेस तो हम दे ही रहे हैं, साथ में कंपोस्ट पिट बनाई जा रही है ताकि जो पत्तियां हैं उनको सड़ा के गला के खाद बनाई जा सके और स्कूल में वेजिटेबल गार्डन है तो उस खाद का वेजिटेबल गार्डन में उपयोग किया जा रहा है। से वेजिटेबल गार्डन और मेडिसिनल गार्डन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा भी दी जा रही है किस तरह से वेजिटेबल बनती हैं, किस तरह से मेडिसिनल प्लांट बनते हैं। इसके साथ साथ ही कुछ एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें बच्चों को फील्ड विजिट भी कराया जा रहा है ताकि वो खेती कैसे होती है, पौधे कैसे बनते हैं, मतलब आगे हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड पे बच्चों का क्या योगदान हो सकता है उसके अच्छा प्रयास किया जा रहा है।
1: क्या आपके स्कूल में स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जा रहा है?
0: निश्चित रूप से हम लोग 10 डेज बैगलेस डेज को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग बेम्बू आर्ट है, मिट्टी का वर्क है या फिर गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी का वर्क है, तो ये सब विद्यालय में हो रहा है। अटल टिंकरिंग लैब में बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो स्किल तो डेफिनेटली इस समय इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है ताकि बच्चे सक्षम बन सकें।
1: पीएमसी योजना से शिक्षा की गुणवत्ता में क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं?
0: पीएम श्री योजना का सबसे बड़ा बदलाव अगर हम देखें तो जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, करके सीखो, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो बहुत थोड़ा सीखते हैं और करते हैं तो उससे ज़्यादा सीखते हैं, लेकिन देखते भी हैं और करते भी हैं तो सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो अभी क्या है कि बच्चे फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको फील्ड विजिट कराया जा रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने भोपाल के विभिन्न जो हायर इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे निफ्ट है, एनआईडी है, मैनीट है और एम्पिरी है, एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे सीहोर में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे बच्चे गए हैं तो किस तरह से काम वहाँ होता है, किस तरह से प्रोजेक्ट बनते हैं, या हम अपनी लाइफ में अगर कुछ नया करना चाहें तो कैसे सीखें, वो वहाँ से सीख के आ रहे हैं।
1: सर, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: पीएम श्री योजना के तहत बच्चों के समग्र विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। पढ़ाई के साथ साथ कला, संस्कृति, खेल, पर्यावरण संरक्षण और जीवन कौशल से जुड़े विषयों को भी शिक्षा का हिस्सा बनाया जा रहा है। आप हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के कला शिक्षक अशोक कुमार वर्मा।
3: नमस्कार, बताना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय में जब से पीएमसीरी स्कीम लागू हुआ है उसके बाद यहाँ पे बच्चों के एक्सपोजर के लिए, बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए बहुत कुछ उपलब्धियाँ हासिल होने लग गई हैं। बच्चे अब कुछ विधाओं में अलग से इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनमें कुछ अपने हैंड्स ऑन स्किल्स वगैरह को इम्प्रूव कर रहे हैं।

0: आप देख पाएंगे जो हमारे स्कूल में जगह जगह पर बर्ड हाउस टंगे हुए हैं, ये पूरे वेस्ट मेटल से टंगे हुए हैं। ये कार्डबोर्ड, लकड़ी, घास फूस, इससे मिला के इन्होंने बर्ड हाउस बनाया, जिसको हमने स्कूल में जगह जगह वृक्षों पर टांग दिया। पक्षियों के लिए भी ठीक है और देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे हो रहा है। टेक्नोलॉजी को इसमें जोड़ते हैं हम, तो AI बहुत महत्वपूर्ण हो गया है आगे फ्यूचर के लिए बच्चों को, तो अभी से उसका नॉलेज देना पड़ेगा। तो इसलिए स्किल सब्जेक्ट में कंपलसरी AI हम लोगों ने कर दिया है, तो सारा 8th क्लास तक AI चालू हो गया। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बच्चों को एडिटिंग वगैरह का भी एक कंसेप्ट है, जिसमें फोटोशॉप वगैरह का यूज़ करके क्रिएटिव यूज़ कर सकते हैं। और एडिटिंग से अपने कोई भी, हर बच्चा आजकल वीडियो बनाता है, फोटो बनाता है हर परिवार में, तो एडिटिंग का वर्कशॉप भी हम लोगों ने कंडक्ट किया। तो इस तरीके से पुराने पैटर्न के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व करते हुए हम बच्चों को स्किल्स सिखा रहे हैं। एक और स्किल्स एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर से बच्चे बिल्कुल कट गए हैं आज की तारीख में, वो जानते नहीं एग्रीकल्चर में क्या होता है और किस तरीके से उसके में खेती बाड़ी की जाती है। तो हमारे यहाँ पे एक एग्रीकल्चर गार्डन है, वहाँ पर हमारे फिर माली भैया के गाइडेंस के साथ बच्चे उसमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करना सीखते हैं, कैसे प्लांट लगाया जाता है, कैसे उसमें पानी दिया जाता है, कैसे कीटनाशक का या बिना कीटनाशक के वो कैसे हम जैविकता के साथ में उसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये इस तरह के अलग अलग एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर रिलेटेड, सफाई अभियान से रिलेटेड, और जो वेस्ट मेटल को यूज़ करने का तरीका, इन सब तरीकों को लेके हुए स्किल को डेवलप किया जा रहा है।
1: श्रोताओं, PM श्री योजना वास्तव में भारत के भविष्य में किया गया एक निवेश है। ये बच्चों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम नागरिक बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। कार्यक्रम में आइए अब जानते हैं केंद्रीय विद्यालय भोपाल क्रमांक 2 के विद्यार्थियों से जुड़े उनके अपने अनुभव।
2: मैं अभयराज सिंह ठाकुर, कक्षा 11वीं का छात्र, PM श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 शिवाजी नगर भोपाल में हूँ। हमारा स्कूल PM श्री योजनाओं के अंतर्गत आता है। PM श्री योजनाओं के अंतर्गत काफ़ी बदलाव देखने को मिला हमको हमारे स्कूल में, जैसे कि जितने क्लासरूम में सबको डिजिटलाइज किया गया, उन सब में इंटरैक्टिव पैनल्स लगाए गए, जिससे डिजिटल और इंटरैक्टिव पैनलों के उपयोग से शिक्षण को रोचक, प्रभावी और सहभागितापूर्ण बनाया गया। इसके अंतर्गत हमें काफ़ी सारे कला शिल्प की गतिविधियों में पार्ट लेने को दिया गया। कला शिल्प जैसे कि ज्वेलरी मेकिंग, पेंटिंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट और भी काफ़ी सारी चीज़ें। हमको युवा संसद 2025 में जाने का भी मौका मिला, जिसमें हम लोगों ने अपने स्कूल को प्रथम स्थान भी दिलाया। काफ़ी सारी खेलकूद की गतिविधियां भी की गई। इसके अंतर्गत शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, टीम भावना और खेल भावना के विकास के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। PM श्री के माध्यम से हमारे स्कूल को काफ़ी मदद मिली और हमें आशा है कि आगे जाते हुए ये हमारे स्कूलों को काफ़ी बुलंद ऊँचाइयों पर भी ले गिर जाएगा।
3: मेरा नाम अमृता मिश्रा और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा PM श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 भोपाल में पढ़ती हूँ। हमारा विद्यालय PM श्री योजना के तहत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु कई गतिविधियाँ आयोजित करता है। मेरे अनुसार PM श्री योजना सिर्फ एक नाम या योजना नहीं, बल्कि एक विश्वास है देश की प्रगति का और बच्चों के सतत विकास का। और हमारे विद्यालय में जो विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, उसमें से कई गतिविधियां बालिकाओं को सामर्थ्य बनाने हेतु चलाई जाती हैं, जैसे कि सुरक्षा प्रशिक्षण। इसके अंतर्गत छात्राओं में आत्मविश्वास, साहस एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती है, साथ ही में उनके अंदर एक आत्मरक्षा का भाव भी आता है। मुझे लगता है कि जो PM श्री के पहले का टाइम था और जो PM श्री के अभी का टाइम है, उसमें डिफरेंस बहुत बड़ा आया है हमारे जो स्टडी है, क्योंकि वो अब सिर्फ पढ़ाई किताबों तक सीमित नहीं रही है, वो पूरा हर एक डायमेंशन में देखा जाए तो हर एक तरीके से हमें हेल्प कर रही है, और स्पेशली हमारी स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है और इससे हमको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी मिलती है। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि KV की दीवारों में गूंजे उनकी बात, PM श्री के सपनों का भारत है आबाद, शिक्षा की ज्योति हर दिल में जलाए, PM श्री देश का भविष्य बनाए। धन्यवाद।
1: आने वाले समय में यही बच्चे देश की प्रगति की कहानी लिखेंगे और उनकी इस उड़ान की शुरुआत PM श्री स्कूल से होगी। हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं PM श्री योजना एक बेहतर शिक्षा के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम है। PM श्री योजना देश के भविष्य यानी बच्चों के बेहतर अवसर और बेहतर कल की ओर ले जाने की एक सशक्त पहल है। इसी के साथ डगर विकास की कार्यक्रम का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचक अमिता त्रिवेदी, प्रस्तुतकर्ता मनीष गजभिये, योगदान आकाशवाणी भोपाल का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की, प्रस्तुति थी आकाशवाणी भोपाल की। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में पहला गीत हमने लिया है फिल्म नदिया के पार से। स्वर हैं जसपाल सिंह और हिमलता के, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म चित्तचोर से। स्वर हैं यशुदास और हिमलता के। गीत और संगीत एक बार फिर रविंद्र जैन का।

0: अवसर पहुंचाइए अपने शुभकामना संदेश आकाशवाणी भोपाल से जुड़कर। बुकिंग कराने के लिए संपर्क कीजिए इस नंबर पर 9425012367।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुत शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
4: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
5: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
6: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडली नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे 4 दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ स्टर्सन से वफ्द की सतह की बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा वीडी सतेसन को कल केरलम के नए वज़ीर-ए-आला का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत चार अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी विलिशेट्टी ने बाउजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने तो रोजा दौरे में इस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दिगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया की सूरत हाल और आलमी सतह पर तवानाई की सप्लाई, नेस तजारती नेटवर्क्स पर इसके असरात पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुस्तकबिल में अपने ताल्लुकात को फरोग देने और आबी वसाइल, सेमी कंडक्टर्स, इख्तिरा, दिफा, पायदारी और नकलो हमल के शोबों में तआवुन को वसी करने के बारे में एक खाका तैयार किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में आज स्वीडन के शहर गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं, जहां उनका खैर मकदम गोथेनबर्ग लैंडवेटर हवाई अड्डे पर स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म वुल्फ क्रिस्टर्सन ने किया। जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा स्वीडन की फजाई हदूद में दाखिल हुआ, मेहमान खसूसी के तौर पर उनके हवाई जहाज की मुहाफजत स्वीडन के ग्रिपन लड़ाई जेट तैयारों ने शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को हवाई अड्डे पर बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उनका इस्तकबाल भारतीय बिरादरी के अरकान ने बड़ी गर्मजोशी से किया। इस दौरे की खासियत दो वज़ीर-ए-आज़म की एक मुश्तरका खिताब है, जो वो सनद से मुतालिक यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस से करेंगे। सीओज की इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जनाब मोदी के साथ यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वोन देर लेयन शामिल रहेंगी। गोथेनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत कर रहे हैं। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तिजारत, एआई, स्टार्टअप समेत मुख्तलिफ शोबों में तबादले ख्याल करेंगे। कांग्रेस रहनुमा वीडी सतीसन की क्यादत में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में हलफ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वीडी सतीसन को केरलम का अगला वज़ीर-ए-आला नामजद किया था, जिसके साथ ही 10 दिन से जारी सियासी ड्रामा और गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो गई। कांग्रेस की क्यादत वाले मुत्तहदा जमहूरी महाज यूडीएफ ने केरलम असेंबली इंतखाबात में 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल की। तहम मुख्तलिफ ग्रुपों की लॉबिंग और कारकुनों के एहतजाज के बायस मस्कूरा इत्तेहाद वज़ीर-ए-आला के नाम पर फैसला नहीं कर पा रहा था। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: कांग्रेस के सीनियर लीडर वीडी सतीसन कल केरलम के वज़ीर-ए-आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनके हमरा 20 दिगर वज़रा भी हलफ लेंगे।

प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की बिजली की मांग को पूरा करने में, जो अब तक की सबसे बड़ी मांग है, कामयाबी हासिल की है। एक प्राइवेट अंग्रेजी रोजनामे के साथ बातचीत में जनाब जोशी ने कहा कि बिजली की 33% मांग काबिले तस्दीक तवानाई के वसायल से पूरी की गई है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस बड़ी तब्दीली से तवानाई की सलाहियत में बड़ी तेजी से इजाफे, ग्रिड को मुस्तहकम बनाने और मुल्क की तरक्की के सफर को तकवीत देने में माहौल के लिए साजगार तवानाई के बढ़ते हुए हिस्से का अंदाजा होता है। रूस में मास्को और आसपास के इलाकों पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में 4 अफराद की मौत हो गई है, जिनमें एक भारतीय मजदूर भी शामिल है। मास्को के मेयर सरगेई सुबियानिन ने बताया कि रात भर हुए इन ड्रोन हमलों में कम से कम 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। रूस के हुक्काम के मुताबिक मास्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को तबाह भी किया गया है। यूक्रेन के सदर विलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों की तस्दीक करते हुए इन्हें दुरुस्त कार्रवाई करार दिया। इस दौरान रूस में भारतीय सफारतखाने ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में बताया कि मास्को को मुख्तलिफ इलाकों में हुए ड्रोन हमलों में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। सफारतखाने ने मजीद बताया कि सफारतखाने के अहदेदारों ने हादसे की जगह का दौरा किया और अस्पताल में जेर इलाज जख्मी मजदूरों की कैफियत दरियाफ्त की। भारत के महकमे मौसमियात का कहना है कि जनूब मगरबी मानसून इस माह की 26 तारीख को केरलम में दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि मॉडल एरर की बुनियाद पर इसमें 4 रोज आगे या पीछे होने की भी गुंजाइश है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून के जनूब मशरकी बहीरे अरब के कुछ मजीद हिस्सों, जनूब मगरबी और जनूब मशरकी खलीज बंगाल, अंडमान जजायर और बहीरे अंडमान के बाकी हिस्सों और मशरकी वस्ती खलीज बंगाल के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 रोज के दौरान हालात मुआफिक रहेंगे। महकमे मौसमियात ने कल मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी की पेशगोई की है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह की सूरत हाल का इम्कान जाहिर किया गया है। बैडमिंटन में आज चीन में बाओजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में भारत की श्रियांशी वाली शेट्टी ने चांदी का तमगा जीता है। उन्होंने बाओजी सिटी जिम्नेशियम में सुपर 100 के फाइनल में चीन की एन क्वी युआन को सीधे सेटों में 14-21, 6-21 से शिकस्त खाई, लिहाजा उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के जरिए दिए गए 223 रन के निशाने को हासिल करते हुए पंजाब किंग्स मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 199 रन ही बना सकी। इससे कबल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दिन के एक और मैच में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 194 रन का निशाना रखा है। इससे कबल दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हममनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से वफ्त की सतह की बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने तो रोजा दौरे में इस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ 2 तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दिगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 माहदों पर दस्तखत किए। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से 2 तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतेसन को कल केरलम के नए वजीर आला का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत 4 अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वाली शेट्टी ने बाओजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इससे कबल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे।

0: इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा नाटक कूपे।
2: ये है मेरा कूपे। जूडिस का प्रोग्राम अचानक बदल गया, मैं उसका टिकट वापस करने जा रहा था। आपको आपत्ति न हो तो?
3: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके साथ तो 10 दिन तक साधना केंद्र में रही हूँ। एक अजनबी आदमी के साथ सफर करना मुझे बुरा नहीं लगता।
2: कूपे में भी?
3: क्यों, कूपे में क्या है? 2 बर्थ है, उन पर कोई भी 2 यात्री सफर कर सकते हैं। 2 स्त्री 2 पुरुष या 1 स्त्री 1 पुरुष।
2: जी हाँ, 1 स्त्री और 1 पुरुष 2 ही होंगे इस कूपे में। अच्छा सफर कटेगा।
3: हाँ, नींद अच्छी आएगी या शायद बिल्कुल नहीं आएगी।
2: आप में जीवट है, लेकिन 10 दिनों तक तो आप
3: वहाँ सबको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था जैसा मैंने किया। साधना करने आए थे हम लोग।
4: अच्छा, मैम साहब आ गई। आप तो कह रहे
2: थे। सुनो कंडक्टर, 2 कप कॉफी मिलेगी? लेकिन रुको शांतना जी, अब तो डाइनिंग कार में चलने का वक्त हो गया है।
3: मैं नहीं जाऊंगी, रात को मैं नहीं खाती। कंडक्टर, मेरे लिए केवल 1 कॉफी।
4: जी हाँ मैम साहब, कॉफी आ जाएगी।
2: मैं तो डाइनिंग कार में जाऊंगा। 10 दिन तक मन और तन दोनों ही भूखे रहे। ना ना, अब और मन को नहीं मार सकता।
3: तुमने मारा ही कहा है, मारने का ढोंग किया। अच्छा जाओ, मैं ध्यान करने के बाद कुछ देर काम करूंगी।
2: ओके, लौट कर बातें होंगी।
3: ओके।
4: मैम साहब, ये रही कॉफी, कुछ और चाहिए?
3: नहीं शुक्रिया। अब जरा एकांत मिला। सोने से पहले अपनी डायरी लिख लो। गुरुजी दूसरे महात्माओं से कितने भिन्न हैं। वो न प्रभाव डालने के हथकंडे जानते हैं, न दूसरों पर छा जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने एक सहज सत्य का आविष्कार कर लिया है, क्योंकि उनमें एक मोहिनी शक्ति पैदा हो गई है। वही शक्ति देश विदेश के नाना प्रकार से त्रस्त व्यक्तियों को अपने पास खींच लेती है। अज्ञात शांति की खोज में भटकते ये व्यक्ति कैसे सहज विश्वास से अपने जीवन की कहानी खोल कर रख देते हैं इनके सामने। वो जूडिथ जिसकी नीली आंखों में गहरे आकाश की झलक है, जिस सहज भाव से खिलखिलाती है, उसी सहज भाव से अपने मन की सारी परतें खोल कर रख देती है। उस दिन वो अपनी प्यारी प्यारी सी बच्ची के लिए मेरे पास से गुजरी तो मैंने मुस्कुराकर कहा, हेलो जूडी, कितनी प्यारी है तुम्हारी बच्ची। कल बहुत देर तक मुझसे बातें करती रही। ये जिसके पास जाती है उसी की हो जाती है, मेरी तरह। अब गुरुजी के पास सोने की जिद कर रही।
5: अच्छा, मानती ही नहीं, इसीलिए इसके पिता के पास ले जा रही हूँ।
3: क्या तुम्हारे पति भी यहाँ आए हुए हैं?
5: मेरी शादी नहीं हुई है।
3: क्या? लेकिन इसके पिता बहुत सुंदर है, ऊपर की मंजिल में ही तो ठहरे हैं। उनसे ही इस लंबी यात्रा में मैंने ये सुंदर बच्ची प्राप्त की है। आप कितने दिन से घूम रही हैं?
5: कई वर्ष हो गए।
3: आपके बहुत मित्र हैं।
5: स्वाभाविक है, अनेक देशों के अनेक युवकों के संपर्क में आई हूँ। उनको समझा परखा है, प्यार दिया है, पाया है।
3: बुरा तो नहीं मानोगी, तुम ग्रास, डोप, चरस, एलएसडी आदि का सेवन करती हो?
5: करती हूँ। उनसे मुझे आनंद मिलता है, उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती। वो अनुभव करने की वस्तु है, जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, प्रतिभा मुक्त हो जाती है।
3: तो फिर वो क्या है जो तुम्हें खाया जा रहा है? क्या है जो तुम्हारे जैसे युवक युवतियों को दर दर भटकने के लिए विवश करता है? साधुओं, महात्माओं, योगियों के पास तुम क्या पाना चाहते हो?
5: बहुत दिनों तक ये सब करते करते मैंने अनुभव किया है कि नशे में जो आनंद मिलता है वो जैसे मैकेनिकल, जैसे उधार का आनंद है। एक महात्मा है जो दैहिक सेक्स के द्वारा समाधि की ओर ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी की सहायता से अपने ही अंतर्मन से स्वर्ग जाने का मार्ग खोल लेना चाहती हूँ। सुना था भारत के योगी इस मार्ग को जानते हैं, इसलिए भटकती हूँ।
3: जितने लोगों से मैंने बात की है वो सभी इन अनुभवों से गुजर चुके थे। सेक्स, नशा, सब कुछ उनके लिए सहज है, फिर भी वो भटक रहे हैं। कितनी सच्ची है उनकी ये भटकन। कुछ है जो परिवार के शासन से परेशान है, कुछ को आज के शोषण की राजनीति त्रस्त करती है, वो उद्योगीकरण से प्राप्त ऐश्वर्य और विलास से ऊब चुके हैं। ये यांत्रिक और कृत्रिम जीवन उनको खोखला कर रहा है और वो उस आनंद की तलाश में है जो उन्हें शांति के स्वर्ग द्वार के भीतर पहुंच जाने की शक्ति दे। आती हूँ।
2: बाहर भी वर्षा होकर चुकी है, मौसम कितना सुहावना, कितना प्यारा है। अरे आप एक लिखे जा रही हैं? कैंप के अपने अनुभव लिख रही हैं शायद, देख सकता हूँ?
3: ये मेरी डायरी है।
2: तब नहीं देखूंगा, डायरी चोरी करके पढ़ने की चीज है।
3: बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं।
2: समझदारी की बातें तो अब आरंभ होंगी। खिड़की खोल दूं, वर्षा से भीगी हवा है। मैं आपके पास बैठ सकता हूँ?
3: सब काम पूछ कर ही करते हैं आप।
2: थैंक यू। मेरे पास स्कॉच है, 10 दिन से इसे छुआ ही नहीं। आप पीते हैं?
3: पीते तो नहीं, पर प्रतिज्ञा भी नहीं की।
2: तो मेरा साथ दीजिए, थकान भी तो उतारनी है।
3: मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ।
2: प्लीज, साथ देने के लिए एक पैक।
3: जी नहीं, आप ऊपर जाकर पीजिए।
2: और अगर मैं यहीं बैठकर पीऊँ तो?
3: पीजिए।
2: बुरा मान ली, प्लीज। बात यह है कि मैं साथी के बिना रह ही नहीं सकता। बहुत घूमा हूँ हिप्पियों के साथ, जिप्सियों के साथ। कितनी मुक्त और सहज है ये विदेशी युवतियाँ, बड़े मजे के साथ कह सकती हैं लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ सेक्स। मैं भी कह सकता हूँ लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ।
3: मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ।
2: नहीं है तो हो जाएंगी। मुझे किसी के साथ एकाकार होते देर नहीं होती। दुई का भाव मुझे सुहाता ही नहीं। एक ओंकार, एक सत्ता, एक चेतना।
3: काफी गहरे उतर चुके हैं आप।
2: गणित विज्ञान और आध्यात्म की तरह नशे, सेक्स और योग की मंजिल एक ही है, ब्रह्मानंद सरोवर में डुबकी लगाना। प्लीज, मैंने कहा ना अकेले पीते अच्छा नहीं लगता। छोटा पैक लीजिए मेरे लिए, इस सुहावने मौसम के लिए।
3: मिस्टर सिंह, आप ऊपर नहीं जाना चाहते तो मैं जाती हूँ।
2: आप ऊपर कैसे जाएंगे?
3: जी हाँ, वो अधिकार तो जैसे आपका ही है, आप पुरुष है ना। मैं कहती हूँ ऊपर जाइए।
2: नाराज ना होइए। अच्छा, मैं अब और नहीं पीऊंगा, आपके साथ बातें करूंगा। आप डाइनिंग कार में नहीं गई, वहां डिक था, वही जूडिथ के बच्चे का बाप। आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, आना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता लगा कि हम कूपे में हैं तो मुस्कुरा कर लौट गया। अरे अब फिर नाराज हो रही है? प्लीज।
3: मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, जरा थोड़ा पीछे हटिए ना, मैं लेटना चाहती हूँ, फिर अपना भाषण जारी रख सकते हैं आप। आप तो जूडिथ के साथ बहुत रहे हैं।
2: बहुत से देशों में साथ साथ घूमा हूँ। We have made love many times. लेकिन वहां गुरुजी का आदेश था 10 दिन तक कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण मौन। फिर दिख भी तो यही था, लेकिन उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। जूडिथ को पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ रहे।
3: इसलिए शायद वो तुम्हारे साथ आकर भी लौट गई।
2: उसके लौट जाने से मुझे दुख हुआ था, लेकिन तुम मिल गई, तुम उससे भी आकर्षक हो, सबसे आकर्षक। तुम्हारी मांसल देह, तुम्हारी चमक।

0: आँखें, तुम्हारे लंबे सुनहरी बाल।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बज चुके हैं।
0: प्लीज अभी कुछ देर और बैठूंगा।
1: बैठे रहो।
0: तुम्हारी डायरी पढ़ सकता हूँ?
1: नहीं।
0: तुम्हें छू सकता हूँ?
1: नहीं।
0: मेरी प्रेम कहानियां सुनोगे?
1: नहीं।
0: क्यों?
1: क्योंकि सब एक जैसी होती हैं। वैसे ही जैसे तुम सब पुरुषों का व्यक्तित्व एक जैसा होता है। सोने का समय हो गया, जाओ सो जाओ और स्वप्न देखो।
0: मेरा मन तो तुमसे बातें करने को करता है।
1: बातें मुंह से की जाती हैं, हाथों से नहीं।
0: सांत्वना, सांत्वना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ सांत्वना।
1: मुझसे प्रेम करने वालों में एक और का इजाफा हुआ। लेकिन सरजीत, तुम सचमुच प्रेम करते होते तो जतलाते नहीं। प्रेम निर्लज्ज नहीं होता।
0: यानी नैतिक होता है। शरीर को बचाने के मुंह में तुम अच्छे तर्क कर लेती हो।
1: शरीर को बचाने का मुंह मुझे कभी नहीं रहा, परंतु वो मन से जुड़ा हुआ है। प्रेम का अर्थ केवल तन का मिलन नहीं है। जिन जूडिथ, मार्था और लिजा के लिए तन का मिलन सहज रहा है, वो भी मन के मिलने के लिए भटकती फिर रही हैं। न जाने कितनी गांठें पड़ी हैं उनके मन में। माँ बाप से विद्रोह, समाज से विद्रोह, अपने से विद्रोह। व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो ड्रग का सेवन करती हैं। स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने
0: वही वही वही तो आनंद का मार्ग है। तुमने कभी अनुभव किया है उसे, उस आनंद को? मेरे पास है, पियोगी?
1: सरजीत, तुम सीमा को लांघते जा रहे हो, अब चले जाओ।
0: और न जाऊं तो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज सांत्वना, प्लीज।
1: नहीं नहीं, पीछे हटो, हटो पीछे।
0: मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा। किसी स्त्री ने मुझे आज तक पीछे नहीं हटाया।
1: लेकिन मैं हटा दूंगी। मर्द है तो उसे औरत चाहिए।
0: प्लीज
1: मत तेज पूछे, औरत तेज को छीनने वाली है।
0: देखो,
1: ये दलीलें अब बाकी होती।
0: प्लीज
1: तुम्हारे लिए नारी केवल एक वेश्या है।
0: अब मैं नहीं,
1: मैं कहती हूँ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं।
0: नहीं, सांत्वना।
1: कौन है, क्यों आए हैं इस समय?
2: क्षमा कीजिए, आप ठीक तो हैं?
1: बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही बीमार नजर आते हैं जो दूसरों के कंपार्टमेंट में झांकते फिरते हैं। कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो जाइए यहाँ से।
2: माफी चाहता हूँ, बराबर के कंपार्टमेंट में हूँ। लगा जैसे आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन यहाँ तो आपके पति का अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता।
1: तो फिर जाइए अपने कंपार्टमेंट में।
2: देखिए, मुझे नींद कम आती है। आप लोग शोर मचाएंगे तो बेवश होकर मुझे।
1: क्या मतलब है आपका?
2: आप सब समझती हैं, इस डिब्बे में केवल आप दोनों ही नहीं, आप जैसे जोड़े बहुत देखे हैं। इस उम्र में इतना आवेश नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ मुझे फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडक्टर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आराम से सो सके।
3: मैम साहब, मैं तो डर गया था। कभी कभी फालतू आदमी भी चढ़ाते हैं।
1: मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए। मैं माफी चाहती हूँ।
2: ठीक है, मैं जाता हूँ। गुड नाइट।
3: दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, कोई बात हो तो मैं पास ही में हूँ।
0: मुझे बहुत दुख है दरअसल।
1: चुप रहो, ऊपर जाकर अपनी सीट पर बैठो।

0: हरजीत का इसमें कोई दोष नहीं है। उसका संबंध जूडेट, मार्था और लिजा जैसी नारियों से रहा है, इनके लिए देह ही सब कुछ है। लेकिन फिर विद्रोहियों का बाना पहने इधर उधर क्यों भटक रही हैं? अंतर में कहीं न कहीं खोज की वो चाह है जो इन्हें स्थूल आनंद से ऊपर उठाती है। मैंने मार्था से पूछा था, मार्था बुरा तो न मानोगी, एक बात पूछूं?
1: खुशी से पूछो।
0: तुम माँ बनने वाली हो ना?
1: हाँ।
0: इसके पिता कौन है?
1: मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है, मैं भी पुरुष की तरह प्यासी हूँ, मुझे भी तृप्ति चाहिए। पुरुष कोई भी हो, वो सर्वजीत भी हो सकता है, शायद वही है। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो?
0: मैं जानना चाहती हूँ कि मुक्त साहचर्य और देह भोग के साथ सच्चे सुख की तलाश कैसे चल सकती है।
1: मुझे तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। शरीर के अस्वीकार के बाद तुम लोगों में ही है, हम लोगों में समर्पण की

0: प्रतिज्ञा से समर्पित होकर हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। तुम्हारे लिए प्रेम एक बना बनाया सांचा है, विवाह किया और वो सांचा ओढ़ लिया। नहीं, मैंने भी प्रेम विवाह किया था, उसी का परिणाम है मेरे दो बच्चे। उन्हीं के लिए मैं दूसरी बार विवाह नहीं कर रही, लेकिन इससे क्या तुम्हारी देह की प्यास बुझ गई? इतने सारे वर्ष तुमने इस छद्म को पालने में लगा दिए। मैंने गुरुजी से बहुत बहस की है इस बारे में।
1: क्या उत्तर दिया उन्होंने?
0: देह की प्यास से उन्हें इनकार नहीं है, वो तो चाहते हैं कि साधना के इन 10 दिनों में परहेज किया जाए, उसके बाद जैसा अनुभव हो।
1: इसका अर्थ समझी?
0: समझी। वो कहना चाहते हैं जैसे जैसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, देह भोग की प्यास वैसे वैसे शांत होती जाती है। सांत्वना, मैं नहीं जानती क्या होगा, मुझे चिंता नहीं कि वो प्यास शांत होती है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा अवश्य लगता है कि सच्चे सुख के प्राप्त हो जाने पर वो प्यास असंगत हो रहेगी।
1: फिर भी तुम कहती हो कि शरीर के अस्वीकार की बात हम ही लोगों में है।
0: अस्वीकार करने और असंगत हो रहने में अंतर है या नहीं है?
2: कभी सोचा भी न था कि मुक्त देह मिलन के उपासक ये लोग इतनी गहराई में उतर सकते हैं। अस्वीकार करने और असंगत हो रहने का अंतर ही हम भूल चुके हैं, इसलिए अत्यधिक निषेध से परेशान होकर देह मिलन के लिए पागल हुए जा रहे हैं। मैंने भी जब चाहा है देह की प्यास बुझाई।
1: देह की इस प्यास को क्या तुमने अब भी बुझाना नहीं चाहा था?
0: कौन हो तुम?
1: मैं कौन हूं ये पूछने का साहस है तुमने? अपने अंतर में झांक कर देखो, वहीं से बोल रही हूं। बार बार दूसरों के अंतर में झांकती हो पर अपने को नहीं खोजती। विधवा हो, संतान के प्यार के आदर्श में बंधी तुम देह की प्यास को छिपाए फिरती हो, लेकिन क्या सर्वजीत के साथ तुम्हारा मुक्त व्यवहार तुम्हारी देह की प्यास के ऊपर ही आधारित नहीं था?
0: अगर ऐसा था तो मुझे रोकने वाला कौन था?
1: तुम्हारा अपना अहम, जबरदस्ती शहीद बनने की लालसा।
0: शत्रु के माया जाल में फंसने की चेष्टा मत करो, ये ठीक है। छोटी उम्र के अपने दोनों बच्चों को मैं किसी की दया पर छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर देह के मिलन को मैं अस्वीकार नहीं करती। शर्त केवल एक ही है कि दूसरों की वासना का शिकार होना मैं नहीं चाहती, वो देह का अपमान है।
1: लेकिन तब तुम साधना केंद्र में क्यों गई थी? क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम भी अशांत हो? तुम्हें देह को बचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचाने को विवश भी हो, इसी द्वंद से तुम पीड़ित हो। तीव्र निषेध मन की चाह में से ही पैदा होता है। तुम्हें स्पष्ट कह देना चाहिए था कि सर्वजीत तुम्हारा पति नहीं है, ये मेरा छद्म है, इस छद्म को उतार फेंको।
0: सुनो, कहां गई तुम? बोलो। कहीं कोई नहीं, ये मैं अपनी ही आवाज सुन रही हूं। सचमुच मुझे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए था कि सचमुच मेरा पति नहीं है। मैं डर गई। कंडक्टर और सहयात्री मुझे व्यभिचारी नहीं समझते और शायद स्थिति से उतर जाने को विवश करते, या फिर कैसी है ये भूल भुलैया, कैसे मुक्ति मिलेगी इससे? क्या इसी मुक्ति की खोज में मैं साधना केंद्र में नहीं आई? इतनी सहज होकर भी ये लोग भटक रहे हैं, तो अब मैं फंसी, मैं भी भटक रही हूं। क्या इस भटकन का अंत देह के मिलन में ही है? कहां है सत्य? कौन सा छद्म इन तर्कों को ठगे हुए है? किससे मिलेगी इस द्वंद से मुक्ति?
1: छद्म, ये छद्म है, इस छद्म से मुक्ति पाओ। सहज होने में ही मुक्ति है। मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति।

0: बहुत देर हो गई तुम्हें लिखते हुए, अब सो जाओ। जो कुछ हुआ उसके लिए लज्जित हूँ।
1: नहीं सरजीत, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
0: तुम बहुत अच्छी हो।
1: सच?
0: मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सच बोलूंगा, केवल सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ न बोलूंगा।
1: अच्छा अब सो रही हूँ, गुड नाइट।
0: गुड नाइट।
2: बहुत देर से आई हो, कॉलेज तो कभी का बंद हो चुका था।
1: हाँ, कमल अंकल के घर चली गई थी।
2: इतनी रात तक क्या वहाँ कोई उत्सव था? हमें क्यों नहीं ले गए?
1: कुछ ऐसी बात थी बेटे, गंभीर बातें करनी थी ना, हड़ताल होने वाली है।
2: बहुत देर हो गई थी इसलिए मुझे डर भी लगा। भैया ने वहाँ फोन भी किया था लेकिन हर बार अंगेज मिला, शायद खराब था।
1: शायद असल में हम बहुत जरूरी बातें कर रहे थे, शायद तुम्हारे अंकल ने रिसीवर उतार कर रख दिया था।
2: हाँ यही जवाब हमें भी मिला था, हमने कंप्लेंट की थी। खाना खाओगी मामा?
1: मैं तो खाई बेटा, लगता है तुम लोगों ने अभी तक नहीं खाया। बड़े दुष्ट हो तुम, मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बुलाओ अपने भैया को।
3: पढ़ने का नाटक कर रहा है लेकिन सुन रहा है हमारी बातें। इधर आओ बाबा।
1: माँ को जरा भी मुक्ति नहीं दोगे? मुक्ति तो मैं ही उन्हें नहीं दे पा रही, मैंने ही तो उन्हें अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बड़े हो गए हैं, सब कुछ समझते हैं, मुझे उनसे सब कुछ कह देना चाहिए, कहीं उनके किशोर मन में कांट ना पड़ जाए। स्वयं मैं भी तो नहीं झेल पाती इस सर्वग्रासी एकांत को। मैंने ही जानबूझकर इसे अपने ऊपर नहीं लाद लिया है, क्या इससे मुक्ति पालूं? क्या वो मुक्ति होगी?
4: सांत्वना? सांत्वना, तुम सो गई?
1: तुम्हारा स्पर्श पाकर मुझे नींद आ ही जाती है।
4: सांत्वना, हम ये लुका छिपी का खेल बंद कर देना चाहिए।
1: हाँ कर देना चाहिए। नहीं ये कैसे हो सकता है, मेरे लिए तो फिर कोई और मार्ग नहीं रह जाएगा।
4: तुम शादी कर लो।
1: शादी नहीं कर सकती विनोद, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती।
4: धोखा तुम आप दे रही हो।
1: मैं धोखा नहीं दे रही, अपनी इच्छा से जो चाहती हूँ करती हूँ।
4: इच्छा मेरी भी तो हो सकती है, जैसे तुम चाहती हो कि तुम किसी का शिकार न बनो, वैसे ही क्या मैं नहीं चाह सकता कि मैं तुम्हारा शिकार न बनूं?
1: शिकार? तुम क्या कह रहे हो विनोद? विनोद!
0: सांत्वना, क्या है सांत्वना, किसे पुकार रही हो?
1: कुछ नहीं, सपना देख रही थी।
0: या अपने प्रेमियों की याद कर रही थी? विनोद, कमल,
1: तुम्हें ईर्ष्या होती है?
0: स्वाभाविक है, सारी रात यहाँ ऊपर के बर्फ पर लेटा लेटा।
1: तुम सब पुरुष एक जैसे होते हो, उनके एक मित्र थे, एक बार उनके साथ भी इसी तरह कूपे में सफर किया था, सारा समय तुम्हारी तरह न जाने क्या क्या बकते रहे, अपनी प्रेम कहानियां सुनाते रहे, बेचारे परवर्टेड।
0: अगर मैं यूरोपियन होता तो इस समय तुमसे पूछता क्या उस रात उसके साथ तुमने प्रेम किया था।
1: आप नहीं पूछोगे?
0: बेकार है, हिंदुस्तानी प्रेम करना ही नहीं जानता।
1: ताने मत दो, मैं न तब समर्पित हुई थी और ना अब हो सकूंगी।
0: जी में आता है कि नीचे उतरकर तुम्हारे शरीर को झंझोर डालूं और
1: फिर रुक क्यों गए?
0: जागने की राह देखता रहा, अब नहीं मानूंगा।
1: तुमने और उस पुलिस इंस्पेक्टर में अंतर ही क्या है जिसने सवेरे सवेरे दूध लेने जाती हुई एक औरत के साथ बलात्कार किया?
0: तर्कों की ये ढाल तुम्हारी मदद नहीं कर सके।
1: जब दो शरीर सैकड़ों मीलों की मानसिक दूरी के साथ मिलते हैं तो उस अर्थहीन मिलन में न सौंदर्य होता है न सत्य, वो न तन को बांध पाता है न मन को, को कहते हैं अपवित्र होना।
0: पवित्र अपवित्र की मुझे चिंता नहीं, चिंता तुम्हारी है। सारी रात तुम अपने से लड़ती रही हो, तुम्हारा यही छद मैं उतार फेंकना चाहता हूँ। सांत्वना
1: मैं कैसे हूँ, कदम भी आगे न बढ़ूं। कौन आया?

0: चाहते हो?
1: मैं सुरजीत से मिलना चाहता हूँ। हेलो सुरजीत, तुम्हारा नाम देखा तो आश्चर्य हुआ। विलायत से कब आए, कैसे हो? और माथा, ओह ये माथा तो नहीं है।
0: मेरा नाम सांत्वना है।
1: ओ देखता हूँ तुमने शादी कर ली है सुरजीत भाई, बधाई हो।
2: निगम इनसे मिलो, ये है श्रीमती सांत्वना थापर। मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तुम कहो कहाँ कहाँ रहे, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो।
1: हाँ, वो तो है, तो तुम हो भाग्यशाली। अभी तक तो विदेशी नारियों की चर्चा ही तुम्हारे पत्रों में रहती थी, अब भारतीय नारी भी आ गई। बधाई दूंगा, चुनाव एक्सलेंट है। वाह, माफ कीजिएगा मिसेस थापर, हम बहुत गहरे दोस्त हैं। यहाँ बैठ सकता हूँ ना सर जी?
0: ये कूपे है मिस्टर निगम, और अभी रात बीती नहीं है।
1: ओ आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि कूपे में तीसरे के लिए स्थान नहीं होता।
0: मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, तब आप आ सकते हैं। अब आप
1: जा रहा हूँ, खेद है मैंने आपके एकांत में खलल डाला। तो सरजीत एक बात याद रखो, ये भारत है, यहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए, वो बाहर वाले को भी खींच लेता है।
0: दरवाजा खुला रहने दो।
1: क्यों?
0: मेरी इच्छा।
3: कूपे में एक की इच्छा नहीं चलती।
0: तो आपने भी समझने की शक्ति है। स्टेशन आ रहा है, मैं यहीं उतरूंगी।
2: अभी तो अंधेरा है, बाहर बूंदाबांदी हो रही है, और ये स्टेशन भी बहुत छोटा सा है।
0: बड़ी सुंदर जगह है ये।
2: सुंदर तो तुम हो, जगह नहीं, ये तो क्रूर है, विछो का स्थान।
0: तुम्हारा ऐसा सोचना भी क्या एक छद्म ही नहीं है? जो तुम्हारी दृष्टि में विछो का स्थान है, वो किसी के लिए मिलन का भी हो सकता है। तुम्हारे साथ फिल्मी डायलॉग के आदान प्रदान से तो यहाँ उतरना हजार गुना अच्छा है। अच्छा जा रही हूँ, बुरा ना मानना, प्यार का तुम्हारे लिए एक ही अर्थ है, औरत की देह का उपभोग। अच्छा नमस्कार, क्या सोच रहे हो, जवाब भी नहीं दोगे?
2: नमस्कार। तुम भाग रही हो सांत्वना, कब तक भागती रहोगी?
0: कंडक्टर मैं यहीं उतर रही हूँ, जरा बक्सा उतारने में मदद करो।
3: जी अभी आया। लाइए।
2: मैं उतारे देता हूँ, आप उतरिए।
0: ये लीजिए।
1: गई, अब तो मैं आ सकता हूँ, खूब बातें करेंगे दोनों। सामान ले।
2: क्या मेरी दशा उस मछुए जैसी नहीं है, जो एक तूफानी समुद्र में अपना जाल भी खोकर खाली हाथ लौट आया था? लेकिन इसी लेकिन के कारण तो मैं भी साधना केंद्रों की खाक छानता फिर रहा हूं।

रुपए। अभी आपने श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा यह नाटक सुना। निर्देशक थे श्री दीनानाथ। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, मंजू मैनी, सरल लांगिया, शर्मिला मलखानी, हरि मेहता, अरुण माथुर, बीएल टंडन, दीपा पांडे और नरेश कुमार सूरी। यह कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।

0: आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के सभा में प्रस्तुत हैं सुविख्यात बांसुरी वादक श्री विवेक सोनार का बांसुरी वादन। आप महाराष्ट्र के 40 गांव में जन्मे और पले बढ़े। आप अपने पिता श्री रामचंद्र सोनार से प्रेरित थे। आपके पिता वारकरी संप्रदाय के एक जाने माने गायक रहे। आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया। आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर प्रशिक्षण ले सके। इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिंफनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मोगोबाई कुर्दिकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुणीजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी संगीत समारोह। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के लिए आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ठाणे रत्न पुरस्कार, पंडित संगमेश्वर गुरव पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार, सुर श्रृंगार संसद मुंबई से सुरमणि शीर्षक, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा आपको वृंदावन गुरुकुल छात्रवृत्ति इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में श्री विवेक सोनार राग चंद्र कंस प्रस्तुत करेंगे। आलाप जोड़ और मध्यलयगत रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री ओजस अधिया।
1: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ फ्लूट रिसाइटल बाय रेनाउंड फ्लूटिस्ट श्री विवेक सोनार। Born and raised in Chalisgaon, Maharashtra, and inspired by his late father, Sri Ramchandra Sonar, an eminent vocalist of the Warkari Sampradaya, Vivek started playing the flute at a tender age. After initial training from his father, Vivek moved to his first guru, Pandit Purushottam Antapurkar. In 1997, Vivek moved to Mumbai to be professionally trained under Pandit Hariprasad Chaurasia. Vivek thus began his new journey under the maestro who took him into deeper realms of exploration and expression. Flautist par excellence and torchbearer of the Hindustani tradition of classical music, himself a guru to countless disciples as also a composer, Vivek Sonar is one of the leading flautists of India, renowned for his strong command over Tantakari and Layakari style. Blessed with powerful blowing skill, a multi-talented person, Vivek Sonar is widely regarded by music lovers and critics for having honed unparalleled skills of instrumentation in flute playing. He is also known for his initiatives like his Sui Generis, the Grand Bansuri Utsav, and the Flute Symphony, a magnificent concert that has 111 flutes playing together. Vivek has performed

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कौंस, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यू आर लिसनिंग टू राग चंद्र कौंस बाय रिनाउंड फ्लॉटिस्ट श्री विवेक सोनार। He was accompanied on tabla by Sri Ojas Adia. With this tonight, we conclude Ravi Vasariya Akhil Bhartiya Sangeet Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Mumbai, and this broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज़्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की ज़रूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाज़ों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाज़ों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।